0: मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
4: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
3: नहीं।
4: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
3: नहीं।
4: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
3: वो भी नहीं।
4: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
5: Ocho.
0: Hoko.
5: Ocho.
0: Hoko.
5: Ocho.
0: It's Hoko.
6: अरे बस भी करो यार।
0: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
6: नाम Hoko हो या Ocho क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
2: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब Frisco में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
7: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
8: एक और लड्डू ले लो।
9: थोड़ी और बिरयानी?
8: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
10: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
11: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
12: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
13: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
12: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
13: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
12: इंडिया तक।
13: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
2: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
14: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
15: इस रक्षाबंधन Choctaw Casino and Resort Durand के साथ celebrate कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी and a lifetime of unforgettable memories. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार memory हमें 1 minute voice note में and win exciting daily prizes including dining experiences, entertainment, resort stays and the grand prize, an unforgettable sibling reunion weekend at Choctaw Casino and Resort Durand. Apni story WhatsApp kijiye 214-837-7147 par ya contest details ke liye visit kijiye Funisha Radio ke social media pages.
2: Choctaw Casino and Resort Durand, where unforgettable memories are made together. Must be 21 or older to participate. Terms and conditions apply. Please play responsibly.

हेलो हेलो ब्यूटीफुल लिसनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? यस, दिस इज योर बेस्ट इपी द हिपी ऑन फनीशिया रेडियो 104.9 FM. एंड आपको पता है क्या टाइम हो गया है? 7 बज चुके हैं. एंड 7 बजे क्या होता है? एन इवनिंग इन डैलस. दैट्स राइट गाइस, आई होप यू हैड ए वंडरफुल ट्यूसडे. एंड मैं वापस आ चुकी हूँ, तो वी गोना टॉक अबाउट रिलेशनशिप स्कूप, डेटिंग लाइफ, समथिंग वी विल कंटिन्यू यस्टरडे, बट देन ऑल्सो समथिंग न्यू स्टफ. वी प्ले गेम एंड वी हैव एन अमेजिंग शो टुडे, सो स्टे ट्यून्ड. अंटिल देन, एंजॉय दिस ट्यून.

भाई रोना तो मैंने भी छोड़ दिया, पता है क्यों? क्योंकि मैं आ गई हूँ फनेशा में, और फनेशा में जब आपकी कॉल्स आती है मुझे और आप कहते हो कि अरे एपीजी वेलकम बैक, वी लव लिसन टू योर शो वगैरह वगैरह, आई एब्सोल्युटली लव इट, तो मेरा रोना वैसे ही चला जाता है. ठीक है, तो दिस नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू फरीदा जी फ्रॉम हर एब्सोल्युटली लविंग हस्बैंड वसीम जी. भाभी जी आप इंजॉय करिए गाना, बिल्कुल रोमांटिक सा सिर्फ आपके लिए.

गाइस वी आर बैक। तो गाइस अगर आप भी ऐसे लविंग पार्टनर के सपने देख रहे हैं और घर वर बनाने की सोच रहे हैं विद योर वन एंड ओनली लवर पार्टनर बीवी हस्बैंड जो भी है, देन यू नो व्हाट यू नीड टू डू। यू नीड टू कॉन्टैक्ट ड्रीम होम मॉर्गेज, क्योंकि योर ड्रीम होम माइट बी क्लोजर देन यू थिंक। ओके, सिंस 1998 दे हैव हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप ड्रीम्स इनटू रियलिटी विद दे टेलर मेड लोन ऑप्शन। सो अगर आप फर्स्ट टाइम होम ओनर हैं और यू आर अपग्रेडिंग और रीफाइनेंसिंग, यू कैन स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विद कॉन्फिडेंस टुडे। कॉल 972-245-5626, 972-245-5626, और विजिट dreamhomemortgage.com, मेकिंग ड्रीम्स होम ड्रीम होम्स हैपन। तो ये गाना सुनते हैं, देन वी कम बैक एंड टॉक सम मोर।

वी आर बैक। हम 8 ही मिनट में दूसरे ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले गाइज मैं ये तो बोल दूँ कि आज का प्लान क्या है। आज का प्लान है, यू नो हाउ वी वर टॉकिंग अबाउट वॉट अ रिलेशनशिप इज सपोज टू बी लाइक, लाइक इन अ मिरर, अगर आपको कोई आईना दिखा रहा है दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग फॉर। तो वी विल टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट स्टफ। दिल चाहता है स्पेशल तो कल हो गया, लेकिन पता है आज और कौन सा स्पेशल है मैं बताऊँगी ब्रेक के बाद, मैं बताऊँगी। आज कम अमेजिंग, कुछ अमेजिंग सी चीज़ होने वाली है, सो स्टिक अराउंड, आज हम करेंगे ठीक है। लेकिन उसके पहले ये गाना, तो अगर आप कोई पिंकी आंटी है यहाँ पे जो पिंक पिंक कलर के कपड़े पहन रही है, भाई गुलाबो जी ये आपके लिए गाना है।

0: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
4: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
5: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
11: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
11: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry, men's and kids wear.
13: Wait, इतना सब और price?
11: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
14: Main hero.
15: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
16: हेलो भाइयों बहनों, पता है आज क्या है? वो मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन आपको पता है कि श्री कृष्णा ज्वेलर्स, ज्वेलरी इज नॉट जस्ट एन एक्सेसरी, It's a reflection of tradition, elegance, and timeless beauty from classic gold designs, sparkling diamonds, and intricate kundan and polki collections. Sab hai yaar unke paas. Every piece is crafted to celebrate life's special moments. Agar aap shaadi waadi karne ka soch rahe hai na, aapko bridal jewelry chahiye, then you guys need to head down to Shri Krishna. Now welcoming you at their new location, 13145 Suite 220 in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafting fine jewelry and cherished memories since 1967. Ab main bolti hoon ki aaj pata hai kya hai, jaise kal was दिल चाहता है कि 25 years, आज पता क्या है, आज के दिन कभी अलविदा ना कहना रिलीज हुई थी. अब याद है नॉट दैट वन, कभी अलविदा, एक्चुअली वही वाला, कभी अलविदा ना कहना, वो वाला नहीं, बट दी अदर वन, कभी अलविदा ना कहना. मैंने शायद पूरा सुर गड़बड़ कर दिया, बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसमें वो बड़ा पॉपुलर गाना नहीं है, मितवा, राइट? We all know that. Such an iconic song. तो आज के दिन 20 साल पहले वो रिलीज हुई थी. And you know when it came out, इसके पहले ना all the movies, you know, having like an extra marital affair वगैरह वगैरह, it was all looked at in a very different way. But यहाँ पे there is, you know, they are analyzing two couples, two modern day couples living in New York somewhere, and you know, the husband is unhappy in one couple and the wife is unhappy in another couple. But somehow they realize that maybe they are meant to be. And then there was this whole thing of extramarital affairs. Now, I don't support it. I don't think that should be the right way to go about it. But it still makes you think that this stuff is so common. I'm not even kidding. Like, agar aap bahar jaoge, koi baat nahi karta hai iske bare mein. But these things happen all the time. And to put it on screen just makes you think like, hey, it's human. People do make mistakes. People go through all these kind of things. And, you know, while the other two people, they are just, jinhone extramarital affair nahi kiya, they are kind of like, oh, I have the perfect relationship. I have the most amazing husband. Main apne kaam mein busy hoon. I mean, regular relationship ki nok jhok hoti rehti hai. But then, you know, side mein their partners are doing something else. So it just makes you think about ki nahi yaar, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, मेरे साथ तो नहीं, बट आई मीन इट हैपन्स लाइक ऑल द टाइम. एंड दिस वॉज समथिंग दैट वॉज अ टैबू एंड पीपल वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट. सो आई थिंक इट वॉज वेरी रिफ्लेक्टिव. आई एम नॉट गोना से इट वॉज आइकॉनिक बिकॉज आई डोंट सपोर्ट इट, बट इट मेक्स यू थिंक दैट कि नहीं यार, देर आर अदर पीपल इन दिस वर्ल्ड विद द सेम स्टोरी एज माइन.
14: Nacho all night. Do you feel alright? Wanna nacho all night?

guys, this is Ipi Dhappi back in the house on Funasia Radio 104.9 FM, and you are listening to my show An Evening in Dallas. भाई evening तो ठीक है, लेकिन आपको पता है ना कि October में अगर आपने tax extensions file करी हैं तो October आने वाला है, August शुरू हो चुका है और मतलब करीबन दो महीने ही बचे हैं. तो guys don't delay, get on it. या फिर अगर आपका CA या CPA जो भी है वो काम कर रहा है तो रियली गेट ऑन दैट केस. मैं लाइक अरे मेरा काम कर दो. एंड देयरफॉर दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन अमेरिका. चाहे आप इंडिविजुअल हैं, स्टार्टअप हैं या आप एस्टैब्लिश बिजनेस हैं, एजी फिनटेक्स ऑफर्स इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस फॉर ऑल योर नीड्स. चाहे आपको बुककीपिंग की जरूरत है, पेरोल अकाउंटिंग, बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन या फिर टैक्स एक्सटेंशन भरनी है, टैक्स कंप्लायंस, प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह वगैरह और एवरीथिंग रिलेटेड टू टैक्स एंड फाइनेंसेस बेसिकली, देन दे हेल्प यू कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज, कंप्लायंट एंड फ्यूचर रेडी. तो डोंट वेट, जस्ट गिव देम अ कॉल, मे बी दे कैन हेल्प यू सॉर्ट आउट योर स्टाफ. ओके, 4699429888 और विजिट agfintax.com. सिर्फ आज. तो गाइज 8 बजने वाले हैं. 8 बजे आपको पता है ना क्या होता है, हमारा गिव अवे होता है. गिव अवे पता है आज किसका होगा? आज होगा फन पिज्जा किचन. दैट्स राइट. मुझे मेरे ना सारे जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे लिसनर्स वगैरह हैं या जो भी है, वो सब मुझे कहते हैं भाई हमें तो पिज्जा वाला गिव अवे चाहिए, वी डोंट वॉन्ट एनी अदर गिव अवे, वी वॉन्ट पिज्जा वाला गिव अवे. तो गाइज इट इज़ योर लकी डे, फन पिज्जा किचन का गिव अवे होगा 8 बजे, 8:05 टू बी प्रिसाइज. सो मेक श्योर यू कॉल बैक देन एंड देन वी विल प्ले द गिव अवे. लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा अलग गेम करेंगे. लाइक आई सेड, कल हमने वो किया था साउंड्स लाइक वाला, कॉपी कैट वाला वगैरह वगैरह, तो आज हम वो नहीं करेंगे. आज हम करेंगे कंप्लीट द डायलॉग. वी विल टेस्ट योर बॉलीवुड नॉलेज और थोड़ा ड्रामा के साथ. ठीक है, तो जैसे अगर ये गाना डायलॉग आया आपके पास, क्या था मैं भूल गई, मेरे बिल्कुल, मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे सकती ना, मैं अभी सारा डायलॉग बोल दूंगी तो कैसे चलेगा. कुछ हारने के लिए, कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कह रहे हैं. तो ऐसे ही थोड़े एक्सप्रेशन और डायनामिकली थोड़ा बोलना पड़ेगा. ऐसे बोरिंग तरीके से बोलेंगे तो नहीं चलेगा. नो प्राइज फॉर यू. ओके, तो लेट्स गो एंड लिसन टू दिस वन सॉन्ग एंड देन कम बैक एंड वी विल कंटिन्यू.

0: IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
3: Figure not, we have the perfect solution.
4: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
7: डूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
8: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
7: कैसे?
8: पेज 3 ईटरी?
7: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
8: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
7: मतलब great food, great drinks and great company, यानी कि मैं.
9: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
2: इस रक्षाबंधन चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
0: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
3: हाय, दिस इज कुणाल कपूर एंड यू लिसनिंग टू फनीशा रेडियो.

0: back. This is Ibi the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. और आप सुन रहे हैं मेरा शो विच इज, चलो साथ में बोलते हैं, An Evening in Dallas. That is right, guys. So you know what is the time? It is time to play the giveaway game. आज का हमारा game है Complete the Dialogue. तो पहले मैं ये तो बोलूँ कि आप जीत क्या सकते हैं. आज का giveaway है From Fun Pizza Kitchen, because you know why? They have launched a Mexican, brand new Mexican-inspired pizza lineup. And ye sirf pizza hi nahi hai. They are full-on flavor fiesta, from fresh fiesta veggie to the fiery pollo loco seafood pack, señor camarón, and the loaded mucho macho pork. Delicious. Every bite is bold, exciting, and made to impress. So don't worry. Don't wait. वरी तो आपकी मर्जी है, आपको करना है मत करना है, दैट्स अप टू यू. अगर डाइट टूट गया उसके बाद देन इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, ओके, देन यू कैन वरी अबाउट इट. लेकिन डोंट वेट, हेड ओवर टू फन पिज्जा किचन एंड ट्राई द न्यू फ्लेवर्स एंड द न्यू ऑब्सेशन फॉर योरसेल्फ. न्यू फ्लेवर्स, न्यू ऑब्सेशन. फॉर मोर डिटेल्स विजिट funpizzakitchen.com. और आप जीत क्या सकते हैं हमारे गिव अवे में. भाई गिव अवे में आप ये जीतेंगे $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन, ओके, तो विच यू कैन रिडीम फॉर बेसिकली एनी फ्लेवर ऑफ योर चॉइस. तो खेले गेम, तो माय नंबर इज 972-235-5555. लेट्स से दैट अगेन, 972-235-5555. सो लेट्स प्ले आवर गेम. सो द गेम टुडे इज कंप्लीट द डायलॉग. इट इज अ वेरी सिंपल गेम, लेकिन इट्स गोइंग टू टेस्ट योर बॉलीवुड नॉलेज. पूरे एक्सप्रेशन के साथ बोलना पड़ेगा. एम ही बोरिंग तरीके से रोबोट की तरह बोलेंगे तो नहीं चलेगा, ओके. नो चोल बना दादा, चोल बना. तो अगर आपको अगर आपको बोलना है तो अच्छे से एक्सप्रेशन के साथ बोलिए, ओके. एंड हियर वी गो. तो मैं आपको पहली लाइन दे रही हूँ, बाकी आप कंप्लीट करिए. This dialogue is the iconic dialogue from the movie Om Shanti Om. Okay, so here we go. Ek chutki sindoor ki keemat tum kya jaano Ramesh Babu, and complete it. Uska bada bada sa paragraph hai, 3-4 line hai aur hai uske baad, theek hai. Aur last wala word jo hai wo sindoor hai, theek hai. Dobara bol diyo. Ek chutki sindoor ki keemat tum kya jaano Ramesh Babu. Blank, blank, blank, blank, blank, blank, blank, blank, blank, blank, and finishing with a sindoor. So guys, aao, call karo, dial karo, aur apna giveaway jeeto. Make sure you haven't won the giveaway in the last 1 month. So sabko chance milna chahiye, hai na? To aajao bhai, call karo, call karo. नहीं, किसी को याद ही नहीं है डायलॉग. क्या यार, आप बॉलीवुड रेडियो सुन रहे हो, आपको बॉलीवुड रेडियो के गान वो नहीं याद डायलॉग्स. मुझे तो सारे डायलॉग्स है, सारे तो नहीं, खैर वो जो भी है. लेकिन यू नो व्हाट, अगर आपको नहीं याद है, मैं एक चीट कोड भी दे दूंगी आपको. चीट कोड ये है कि आप गूगल भी कर सकते हैं. वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि देन इट्स नो फन. बट एंड वी हैव आवर फर्स्ट कॉलर. हाय, कैन यू हियर मी?
1: चीट कोड ये है कि आप गूगल भी कर सकते हैं.
0: ओके, कैन यू टर्न ऑफ द रेडियो इन द बैकग्राउंड?
2: डन.
0: ओके, ग्रेट. ऑल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी योर नेम एंड देन गो फॉर इट. पूरे एक्सप्रेशन के साथ बोलना पड़ेगा, ठीक है?
2: या, आई एम राजेश. सो सिंस इट्स अ डायलॉग फ्रॉम अ गर्ल, राइट, सो आई हैव टू प्रोबब्ली इमिटेट द गर्ल.
0: गो फॉर इट, वी लव इट. वी लव अ लिटिल इमिटेशन मोमेंट हियर.
2: चुटकी चुटकी क्या जा रहा है
0: आगे आगे.
2: दैट्स ऑल आई.
0: अरे उसके आगे पूरा डायलॉग भी है और भी लंबा है उसके बाद.
2: नहीं, लेट मी जस्ट सर्च फॉर इट. नहीं, आई जस्ट नो दैट.
0: चलो कॉल बैक, लेट मी सी उसके बाद किसी का आता है. मैं आपको थोड़ा, ओके, थैंक्स फॉर द कॉल. और गाइस, भाई राजेश जी ने तो नहीं जीता है. मैं आपको थोड़ा हिंट और भी दे देती हूँ. एक चुटकी कीमत की, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. ईश्वर का यार, डायलॉग कंप्लीट कर लो, नहीं तो गूगल ही करके कर लो यार. नहीं, चलो चलो ना ना ना ना. चलो हम एक काम करते हैं, हम ये गाना लगाते हैं. चलो दूसरा कॉल आ गया, आ गया. हाय, कैन यू हियर मी?
3: यस
0: यस. फर्स्ट टेल मी योर नेम एंड देन कंप्लीट द पूरा
1: शर्मिन,
0: डायलॉग. शर्मिन, ओके शर्मिन जी, गो ओवर इट.
1: एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर.
0: आगे?
1: ओ यू नीड मोर.
0: हाँ पूरा द फुल डायलॉग, पूरा पूरा.
1: एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू.
0: कोई बात नहीं, विल गो
1: आई डोंट
0: टू
1: नो
0: द नेक्स्ट
1: व्हाट टू
0: कॉलर,
1: डू.
0: बट थैंक यू फॉर द कॉल. ऑलराइट, हेलो, कैन यू हियर मी?
3: हाय, आई कैन हियर यू. यस,
0: ओके. पहले तो अपना नाम बताइए.
3: रश्मि.
0: रश्मि, गो फॉर इट.
3: एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर.
0: वाह वाह, शानदार प्रदर्शन. वुहू, ये होता है ना, ऐसे गाइस होता है, पूरा डायलॉग बोलना चाहिए. एग्जैक्टली. क्या क्या ड्रामे के साथ किया है, एकदम सिंदूर को एम्फसाइज करते हुए आपने बोला है. वाह, दैट वाज रियली गुड. और क्या बोला, से बोला था हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर, भाई है ना, एकदम क्या ड्रामे के साथ. आई लव इट. रश्मि, यू हैव वन द गिव अवे. वुहू, चलो गाइस, जोर से तालियां. तो वील स्टे ऑन द लाइन रश्मि, मैं गाना बजाती हूँ एंड देन आई टेक योर इन्फॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड, ठीक है? आप लाइन पे रहना. ओके गाइज, एंजॉय दिस सॉन्ग.

गाइस दैट वाज गुरु रंधावा सॉन्ग सिर्रा. बाय द वे, जिनको पता नहीं है, गुरु रंधावा इज बैक इन लाइक न्यूज एंड गॉसिप. बाय द वे, पता है आपको, ही रिलीज्ड अ न्यू सॉन्ग एंड हिज न्यू सॉन्ग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय सो मेनी पीपल बिकॉज इन द म्यूजिक वीडियो ही हैज ओवर सेक्शुअलाइज गर्ल्स जस्ट लाइक ही ऑलवेज डज. उसमें एक कॉरपोरेट इन्वायरमेंट दिखाया गया है जिसमें लड़कियां बहुत छोटी छोटी छोटी छोटी स्कर्ट्स पहन के दे आर डांसिंग एंड एवरीवन्स काइंड ऑफ क्रिटिसाइजिंग कि भाई दिस इज नॉट हाउ कॉरपोरेट ऑफिसेज वर्क. यू आर जस्ट ट्राइंग टू यू नो यूज गर्ल्स इज लाइक योर बेट सो पीपल कैन कम एंड लिसन टू योर सॉन्ग्स. और कुछ इस गाने के पहले भी उन्होंने एक गाना और रिलीज किया था, मैं गाने का नाम भूल गई, बट इन दैट अगेन ही हैज यूज गर्ल्स, बट इंस्टेड ऑफ यू नो लाइक रेगुलर अडल्ट क्लोथ्स और ग्रोन अप क्लोथ्स, द गर्ल्स आर ड्रेस्ड इन लाइक स्कूल यूनिफॉर्म. एंड ही हैड कम ऑन द दिस क्या बोलते हैं अगेन इन टैबलॉइड न्यूज एंड एवरीथिंग कि भाई दिस इज प्रेडेटोरी बिहेवियर एंड इट इज नॉट कूल टू सेक्शुअलाइज गर्ल्स लाइक दैट बाय पुटिंग दैम इन स्कूल यूनिफॉर्म्स. इट्स नॉट नाइस. आई मीन देर आर किड्स यू नो, सो डोंट इनकरेज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर. सो Well, Guru Randhawa is back. He's unapologetic about the whole thing. But yeah, well, I don't know. Maybe I'll play the new song by Guru Randhawa in a bit, and you can tell me if you actually like the song. But without further ado, let's go to the next song.

फ्रेंड्स, आपको पता है ना सैटरडे क्या हो रहा है? इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास का 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रहा है. इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इज हैपनिंग एट द आनंद बाजार 2026 एट कमर्शिया सेंटर इन फ्रिस्को, विच इज हैपनिंग दिस सैटरडे ऑगस्ट 15th फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स. एंड सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है? इट्स कम्प्लीटली फ्री. देयर इज गोना बी लाइव म्यूजिक, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, शॉपिंग, लॉट्स ऑफ अमेजिंग फूड, ग्रैंड परेड. तो गाइज वेट मत करो, मेक श्योर यू मेक योर प्लान्स फॉर द वीकेंड आज ही. मतलब ट्यूजडे हो गया है, उसके बाद कितने 4 दिन ही बचते हैं सैटरडे के लिए. तो सैटरडे को और कुछ मत करो, यहीं पर जाओ. आपका पूरे दिन का इवेंट यहीं लोग डिसाइड करें. सारे दिन बैठ के गाना शाने सुनो और क्या, वहाँ पर परफॉर्मेंसेज देखो. इनकरेज द लिटिल बच्चाज हु आर गोइंग टू बी परफॉर्मिंग, क्योंकि वही होता है नॉर्मली. So, we will be back after this tune.

0: है, जैसे मैंने वो गाया लगाया गाना लगा ना गाना लगाया ना, मेरी फ्रेंड है जो सुन रही होती है रेडियो, वो रोज सुनती है क्योंकि अपेरेंटली मेरे रेडियो शो से वो अपना स्किन केयर रूटीन शुरू करती है 9 बजने वाले, तो उसकी स्किन केयर रूटीन तब शुरू होती है बिकॉज आई एम ऑल्सो प्लेइंग द जॉब ऑफ अ क्लॉक। तो मेरा मेरी फ्रेंड ने मुझे भी मैसेज किया, कहता है पता है मैंने ना इस वाले गाने पे स्कूल में डांस किया था। मैंने बोला भाई मैंने भी इसी गाने पे स्कूल में डांस किया था। आई थिंक हमारे जितने मिलेनियल्स हैं ना, जितने मिलेनियल बच्चे हैं और इंडिया में जो हुएवर रेज्ड, वी ऑल डांस टू दिस सॉन्ग। बड़ा सा इंडिपेंडेंस डे के दिन बड़ा सा एक स्कूल फंक्शन होता था जिसमें सारे बच्चे डांस करते थे। मेरे को तो बिल्कुल अच्छे से याद है, एकदम वाइट कलर के सलवार कमीज में और तिरंगे वाले दुपट्टे में वी वर डांसिंग। इट वॉज फनी, इट वॉज नाइस, इट वॉज इंटरेस्टिंग। लेकिन गाइज विदाउट फर्दर डू, 8:29 हो गए हैं, हम अभी कुछ 15-20 सेकंड में वी आर अबाउट टू गो इन टू अ ब्रेक, एंड उसके बाद जब वापस आएंगे देन वी विल कंटिन्यू आर डिस्कशन दैट वी वर हैविंग येस्टरडे अबाउट रिलेशनशिप मिरर्स। सो स्टे स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड, विल हैव अ लॉट ऑफ फन कॉन्वर्सेशंस। ओके चलिए लेट्स गो इन टू अ लिटिल बिट ब्रेक एंड आई विल सी यू इन जस्ट मे बी लाइक 5 or 7 minutes। गुड बाय।
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे स्वीट 205 फ्रिस्को।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: ये तारा वो तारा हर तारा।
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
10: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
11: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
10: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
11: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
10: इंडिया तक।
11: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
4: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
12: जिंदगी एक रंगमंच है
13: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सस टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
4: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com। Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
14: Calculating route, rerouting, rerouting.
4: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
14: Look लोकेशन अपग्रेडेड नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ
15: क्यों
14: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ
15: अच्छा तो सीधा वही ले चलो
16: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
14: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
17: अजी सुनते हो
18: अजी नहीं एजी सुनते हैं
16: द ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग एजी फिनटेक्स सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो
19: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
20: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
19: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
0: So, you know, guys, today I was like always doom scrolling and you know what because I do this entire bit on relationships and themes and you know mostly like relationships and stuff like that right dating life vagera because we do that so now my algorithm instead of showing me like music videos and like jazz videos which I absolutely used to love and recipes by the way mujhe sirf relationship advice aati rehti hai not that I regret it because then I can actually watch it and share it with you So today I came across this really interesting video which said that apparently the kind of partners we choose time and again and agar aapko lagta hai ki bar bar wahi same patterns repeat ho rahi hain it's because the inner unhealed person within us the wounded heart within us chooses the same kind of a partner again and again thinking ki nahi yaar इस बार तो शायद स्टोरी कुछ अलग होगी इस बार मे बी माय अवॉइडेंट पार्टनर चूजेस मी या फिर मे बी दिस टाइम आई चूज द सेम काइंड ऑफ पार्टनर एंड इट्स वेरी अनकॉन्शियस इट्स नॉट लाइक हम इंटेंशनली चूज करते हैं लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर एन एंग्शियस अटैचमेंट पर्सन इट्स नॉट लाइक यू आर कॉन्शियसली मेकिंग एन एफर्ट टू गो एंड चूज एन अवॉइडेंट पर्सन एवरी टाइम कि वो आपको दो दिन बाद फिर गोस्ट करके फिर गायब हो जाएगा फिर दो महीने बाद आएगा फिर गायब हो जाएगा यू नो इंस्टेड ऑफ दैट It's not like you are consciously making the effort, but somehow your nervous system identifies that as like, okay, this time maybe if I do the same thing, then the result might be different. So we are trying to heal ourselves, heal our inner wounds by choosing the same kind of pattern, same kind of relationships again and again. And what is the solution over here? So, I mean, this is the solution to like break up and completely date out of your pattern? Or choose a partner who is totally like different from what you're used to. Yes, that can be one thing. But also, maybe the reason you're choosing the same kind of partner again and again is because maybe there is something within you that needs to be healed versus just projecting on to the partner everything. So that's something to think about. We will talk more about this after the song. But abhi ke liye aap ye gana enjoy kariye.

0: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन।
1: तो गाइज आपको पता है ना आवारापन 2 रिलीज होने वाली है। अगर आपको नहीं पता है आवारापन 2 के बारे में तो मैं बता देती हूँ। बॉलीवुड लवर्स गेट रेडी, द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर बिकॉज आवारापन 2 इज ऑल सेट टू ब्रिंग बैक द इंटेंसिटी, इमोशंस एंड एक्शंस दैट मेड इट द ओरिजिनल कल्ट क्लासिक। इमरान हाशमी कम्स बैक, he returns as Shivam in the story of redemption, love and sacrifice. He's joined by Disha Patani and the legendary Shabana Azmi ji. Packed with breathtaking locations, powerful performances and a soul-stirring soundtrack, Awarapan 2 is already creating a massive buzz after its trailer launch. आपको पता है कब रिलीज हो रही है? अगले साल 14 जून के दिन। तो अभी से ही अपने कैलेंडर में डाल लो। Stay tuned to Phanisha for the latest Bollywood updates and don't miss Awarapan 2. Okay, next year, 14th June.

तो गाइज जब इंटिमेसी की बात करते हैं, देयर समथिंग रियली फैसिनेटिंग when you're alone, जब आप अकेले होते हो, अपने साथ होते हो, देन यू बिलीव ऑलमोस्ट एनी थिंग अबाउट योर सेल्फ. यू नो डलूलू, बींग डलूलू इज द सलूलू हम जैसे बोलते हैं. तो वी बिलीव दैट वी आर इंडिपेंडेंट, श्योर. यू बिलीव दैट यू आर हील्ड, आई एम श्योर यू ऑल रिलेटेड टू दैट. यू बिलीव दैट या आई एम टोटली ईजी गोइंग एंड आई हैव नो प्रॉब्लम्स. यू कैन बिलीव दैट आपको किसी की जरूरत नहीं है. आई एम ऑल्सो इन दैट फेज राइट नाउ, ठीक है. एंड मे बी ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर पार्टली ट्रू. However, ये the moment somebody gets close to you, the moment you get into a new relationship or you start seeing someone new, that's when things start unfolding. Intimacy removes the distance that allow us to hide from ourselves. क्योंकि जब आप अपने साथ होते हो, then we shove all these feelings way down into your gut and उसको हम बाहर नहीं आने देते. लेकिन जैसे ही कोई person हमारे से close हो जाता है, that's when we realize कि नहीं यार, मतलब दीज आर माई इनसिक्योरिटीज एंड यू नो द रिलेशनशिप देन बिकम्स अ मिरर. इट्स समटाइम्स द फर्स्ट थिंग द मिरर व्हाट इट शोज अस इज़न्ट प्रिटी. आई मीन मे बी इट शोज द फैक्ट दैट यू आर मे बी एन एंशियसली अटैच्ड पर्सन, और लाइक कि अरे उस बंदे ने मुझे आज मैसेज नहीं किया तो ज़रूर कुछ गड़बड़ हो रहा होगा. वाई इज दिस पर्सन गोस्टिंग. एक दिन मैसेज नहीं किया तो हम यू नो वी स्टार्ट जंपिंग टू कंक्लूजन्स, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. इट शोज अस द फियर व्हिच इज लाइज अंडरनीथ द कॉन्फिडेंस, ओके. इट शोज अस इनसिक्योरिटी अंडरनीथ द इंडिपेंडेंस. इट शोज अस अबैंडनमेंट अंडर द एंगर, ठीक है. तो इट शोज अस अ पार्ट ऑफ आवर सेल्व्स दैट सेज कि इफ आई डोंट नीड यू, इफ आई एम लाइक इमोशनली डिटैच्ड एंड इफ आई डोंट नीड यू, तुम तो मुझे आई मीन यू कैन नेवर हर्ट माई फीलिंग्स. मेरे को हर्ट करने के लिए मतलब मेरी फीलिंग्स होनी भी चाहिए. इफ आई डोंट नीड यू देन आई एम नेवर गोना गेट हर्ट. इफ आई गिव यू एवरी थिंग देन मे बी यू विल नेवर लीव. सो विच वन डू यू आइडेंटिफाई विद? डू यू आइडेंटिफाई विद द फर्स्ट वन विच इज एन अवॉइडेंट, और डू यू आइडेंटिफाई विद द सेकंड वन कि मे बी मैं इस रिलेशनशिप में सब कुछ दे दूंगी, अपना घर बार सब पैसा वैसा जो भी है, आई विल गिव एवरी थिंग and then maybe this person doesn't leave me. Ya phir if I leave first, agar maine isko pehle dump kar diya, then I don't have to experience rejection, because facing rejection is not the nicest feeling. You know, we've all been through some of that, and you know what I'm talking about. If I become exactly what you want, then maybe you will choose me. Kai baar hum apni identity bhi kho dete hain isme ek relationship mein ki oh maybe my partner wants me to wear only, I don't know, heels. So I will only wear heels. But maybe you are very uncomfortable in heels. I don't know. It could be anything, right? So these patterns aren't proof ki aap toote hue hain, by the way. कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए अपनी पूरी जिंदगी आप अपने आप को ही सैक्रिफाइस करें, इट डजेंट मीन दैट यू आर ब्रोकन. देयर इज यूजुअली एविडेंस दैट समवेयर अलोंग द वे हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वी हैव कम अप विद दीज रीजंस. एंड प्रोटेक्शन कैन लुक वेरी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन हु यू आर. कुछ लोग चेज करते हैं,

अलॉन्ग द वे हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव कम अप विद दीज रीजंस. एंड प्रोटेक्शन कैन लुक वेरी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन हु यू आर. कुछ लोग चेज करते हैं, कुछ लोग विड्रॉ हो जाते हैं, सम पीपल बिकम हाइपर इंडिपेंडेंट, सम पीपल बिकम ओवरली अकोमोडेटिंग, सम पीपल इवन बिकम कंट्रोलिंग, सम पीपल बिकम इनक्रेडिबली गुड एट प्रिटेंडिंग दे डोंट केयर. बट ये मेन चीज़ पता क्या है, यू कैन स्पेंड मैनी मैनी मैनी मैनी ईयर्स वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड स्टिल नॉट नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट वेन यू स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद समवन और वेन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दैट रिलेशनशिप, दैट्स वेन ऑल दीज इनसिक्योरिटीज कम इन. बिकॉज लव यू नो एक्टिवेट्स अ पार्ट ऑफ अस दैट सॉलिट्यूड और अकेलापन डजेंट. ओके, दैट इज वाई रिलेशनशिप कैन ऑफन बी अ वेरी पावरफुल टीचर. नॉट बिकॉज अनदर पर्सन कम्प्लीट्स यू, बट बिकॉज अनदर पर्सन गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी to see yourself through and through in motion. So there's something to think about.

नाउ थिंक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ वूंड एंड अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी. ठीक है, आपके दिल को चोट लगी है लेकिन आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, सो यू डोंट गेट दैट हर्ट अगेन. द वूंड माइट बी समथिंग सिमिलर लाइक दिस, कि आई एम अफ्रेड लोग मुझे छोड़ के चले आएंगे. सर्वाइवल स्ट्रैटेजी टू डील विद दैट बिकम्स आई विल मेक श्योर कि उनको चांस ही ना मिला, मैं ही पहले छोड़ दूंगी उसको या छोड़ दूंगा, जैसे भी जो भी है. ठीक है, द वूंड माइट बी कि मे बी आई एम अफ्रेड कि आई एम नॉट इनफ. द स्ट्रैटेजी देन बिकम्स आई बिकम दैट पर्सन हु इज इंडिस्पेंसिबल, कि इस बंदे की जिंदगी या इस बंदे की जिंदगी मेरे अलावा चलती ही नहीं है. मैं आई विल बिकम दैट पर्सन जो मैं हर कुछ करूँगा इस बंदी के लिए. ठीक है, द वूंड माइट बी मुझे लोगों पर भरोसा नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट पीपल. द स्ट्रैटेजी देन बिकम्स भाई ये तो कुछ गड़बड़ करने वाला है या वाली है, जो भी है, मेरा एक पैर दरवाजे के बाहर ऑलरेडी है. ठीक है, तुम मुझे पहले से ही पता है तुम मेरे साथ ब्रेकअप करने वाले हो या फिर कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इवन द मोमेंट यू गेट इनटू दैट रिलेशनशिप. बट सबसे हार्ट ब्रेकिंग चीज़ पता क्या रहती है, समटाइम्स द स्ट्रैटेजी वंस प्रोटेक्टेड यू, समटाइम्स ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ठीक है आपको प्रोटेक्ट भी करती है, इट बिकम्स द वेरी थिंग दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम रिसीविंग लव इन द फर्स्ट प्लेस. आपको इंटिमेसी चाहिए, आपको प्यार चाहिए, बट आप अपना पूरा शील्ड लेके जा रहे हो. इट्स लाइक आप पूरा अपना इमोशनल आर्मर लेके पहले ही उतर रहे हो जंग के मैदान में. आप पहले जंग के मैदान में उतर रहे हो लेकिन दिस इज नॉट अ जंग का मैदान, इट इज़ अ इंटिमेसी, इट इज़ प्यार, इट इज़ अ रिलेशनशिप. यू आर आस्किंग फॉर कंसिस्टेंसी, आपको चाहिए कि आपका पार्टनर आपके लिए कंसिस्टेंट हो, सेम काइंड ऑफ एफर्ट्स शो करे. बट देन यू बिकम सस्पिशियस द मोमेंट समवन डज दैट फॉर यू, कि अच्छा ये तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, व्हाई इज दिस पर्सन डूइंग सो मच फॉर मी, ज़रूर कुछ गड़बड़ है इसमें, ज़रूर कोई रेड फ्लैग है, ये लव बॉम्बिंग हो रहा है. यू नो यू वी ऑल हर्ड दोज टर्म्स राइट, यू वॉन्ट समबडी टू चूज यू, लेकिन द मोमेंट दे चूज यू, यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द एविडेंस दैट दे आर गोइंग टू चेंज देयर माइंड. दैट्स वेन द रिलेशनशिप मिरर बिकम्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अ हेल्थी पार्टनर डज नॉट मेक द वूंड्स डिसअपीयर. एक अच्छा पार्टनर वो होगा जो ये नहीं कहेगा कि भाई तुम अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो और मैं सब ठीक कर दूंगा. ओके, दैट्स नॉट वॉट अ हेल्थी पार्टनर इज, बट द हेल्थी पार्टनर इज एक्चुअली गोना से लाइक, देखो भाई ये तुम्हारी इश्यूज हैं, ये तुम्हारी इनसिक्योरिटीज हैं, मैं शायद सारे तुम्हारे दुख दर्द नहीं ले सकता लेकिन आई कैन मेक यू अवेयर ऑफ देम, ताकि यू रियलाइज कि ये सारे मेरे साथ, यू डोंट हैव टू worry about all these things. Awareness creates choice. Okay, I'll make you aware of whatever you're feeling. Okay, and then you feel, then you finally say, okay, I'm not angry, I'm actually scared. Okay, I'm not losing interest, I'm afraid of being vulnerable, that's why I've become an avoidant. I'm not losing interest, I'm just afraid ki what this might turn into. Okay, I don't actually want to leave this relationship, I just want reassurance that you're going to be there. I'm not asking for too much. I'm asking someone who may not be able to give it. The one little distinction between identifying these things can change everything, right? Something to think about.

गाइस, मितवा अपने बाकी सब दिल का ख्याल रखते रखते अपनी सेहत का भी ख्याल रख लो, ठीक है मेरे मितवा। आपका डॉक्टर आपके पास कितना टाइम स्पेंड करता है? 5-10 मिनट भाई। प्राइमरी पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में जाओ, वहाँ पे पूरे 10 मिनट आपको मिलेंगे अपने अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि आप पेशेंट नहीं है, यू आर लाइक फैमिली। इट्स फॉर यू, योर फैमिली एंड द हेल्थ ऑफ आवर कम्युनिटी। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, चाहे आपको एंग्जाइटी केयर लेनी है या अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड मच मोर, इट्स ऑल अवेलेबल एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टुडे 214-666-6259। अगेन 214-666-6259। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे। योर हेल्थ इज देयर पैशन। भाई मैं पानी पीती हूँ जाके, पता नहीं ये हिचकियाँ कहाँ से आ गई, लेकिन आप ये गाना सुनिए।

गाइस भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरूर बता दूं कि डायमंड्स जो होती है ना, वो एक बार के लिए नहीं होती. दे आर फॉर एवर. दे आर मोर इरेस्टिबल इरेजिस्टिबल, स्पेशली ड्यूरिंग द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स. इंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट. सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. तो तनिष्क जाइए, फ्रिस्को में है. आई मीन मे बी यू गेट अ रियली गुड डील एंड यू कैन इम्प्रेस योर अवॉइडेंट गर्लफ्रेंड और सुपर एंक्शियसली अटैच्ड गर्लफ्रेंड, जो भी है आप, या पार्टनर या बीवी या जो भी है आपके, जिसके लिए भी लेना है आप जाके लीजिए. बाय द वे, इन अदर न्यूज टोटली अनरिलेटेड टू एवरी थिंग दैट वी वर सेइंग, द परसीड मीटियर शावर पीक्स ऑन ऑगस्ट 12th एंड ऑगस्ट 13th. तो अगर आप नॉर्थ टेक्सस में रह रहे हैं, जो कि हम सब हैं, तो ऑगस्ट 12th और ऑगस्ट 13th के बीच में द परसीड मीटियर शावर दिखेगा. अप टू 100 मीटियर्स, देर विल बी अप टू 100 मीटियर्स इन द स्काई फॉर पूरे 1 घंटा, अकॉर्डिंग टू नासा. इट इज नोन एज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड नासाज बेस्ट मीटियर शावर्स ऑफ द ईयर. इट कुड पुट ऑन क्वाइट अ शो. तो मेक श्योर यू आर कैचिंग इट टूमोरो एंड द डे आफ्टर. कौन सी डेट पे हो रहा है वो आपको पता चलेगा नासा की वेबसाइट पे. यू विल फाइंड आउट मोर, और इफ यू जस्ट गूगल इट, यू विल बी एबल टू गेट टू नो मोर अबाउट इट. आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट वी शुड ऑल वॉच आउट फॉर, क्योंकि नॉर्थ टेक्सस से आपके घर से आपको दिखेगा पूरा मीटियर शावर. इज नॉट अमेजिंग? एंड मे बी यू गाइस गेट मेक सम अमेजिंग वीडियोज ऑफ इट एंड पुट इट अप ऑनलाइन एंड देन आई कैन सी दैट. इट इज़ 9:40 ऑन द क्लॉक. मैं आपके साथ सिर्फ 20 मिनट ही हूँ यहाँ पे, तो बने रहिए, हम थोड़ी सी और बातें करेंगे, गाने शाने भी सुनेंगे. तब तक के लिए आप ये सुनिए.

Guys, this is Ippy the Hippie, and you guys are still listening to Funisha Radio 104.9 FM, and we are about to finish up my show, An Evening in Dallas. I hope आपको आज का segment पसंद आए. जरूर आइएगा कल वापस. कल हम 7 से 10 बजे तक होंगे again, all the way till Thursday. So make sure you come back for lots more amazing music and lots more chit chat and conversations and game, जैसे हम हमेशा करते हैं, right? So without wasting any more time, I hope you had a wonderful rest of your evening. अगर आप मुझे call कर रहे हैं और अगर मैं अपने station पे नहीं थी और मेरा call accidentally miss हो गया, please feel free. Last अभी 10 मिनट हैं और तो आप मुझे call करके कोई गाना request भी कर सकते हैं. I will more than happy to play your request. तब तक के लिए आप ये गाना enjoy करिए.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
2: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
2: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
1: सच में सब संभाल लेंगे
2: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 Vanessa Events, your celebration partner.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
5: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: हनन
1: लगे रहो।
2: आई लव यू।
3: हनन तेरा फोन आया यार।
1: अरे
3: चल चल।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, डीक्लटर योर डेस्क, डीक्लटर योर माइंड। सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि थॉट्स और दिमाग की भी जरूरी है। सो क्लीन स्पेस, क्लीन थॉट्स एंड क्लीन वाइब्स ओनली, यही है फनएजिया रेडियो का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस नेक्स्ट गाने को।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

0: IT is the spice of our station.
1: Yeah, 104.9 FM.
2: That's right. Pump it up.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Gandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: रोते काय को हम,

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Rest a while and run a mile with Funasia Radio.
1: जिद छड़ दे हरबीर, जे सरकार नहीं कुछ कर सकी तो तू कर लेगा।
2: संसारपुर सरकार दा पिंड नहीं, मेरा पिंड है, मैं जिंदी करूंगा हॉकी।

0: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
2: हाय, आई एम शाहरुख खान, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया।

0: काफी हो।
1: मुझसे तो लड़ ले बेटा, दुनिया से कैसे लड़ोगे?
2: आप ही दुनिया हो
0: मेरे लिए, तुम काफी हो।
3: Bringing the community together. Fun Asia Radio 104.9 FM.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉनस्टॉप बॉलीवुड, नॉनस्टॉप स्वैग।
1: Magic touch.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: Pain of God. It's going down.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hey everybody, this is Asin and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

0: प्रवीण, व्हाट इज दिस?
1: ये सब क्या है?
0: देखो, तुम्हारे पास दो दिन है
1: सर। वो
0: अगर अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं लाए ना, देन आई एम सॉरी।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: ले लीजिए, बताइए कहाँ ले चले?
1: पीएससी हेडक्वार्टर्स और फिर सीधा सरकारी अस्पताल।
2: कम से कम समय तो निकाला पटनायक साहब ने, वरना इनके पास तो टाइम ही नहीं होता किसी से मिलने के लिए।
1: ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए रुकते नहीं ना एक जगह।

0: कोई नजर में आ गया है लगता है, तभी तो मुझे बुलाए बैठे हो अकेले। कौन है?
1: कोई बड़ी हस्ती?
2: रूटीन ऑफिस वर्क।
1: रूटीन जब बदलता है तो सबसे पहले बीवियों को पता चलता है।
2: नहीं बता सकते यार,
1: मुझ पे भी भरोसा नहीं है।

0: जो ऑफिसर्स को नहीं, उनकी बीवियों का बात करना जरूरी है।
1: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

0: परेशानी,
1: बोल बचन का कतरा
0: खतरा,
1: बोल बचन की भाषा
0: झांसा।

0: वचन।
1: मेरे पिताजी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
2: नौटंकी घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा खजूर में अटकेगा।
3: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड नट।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
2: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स और ओल्डर टू गेम।
4: Ladies and gentlemen, let's get our show started here on this lovely Wednesday morning. It's the 12th of August. सबसे पहले तारीफ उस ऊपर वाले की जिसने दुनिया बनाई, चांद सितारे बनाए, ज़मीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया। उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग to all of you as we get started with our program here. And we'll do it with the voice of Ali Sethi.

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
4: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
4: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
4: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
6: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
1: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
7: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कम्फर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की best filter coffee, family dinners to catering services with Jain friendly options.
1: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
8: Hey, tumne kabhi insurance liya?
9: Liya.
8: Kabhi policy samajh bhi aaya?
9: Nahi aaya.
8: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
0: Visit www.senadainc.com today.
10: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
15: for sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
14: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
16: आपको तो लगवानी पड़ेगी।
17: ओ भाई आज बिल्कुल आजाद जाएंगे हम।
16: हाँ।
17: ओए जाते जाते किसी को नाराज नहीं करते। लगा ले लगा। चल तू कह रहा तो ठीक है यार। ला।
16: रहने दो। ऐसे ही ठीक है।
17: शुक्रिया जेलर साहब।

0: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
1: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है, एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूड़ी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
2: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में, वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
3: बेटा 95% आए?
4: हाँ मम्मी।
3: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
5: मेरा?
3: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
5: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
2: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750, call 214-529-3257.
6: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में सोना मसूरी राइस नानक पनीर पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो
6: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या
7: अब करेगा बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी मेंस एंड किड्स वेयर
8: इतना सब और प्राइस
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन अब हर आउटफिट बोलेगा
9: सुनो कल बहुत काम है पहले ग्रोसरी फिर पूजा का सामान गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
9: कहाँ
11: फूडिस्तान इन ऑबरी फ्रेश ग्रोसरी हलाल मीट पूजा एसेंशियल्स लाइव पानी पूरी केटरिंग सर्विसेज प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर
12: फूडिस्तान इन ऑबरी मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट
13: अरे यार घर मिल गया
14: घर तो देख रहा हूँ लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग
15: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर वो सिर्फ घर नहीं दिखाते हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी
14: सीरियसली अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी
15: बिल्कुल विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट him.
16: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
17: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
16: Fikar not. We have the perfect solution.
18: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special. 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
19: इस रक्षाबंधन चौक टॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौक टॉ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस
20: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
2: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
1: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
2: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
1: ये क्या होता?
2: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
3: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
0: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल.
4: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

0: If you have a song on your mind, I'd love to play it for you. Call me in the studios, 972-235-5555.
1: रेस्टोरेंट चूज करना हो गूगल रिव्यूज, होटल बुक करना हो गूगल रिव्यूज, लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
2: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
3: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
4: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
3: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
4: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
3: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
4: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
3: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Yeah, aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
12: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
11: सच में सब संभालेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
0: All right, welcome back. Ladies and gentlemen, let's do a giveaway right now. So get ready to call the studios. Number is 972-235-5555. I'm about to play a song and I need to know what movie it is from and the names of the two stars on which it is picturized. And I'm going to give out two giveaways. So if you're looking for your next favorite hangout, it's time to experience the Mirage Lounge. You'll enjoy premium hookahs, delicious bites, handcrafted cocktails, live music, and exciting DJ nights all under one roof. And the best part, happy hour runs Monday through Thursday from 11 in the morning till 6 p.m. 11 in the morning. That's wonderful. Featuring hookah starting at just $24.99 and shots for only $4.99. So don't miss the fun with ladies' night also and college night. Lots and lots happening at the Mirage Lounge. You can visit on it on McKinney Ranch Parkway because miracles happen at the Mirage. So now, when I play this song, I need your calls, 972-235-5555. And the first two who give me the name of this movie and the name of the two stars on which It is picturized. They'll get $20 off a minimum dine-in bill of $50 at the Mirage Lounge. And I'll give it to two winners, first and second. Here we go.
13: क्या मूड आया है कहानी में वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: It's Hoko.
3: अरे बस भी करो यार.
2: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
3: नाम Hoko हो या Hocho क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
4: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट

0: Grand Prize, an unforgettable sibling reunion weekend at Choctaw Casino and Resort Durant. अपनी स्टोरी WhatsApp कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
1: Choctaw Casino and Resort Durant, where unforgettable memories are made together. Must be 21 or older to participate. Terms and conditions apply. Please play responsibly.

And it is, ladies and gentlemen, Fun Asia Radio 104.9 FM that you are tuned into, and always a pleasure to be here. क्योंकि कोई भी दिन एक जैसा नहीं होता है. ये सिर्फ मेरे लिए नहीं लागू होता है, ये आप सबके लिए भी लागू होता है. वो है कि बस अपने मंडेन रूटीन से कुछ जब हटके करने की कोशिश करते हो ना, दैट इज़ वॉट मेक्स इट डिफरेंट. जैसे कि मान लीजिए कि आप हमें कभी नहीं कॉल करते, तो एक कॉल कीजिए और समथिंग डिफरेंट कीजिए. एक यादगार, एक गाना जो है आपके लिए है, वो हमारे साथ शेयर कीजिए एंड मेक इट डिफरेंट, बिकॉज वेंसडे इज़ डेफिनेटली डिफरेंट. पहले दो दिन हफ्ते के ना वर्क डेज के जैसे ही निकलते हैं, ये वेंसडे आते हैं ना, वो हमारा जो एक्साइटमेंट फॉर द कमिंग वीकेंड, जो दिल दिमाग और आसपास के प्लान्स और वो सारी जो चीज़ें बनने लगती हैं और खुशी बिखरने लगती है, दिस इज़ डेफिनेटली एसोसिएटेड विथ वेंसडे. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स मेक इट स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू. दुआ सलाम कर लेते हैं यार. हेलो, नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. दिस इज़ गपशप गली with me too.

और बताए क्या मशहूर है? मशहूर है पेज 3 ईटरी. जिन्होंने भी वहां पे खाया है दे आर स्प्रेडिंग द वर्ड. और अगर आपने नहीं खाया है तो यू मस्ट रियली. इज इट ओके टू टॉक अबाउट फूड राइट एट द बिगिनिंग ऑफ माय शो? अब क्या है ना कि ब्रेकफास्ट लेके मैं बैठी हुई हूँ अपना, तो जब खाने की बात कर रही हूँ मतलब खाना खा रही हूँ, तो खाने की बात बिल्कुल रेलिवेंट लग रही है मुझे यहाँ पर. और जो खा रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है कि वो पेज 3 ईटरी में आई कैन थिंक अबाउट द कबाब्स, द करीज एंड ऑल ऑफ दैट. हाँ, मुझे पता है कि सुबह आप वो सब नहीं खाते हो, बट देन दे हैव सैंडविचेज एंड ऑल ऑफ दैट ऑल्सो. या रियली गो टू देयर्स एंड एन्जॉय देयर फूड. पेज 3 ईटरी एट हब 121. और वेबसाइट भी बता देते हैं सो दैट यू कैन चेक आउट द मेन्यू बिफोर हैंड. page3eatery.com. शाहरुख खान, आपको याद है इस गाने में ही वॉज ईटिंग ऑल द गैजेट्स एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो. He was a robot, right?

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Hey, तुमने कभी insurance लिया?
4: लिया।
3: कभी policy समझ भी आया?
4: नहीं आया।
3: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.senadainc.com today.
6: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
5: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं।
6: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
5: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
6: इंडिया तक।
5: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
2: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
7: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com. Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route, rerouting.
2: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
8: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
2: क्यों?
8: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत, find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
2: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
8: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
9: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
10: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
9: नहीं।
10: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
9: नहीं।
10: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
9: वो भी नहीं।
10: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। For your tax planning, bookkeeping and CFO services, visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
2: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750, call 214-529-3257.
11: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
12: Tracks that put you on the right track.

एंड दैट वॉज निधिज रिक्वेस्ट. लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर ट्यून्ड इन टू गपशप गली विथ मी टू. थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा कि जो आपने कभी नहीं किया वो आज कर लें, और ऐसे में दो कॉल्स ऐसे आए जिनके साथ मेरी कभी पहले बात नहीं हुई है और पहली बार हुई है. तो निधि एंड सीता, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दैट कॉल. इट्स प्रेशियस फॉर मी कि आपने मेरी बात सुनी एंड आप मेरे साथ कनेक्टेड हुई हैं, यानी कि फन एशिया के साथ कनेक्टेड हुई हैं, और ये साथ छूटना नहीं चाहिए. ऑलराइट, तो निधि के गाने के बाद, विच इज़ बाय द वे अरिजीत सिंह वॉइस, नो ब्रेनर एट ऑल, एक ऐसी वॉइस पे जाना चाहती हूँ जिन्होंने 19 इयर्स के बाद जो है फेम पाया है. शी वॉज पार्ट ऑफ इंडियन आइडल, यू नो, एंड एक स्टेज पे उनका जब इविक्शन हुआ फ्रॉम द कॉन्टेस्ट, तो मेरे ख्याल से बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहा होगा. मिनी माथुर वॉज द होस्ट एट दैट टाइम, एंड मिनी माथुर ने उन्हें एक बात कही थी. उन्होंने कहा था कि वन डे द होल कंट्री विल बी हमिंग योर सॉन्ग्स, एंड दैट इज वॉट एग्जैक्टली हैज़ हैपन्ड विथ हर विद द रिलीज ऑफ इम्तियाज अलीज मैं वापस आऊँगा. वो जो गाना है ना, क्या ही गाया है. इसका मेल वर्जन भी है विच इज़ वेरी वेरी गुड, बट स्टिल दीपाली सहाय, दैट्स द नेम ऑफ द सिंगर who has absolutely won our hearts with her rendition.

क्या जादू है इस आवाज में, इस कॉम्पोजिशन में बाय A.R. रहमान। और जानते हैं, इसी साल जनवरी 6 को दीप दपाली सहाय, जिनकी आवाज आपने इस गाने में सुनी, उनका बर्थडे होता है और A.R. रहमान साहब का भी बर्थडे होता है। एंड दैट वाज द डे दिस ईयर दैट शी रिसीव दिस मैसेज ऑन इंस्टाग्राम फ्रॉम द कॉम्पोजर्स टीम सेइंग कि उनकी आवाज़ में एक गाना रिकॉर्ड करना चाहते हैं। दिस वाज द सॉन्ग। कैन यू इमेजिन द फॉलोइंग मंथ्स, वो जो हुआ उनके लिए ना, द गाना, द वे इट इवॉल्व थ्रू मल्टीपल ड्राफ्ट्स बिफोर बिकमिंग द वर्जन We all are hearing today, listening today and enjoying today, right? क्या मतलब कमाल की चीज़ होती है ना, ये होता है डेस्टिनी। 19 साल वेट किया उन्होंने, इंडियन आइडल में का हिस्सा बनी थी 19 years back, and for her the things materialize this year 2026. I am sure many many more songs that she is going to sing. और जिस जोन में है, इस जोन में मेरे ख्याल से, क्योंकि बर्थडेज की बात हो रही थी तो मैंने सोचा सारा अली खान को भी क्यों नहीं सेलिब्रेट किया जाए। And it is her birthday. Wishing her a very, very happy birthday from all of us to her. है ना? तो एक ऐसा ही romantic सा गाना हो जाए,

0: आई होप यू आर कीपिंग इट ईजी ऑन द स्ट्रीट्स, क्योंकि सुना है कि म्यूजिक ऐसा सॉफ्ट सा हो तो ना आपके चलाने का स्पीड भी आराम से सिंपल एंड स्मूथ होता है, क्योंकि जैसे जैसे म्यूजिक बढ़ता है ना, बिलीव इट और नॉट, हमारा स्पीड भी कई बार उस रिदम को मैच करने के लिए बढ़ता है. ऐसा रिसर्च कहती है कि वो अनकॉन्शियस स्पीडिंग या एक एक्साइटमेंट के कारण स्पीडिंग, या कई बार ऐसा होता है ना कि मेंटल वर्कलोड इतना होता है इतने बिल्कुल फुट टैपिंग म्यूजिक के साथ कि आपका जो रिएक्शन है वो डिलेड हो सकता है ऑन रोड्स. ये सारा कुछ ना रिसर्च बता रहा है. तो होपफुली द म्यूजिक आई एम प्लेइंग राइट नाउ इज कीपिंग यू इजी ऑन रोड्स एज वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन. जिसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं आगे कोई ऐसे अपबीट गाने नहीं लगाऊंगी. दिस इज अ फेयर डिस्क्लेमर मेरे ख्याल से कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जी हाँ, फनेशर रेडियो 104.9 FM बहुत इंजॉय कीजिए, लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आंखें सीधी आपके आपके ड्राइविंग पे और सीधे अपने रास्ते पे होना चाहिए. एंड बी माइंडफुल अबाउट ड्राइविंग, लेडीज एंड जेंटलमैन. दिस इज गपशप गली विथ मीठू, जहाँ पे बताना चाहती हूँ कि यार ड्राइविंग केयरफुली सब की तो बात है, लेकिन अगर गलती किसी और की हो तो क्या. तो अटर्नी ओमर ख्वाजा है ना कि अगर आपके कोई एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट एनीथिंग हैपेंस एंड यू नीड दैट कॉम्पनसेशन, यू डिजर्व दैट कॉम्पनसेशन, येट यू आर नॉट वॉन्टिंग टू गेट इन टू द in the hustle and the all the intricacies of insurance companies, तो फिर आप इनके साथ पहुंचे, इनके पास पहुंचे. 4693005046.
1: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो.
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
5: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं ही तो.
7: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
9: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
7: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
6: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
1: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
7: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: Hi, USA. This is Imran Hashmi.
14: Hi, this is Isha Patni.
13: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio.
14: One of Bollywood's most loved cult classics returns.
13: I'm back as Shivam Pandit, and this time the emotions are deeper. The music is set to touch every heart once again. And the legacy continues. Witness Awar Appan 2 in cinemas from 14th August.
15: Tracks that put you on the right track.

set in 2016 BCE at the height of the Indus Valley civilization. Mohenjo-daro ye film ka naam hai jo 2016 ko release hui thi aaj hi ke din. Welcome back ladies and gentlemen. Thank you very much for tuning into my show jiska naam hai Gapshap Gali with Me Too. Aur is segment mein hum kuch aise filmon ke gaane sunwate hain which released on this exact day. To aaj kya tareek hai? Aaj hai 12 अगस्त और 12 अगस्त को जैसे कि मैंने कहा 2016 में ये फिल्म रिलीज हुई थी स्टारिंग पूजा हेगड़े एंड ऋतिक रोशन एंड दैट्स मोहनजोदारो एज वी ऑल आर अवेयर ऑफ. कुछ 3 साल का रिसर्च उन्होंने किया था आशुतोष गवारिकर द राइटर एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. और 3 साल के रिसर्च के बाद मतलब आर्कियोलॉजिस्ट के साथ रिसर्च की थी उन्होंने, हैवी, बहुत ही हैवी रिसर्च थी. और इसके बावजूद भी हिस्टोरियंस दे फेल्ट कि काफ़ी कुछ हिस्टोरिकल एक्यूरेसीज फिल्म में मेंटेन नहीं की गई. फॉर इंस्टेंस अरेबियन हॉर्सेस जो फीचर की गई थी तो वो उस जमाने में इंडिया में नहीं आई थी, तो हाउ कुड ही शो दैट. सो दीज वर द कॉन्ट्रोवर्सीज अराउंड इट. द फिल्म डिड नॉट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस एट ऑल. ब्रूटल बॉक्स ऑफिस क्लैश था इस फिल्म का, पता है किस फिल्म के साथ? रुस्तम. यस, रुस्तम ऑल्सो रिलीज ऑन द सेम डे जो कि सुपर हिट रही एज वी ऑल नो. अक्षय कुमार को अपना पहला नेशनल अवार्ड मिला फॉर बेस्ट एक्टर फॉर दिस रोल इन रुस्तम लेडीज एंड जेंटलमैन. लेकिन नेवल ऑफिसर्स का भी कुछ यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हुए थे, कुछ माइल्ड कॉन्ट्रोवर्सीज थे. रियल लाइफ नेवल ऑफिसर्स पॉइंटेड आउट सेवरल हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज ऑन सोशल मीडिया इंक्लूडिंग द यूज ऑफ रॉन्ग मेडल्स एंड ए मॉडर्न नेम टैग फॉर्मैट दैट वॉजंट यूज ड्यूरिंग द 1959 सेटिंग ऑफ द KM नानावती केस. नॉनदलेस फिल्म थी सुपरहिट और ये गाना भी.

दिस इज गपशप गली विथ मी टू. लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और फिल्म का गाना सुनवाना चाहती हूँ जो आज ही के दिन रिलीज हुआ था. दैट्स कमिंग अप फॉर यू नेक्स्ट. लेकिन उसके पहले आई डू वांट टू शेयर अ लिटिल बिट ऑफ दिस यू नो प्लेस दैट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग फॉर यू. आई विल टेल यू व्हाई एग्जैक्टली. क्योंकि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हम चाहते हैं डॉक्टर हमें वो पूरा टाइम दे जो जो उनको हमारी प्रॉब्लम समझने में लगे और उसके बाद हमें समझाने में लगे. कोई रश वाली कुछ वो सारा कुछ प्रॉब्लम ना हो. तो दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट इन टच विद देम इफ़ यू वॉन्ट दैट प्रॉपर केयर. और अगर आप चाहते हैं कि यू आर हर्ड वेल एंड अंडरस्टूड वेल एंड देन गिवन द सजेशंस वेल, इनफ टाइम हो उनके हाथ में, वैसा आपको हेल्प मिलता है यहाँ. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, डू रिमेंबर दैट. एनजाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग एंड मच मोर, दैट इज ऑल अवेलेबल अंडर वन रूफ एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. और उनके तरफ से हर रोज एक हेल्थ टिप हम जो आपके लिए लेकर आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द लार्जेस्ट ओवरऑल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी एंड दैट स्किन, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो स्किन जो है हमारे पूरे, इट डज वे मोर देन जस्ट कवरिंग आर बॉडी, यू नो दैट राइट. इट हेल्प्स रेगुलेट टेम्परेचर, प्रोवाइड सेंसेशन एंड सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट बैरियर बिटवीन योर बॉडी एंड द आउटसाइड एनवायरनमेंट. सो टेक केयर ऑफ योर स्किन वेरी वेरी वेल. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू. और यहाँ पे जो मैं इस अगले फिल्म पे जाने वाली हूँ ना, इट इज ए फिल्म दैट स्टार्स लेट्स सी सैफ अली खान, अमिताभ बच्चन. एक्चुअली मुझे अमिताभ बच्चन का नाम पहले लेना चाहिए था. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वंस अगेन, अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, मनोज बाजपेयी, दीपिका पाडुकोण, प्रतीक बब्बर. फिल्म का नाम आरक्षण. एंड दिस आरक्षण फिल्म वॉज एन इंटेंस ड्रामा बाय प्रकाश झा. और ये इंडियन कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम पर था और इसीलिए एक मैसिव पॉलिटिकल पुशबैक मिला था इस फिल्म को. और उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पे स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस फिल्म पे बैन लगा दिया था, जो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे फिर हटाया कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने आप से बैन नहीं लगा सकती अगर फिल्म सर्टिफाइड हो गया है बाय द सेंसर बोर्ड. एंड दैट्स हाउ आरक्षण वॉज रिलीज टू द थिएटर्स. जो एवरेज चली विच रिलीज ऑन दिस डे इन 2011.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
6: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव।
7: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331 99.
8: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
9: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
10: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
9: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
10: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
9: और एंटरटेनमेंट,
10: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
9: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
10: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
11: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
12: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
11: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy।
12: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn। समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट एस्ट्रोलॉजर ईश्वर .com।
13: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। Must be 21 years or older to game.

You are tuned into Gupshup Gali with me too on Funny Asia Radio 104.9 FM. आने वाले दिनों में कोई अगर सेलिब्रेशन है आपकी जिंदगी में तो हम थोड़ी सी आसान एक आसान रास्ता हम आपको बताने वाले हैं. एंड दैट रास्ता गोज टू वेनिसा इवेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन. जी हाँ, वो जो स्ट्रेस होता है ना कि वो वेन्यू, वो डेकोर, वो केटरिंग, वो सारी जो छोटी छोटी डिटेल्स आप मिस नहीं करना चाहते हो, ये मिस नहीं करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि ये जो आपने प्लान किया ना उससे कहीं और बेहतर हो. दे मेक प्लानिंग simple by bringing everything together in one place, चाहे वो venue selection हो, एक beautiful decor जो कि signature events आपके लिए करेगा, to photography, hospitality and delicious catering exclusively by the renowned Basera Grand. Ladies and gentlemen, जरूर याद रखें हरी बसेरा को call करने का. ध्यान रहे आपको 469-442-8770 is that a number for all of you. Vanessa Events, your celebration partner. And हम हैं आपके life partner of sorts, right? कि वो जिंदगी के कोई भी मोड हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आपका मूड अच्छा हो, चाहे आपका मूड बुरा हो, जैसा भी दिन हो.

जो भी वक्त है हम आपके साथ हमेशा रहते हैं. तो हुए ना हम आपके लाइफ पार्टनर. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मीठू, जहाँ पे कुछ बातें इस वक्त हम करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड सेगमेंट में. कुछ रोजमर्रा की बातें, कुछ ऐसी बातें जो आपको भी कनेक्ट करें और मुझे भी. तो ऐसे में ना कुछ कंटेजियस चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ यहाँ पर. यस, वो सारी चीज़ें जो आपको दूसरों से मिलती हैं, जैसे कि नहीं, वो जैसे कि मैं थोड़ी देर में आऊँगी, लेकिन हाँ, दिस इज़ नॉट अबाउट सर्दी खांसी, दिस इज़ नॉट अबाउट फ्लू, बट समथिंग एल्स दैट इज़ सो सो वेरी कंटेजियस अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट. तो बने रहे मेरे साथ राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM.

यस लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सेगमेंट में जो कि है जिंदगी अनप्लग्ड, कुछ जिंदगी की बातें करते हैं और एक उस चीज की बात करते हैं जो बेहद कंटेजियस होता है. एक नहीं, कुछ चीजों की बात करेंगे यहाँ पर और आपको भी कंट्रीब्यूट करना है इफ यू हैव एनीथिंग दैट इज डेंजरसली कंटेजियस, क्योंकि साइंस कहता है कि देर आर सर्टन एवरीडे बिहेवियर्स इन ह्यूमन साइकोलॉजी जो कि वायरल कोल्ड से भी ज्यादा वायरल है. जैसे कि फॉर इंस्टेंस यॉन, यार मतलब आप किसी मीटिंग में, एक बोरिंग से मीटिंग में बैठे हुए हो, ठीक है, और एक बंदे के यॉन करने की देरी होती है कि आसपास उसका इफेक्ट नजर आता है. सीरियसली टेल मी, एंड जस्ट मीटिंग से क्यों लूँ मैं, ऐसे कुछ फ्रेंड्स गैदरिंग भी होती है जहाँ पर कि आप बैठे हो एंड देन द कॉन्वर्सेशन इज नॉट दैट हैपनिंग और ग्रेट या बोरिंग कंपनी है यार, कभी कभी तो होता है ना वो भी, और आपको यॉन आता है और मतलब आप देखोगे उसका असर उन सब पे होता है जो खुद भी बोर हो रहे हैं. तो यस, यॉनिंग इज डेफिनेटली कंटेजियस इन अ वेरी वेरी वेरी बिग वे एंड इन वेरी एम्बैरेसिंग वे, क्योंकि जब एक बार आना शुरू होता है बॉस. स्कूल में कितनी बार मैंने यॉन किया, मैं वही सोचने की कोशिश कर रही हूँ. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विद मी टू. ऐसी रोजमर्रा की चीजें जो बड़ी कंटेजियस है यार, बहुत सारी हैं, आई विल टेल यू.

0: All right, ladies and gentlemen, things that are contagious in our world. सर्दी खांसी जुखाम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बिहेवियरल, ह्यूमन बिहेवियरल, जो फेशियल इमिटेशंस जो हम करते हैं, फेशियल मिमिक्री जो हम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यौन की बात हमने की, विच इज़ सो कंटेजियस लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड इट इज़ अ फैक्ट, या आप किसी कमरे में हो और कोई यौन कर रहा हो तो कहीं तो वो आप पर भी हो ही जाता है उसका असर. वैसे ही फ्राउनिंग का भी होता है, आपको पता है फ्राउनिंग एंड ग्रिमेसिंग आर इक्वली कैचिंग, बिलीव इट और नॉट. कि आपके आसपास अगर कुछ लोग हैं जो हमेशा मुंह फुलाए रहते हैं तो आप यकीन नहीं करोगे कि कुछ दिनों में आपका भी मुंह फूला हुआ सही दिखेगा आपको. नॉट लिटरली, एज इन कि हमेशा, मतलब जो कहते हैं ना कि हमेशा थोड़ा सा दुखी दुखी तो नहीं कहूँगी, चलो कंप्लेंटिव टाइप के रहना हमेशा, मतलब ना ज़्यादा कुछ स्माइल वाइल करना. आप समझ गए हो ना मैं क्या कह रही हूँ. सो यस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कंटेजियस. और क्या और है जो कि कंटेजियस है वो तो मैं बताना चाहती हूँ, और विस्तार में बताना चाहती हूँ, क्योंकि दैट इज़ लाफ्टर लेडीज एंड जेंटलमैन. एक कमरे से आपको दूर कहीं से हंसी की आवाज़ सुनाई देती है और उससे आप भी, यू ऑल्सो स्टार्ट लाफिंग एट टाइम्स. हैजंट इट हैपन्ड कि कोई जोक आपको बोल रहा है, वो जिस तरह से बोल रहे हैं, मतलब हंसते हंसते इस उनकी खुद की हंसी नहीं कंट्रोल हो रही है और वो देखकर आपको हंसी आ जाती है. अरे यार, कितने सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं. आई विल टेल यू, ये चीज़ ना मेरा वीक पॉइंट है एक्चुअली, कि मैं और मेरी फ्रेंड, आई स्टिल रिमेम्बर कि हम एक किसी थर्ड से मिले एंड शी हैपन टू नो अस एंड वी वर ड्राइंग अ ब्लैंक. बोथ ऑफ अस वर ड्राइंग अ ब्लैंक, बट इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग एज शी वॉज ट्राइंग टू यू नो टेल अस कि कौन है एंड क्या नाम है उसका एंड ऑल ऑफ दैट वॉज हैपनिंग. और वो दूसरी फ्रेंड को हंसी आ गई फॉर सम रीज़न, एंड उसको हंसते देख कर ना मैं भी हंसने लगी, एंड इट वॉज सो एम्बैरेसिंग आई कॉन्ट टेल यू. कि वो सामने बंदी खड़ी है, एडल्ट्स वी आर, एंड वो हंसने लगी, मेरी जो क्लोज फ्रेंड है वो हंसने लगी एंड मैं हंसने लगी उसके साथ, एंड देन वी कुडंट कंट्रोल आर लाफ्टर एंड इट वॉज एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग ऑनेस्टली. और ऐसे बहुत सारे एम्बैरेसिंग सिचुएशंस मैंने फेस किए हैं, आई एम श्योर आपने भी किए होंगे कभी ना कभी, कहीं ना कभी, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे. यू आर लाइव ऑन एयर, होपफुली दिस इज अबाउट ए लाफ्टर थिंग दैट यू आर गोइंग टू टेल मी अबाउट.
1: Yeah, Mitu ji, how are you?
0: I am doing fantastic. बताइए, कोई किस्सा आपके साथ भी हुआ?
1: अरे आज ही सुबह हुआ, पता है. We were in office call. अभी भी मेरी हंसी नहीं रुक रही है, right?
0: मैं देख रही हूँ.
1: तो हम लोग ऑफिस कॉल पे थे and that person was sharing something on the screen, okay? And everybody was saying कि भाई ये बहुत हेजी दिख रहा है, बहुत हेजी दिख रहा है. तो वो बंदा जो शेयर कर रहा था वो बोल रहा है, हाँ मेरे को भी हेजी दिख रहा है, क्योंकि मैं चश्मा लगाता हूँ. चश्मा लगा के उसको
0: Oh God.
1: तेरा चश्मा लगाने से हम लोग
0: और वो होता है कि एक जन हंसने लगे ना फिर बाकी सबकी भी हंसी छूट जाती है ना.
1: अरे गॉड, इतना कभी कभी हंसी आती रहता
0: एक्चुअली. एंड इट इज सो कंटेजियस एंड इट इज गुड दैट इट इज कंटेजियस, क्योंकि ये सबको जरूरत है इसकी.
1: ये कंटेजियस बीमारी सबको चाहिए,
0: बिल्कुल चाहिए. लेकिन मैं आपको एक सिचुएशन में बताऊं, मैं क्लासरूम में थी अपने, मुझे आज भी याद है, एक टीचर थी, आई थिंक आई वाज इन नाइन्थ ग्रेड एट दैट टाइम, और मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी हुई हूँ. कुछ एक बात पे मेरी हंसी ट्रिगर हो गई, आप सोच सकते हो कि मतलब वो पढ़ा रही है हाँ, और मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपनी हंसी को कंट्रोल करूँ. मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ पेंसिल ड्रॉप किया, नीचे झुक के लेने की कोशिश की, अपनी हंसी दबा रही हूँ, हुआ नहीं. एंड फाइनली आई हैड टू गो आउट ऑफ द क्लास व्हेन शी नोटिस कि मैं हंस रही हूँ फॉर नो रीजन इन द वर्ल्ड एट ऑल. जिस बात पे हंस रही थी वो एक्चुअली वो
1: पागल हो गया.
0: हाँ नहीं, सच में थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी यार, मजा आ गया. सीरियसली लाफ्टर इज सो कंटेजियस, और कंटेजियस ऐसी चीजें हो तो क्या बात है. ये जो लेडी है इन द सॉन्ग, वेल शी इज नोन फॉर हर स्माइल एंड हर लाफ्टर यार, इसीलिए तो लगाया. द वन एंड ओनली माधुरी दीक्षित, जस्ट इन केस यू डोंट नो हु इज इट इज फीचर्ड ऑन.

0: समथिंग दैट इज वेरी वेरी कंटेजियस, दैट्स लाफ्टर दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. बस उसी को फैलाते रहे. लेट दैट बी द मोस्ट कंटेजियस थिंग इन द वर्ल्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन. हम सबको इसकी सख्त जरूरत है. एंड फॉर द लिसनर्स हु शेयर दिस स्टोरी, इंक्लूडिंग द जेंटलमैन, आई फॉरगॉट टू आस्क हिज नेम, वेल थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी. और हमारे साथ दो तीन और लिसनर्स जुड़े जिन्होंने अपनी कहानियां बताई कि यार कितना एम्बेरसिंग हो सकता है जब हंसी रोकी नहीं रुकती, ऐसे गलत जगह पे भी हंसी आती है कई बार, और जितना दबाने की कोशिश करो उतनी आती है, है ना. एक बच्चे की हंसी, आह दैट्स सो क्यूट.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से स्ट्रेस.
3: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
3: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
2: ये क्या होता?
3: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
5: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
7: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
6: सच में? सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: हेलो, वीकेंड लंच इमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
14: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है.
13: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
15: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet, from flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend let the Flavor Lounge do the cooking.
16: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
15: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750, call 214-529-3257.
16: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
17: tracks that put you on the right track.

इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस सॉन्ग, तो बता देते हैं आने वाली फिल्म है जिसका नाम है श्री श्री, स्टारिंग दुलकर सलमान एंड इट इज ऑल्सो पूजा हेगड़े विथ हिम. और ये फिल्म दिसंबर में कभी रिलीज होने वाली है. टेल मी इफ आई एम करेक्ट अबाउट दैट. इट्स गोइंग टू बी अ पैन इंडिया मल्टी लिंग्वल रोमांटिक कैंपस ड्रामा. और ये फिल्म जो है तेलुगु, तमिल, मलयालम और साथ में हिंदी में भी रिलीज होने वाला है. और टैगलाइन पता है क्या है? लव विल स्पार्क अगेन. ऑलराइट, ये गाना इतनी जल्दी ऐसे रिलीज हो गया है, मैं यही सोच रही हूँ, क्योंकि इट इज़ यूजुअली अराउंड द टाइम ऑफ रिलीज, अनलेस द रिलीज डेट वॉज मच अर्लियर और इसे पुश बैक किया गया हो, शायद ये भी हो सकता है. बाकी ये गाना मुझे पसंद आया तो आई थॉट आई विल प्ले इट फॉर यू. एंड मुझे दुलकर सलमान बहुत पसंद है, इसीलिए भी ये गाना मैंने आप लोगों के लिए लगाया. तो इट कॉल्स फॉर अनदर सॉन्ग फीचरिंग दुलकर सलमान और फिल्म का नाम है कारवां. इरफान खान, दुलकर सलमान और साथ में मिथिला पालकर की ये फिल्म है जो मैंने अपनी सिस्टर के साथ फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था. देर आर सो मैनी मेमोरीज दैट वी हैव ऑफ आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट? तो बस वही मेमोरीज का कुछ एक हिस्सा हमारे साथ भी शेयर करिए यार. अपने तक ही क्यों रखेंगे अपने इंटरेस्टिंग किस्से, आप हमें बताइए ना. 9722355555 एंड आई विल गिव यू अ रीजन फॉर इट. ऑलराइट, ये रक्षाबंधन जो आने वाला है इसी महीने, फनीशर रेडियो एंड चौकटाओ कैसीनो एंड रिसोर्ट इन ड्यूरेंट, वी वांट टू मेक इट एक्स्ट्रा स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू. तो आप अपने एक मिनट का वॉइस नोट भेजो ऑन द व्हाट्सएप नंबर 2148377147 एंड यू कुड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज और ग्रैंड प्राइज. आप सबको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है, लेट मी टेल यू, अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड at Choctaw Casino and Resort to in Durant will be written and signed for you. yani ki aapke naam kar diya jayega, to zarur hissa bane iska aur jiska hissa aap abhi bhi ban sakte hain. if you give me a call right now, you straight away get into the contest, so you can be one of the winners, you know. so give me a call 9722355555 to share anything interesting about your brother or your sister. एक और किस्सा मैं बताने वाली हूँ, मेरे एक कज़न है, उनका जो ये किस्सा है ये मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को. लेकिन यू बी रेडी, ऑलराइट, आफ्टर द सॉन्ग लेट्स टेक अ कॉल और टू एंड मेक यू एन ऑटोमेटिक, गिव यू दैट एंट्री इनटू द कॉन्टेस्ट.

बारिश का असर ये गाना था, लेकिन बारिश के कोई आसार नहीं है ये मैं आपको बता सकती हूँ। वेदर फोरकास्ट लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर ऑल ऑफ यू, आज वेंसडे के दिन और आने वाले दिनों में ऑल अंटिल द वीकेंड आई बिलीव, ये जो हम देखने वाले हैं कि गर्मी है, लेकिन देर विल बी अपटेक इन द विंड दैट यू गोन टू सी, 30 to 35 miles पर आवर एट टाइम्स दैट यू गोन टू सी, एंड थैंक्स थैंकफुली इट इज़ द केस, बिकॉज गर्मी और ऊपर से हवा नहीं होना ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर गर्म गर्म हवा होगी, लेकिन हवा तो है, दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग है। लो लेवल्स ऑफ ह्यूमिडिटी रहेगा, हाई हीट रहेगा, और इंक्रीज इन द फायर डेंजर लेवल्स दैट यू विल हैव टू हैव ऑल द कॉशंस फॉर, टेक ऑल द प्रिकॉशंस, प्रैक्टिस योर फायर सेफ्टी टिप्स लेडीज एंड जेंटलमैन। और वीकेंड जो है हमारे ट्रिपल डिजिट में ही रहने वाला है। आज का हाई मेरे ख्याल से 101 degrees है, बट द हीट इंडेक्स इज़ वॉट टेक्स द टेम्परेचर टू अनदर लेवल, सो येस दैट इज़ गोइंग टू बी इन प्ले ऑल द वे टिल संडे। संडे को तो भाई 102 भी पहुँचने वाला है, बट ऐसा ही कुछ टेम्परेचर रहने वाला है। नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज इन द कमिंग डेज, सो येस नथिंग दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर आप टेक्सिस में अभी अभी आए हो तो वेलकम टू टेक्सिस, एंड बाकी सब हम तो भाई यूज टू हैं ही, इजेंट इट ट्रू? अच्छा, वॉट एल्स इज ट्रू अबाउट दिस वीक इज द अपकमिंग फिल्म आवारापन 2, जो रिलीज होने वाली है जल्द ही आपके नियरेस्ट थिएटर्स में, और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगी, लेकिन पहले गाना सुन लेते हैं और अरिजीत सिंह की आवाज़ इंजॉय कर लेते हैं, एंड आई विल कम बैक टू आवारापन 2 स्टारिंग इमरान हाशमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑगस्ट 14 इज द डेट ऑफ रिलीज।

आवारा पंत टू कमिंग टू द थिएटर्स लेडीज एंड जेंटलमैन 14th of August दिस वीक इट इज गोइंग टू सी इट्स रिलीज. और ये जो है ये हम जानते हैं कि नियरली 19 ईयर्स आफ्टर द 2007 कल्ट क्लासिक दैट दिस सीक्वल इज कमिंग टू द फिल्म. एक्शन ड्रामा फिल्म है. इमरान हाशमी रिप्राइजिंग हिज रोल एज शिवम इन दिस वन. और क्या बताऊँ, और ये बता सकती हूँ कि मोहित सूरी ने आवारा पंत डायरेक्ट की थी. और ये जो है ये डायरेक्ट करने वाले हैं नितिन कक्कर. नितिन कक्कर वो हैं जिन्होंने फिल्मिस्तान एंड देन मित्रों जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं. तो ये काफी बड़ी फिल्म है. विशेष फिल्म्स प्रोड्यूसिंग दिस वन. सो गेट रेडी फॉर इट लेडीज एंड जेंटलमैन. रिडेम्पशन, लव और सैक्रिफाइस जो कहानी का हिस्सा बनने वाला है. ब्रेथ टेकिंग लोकेशंस तो होते हैं आजकल हमारे फिल्म में, लेकिन पावरफुल परफॉर्मेंसेज इज वॉट इट वाउचेस फॉर. और गाना तो आपने सुना ही कि एक बात तो है गाने में. क्या कहते हैं अरमान मलिक the composer who has done the job of composing for Avarapan 2.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Jaane wo kaun sa desh jahan tum chale gaye.
7: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती. और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए. रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन.
8: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
13: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
14: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
15: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट. और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को.
16: बेटा 95% आए?
17: हाँ मम्मी.
16: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
18: मेरा?
16: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
18: वो
19: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
20: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
18: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750, call 214-529-3257.
17: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
20: And ladies and gentlemen, yes, do make a note of that. And it is something that we are so proud to share with you once again. It is IANT Anand Bazaar 2026, and which is the 80th Independence Day at IANT Anand Bazaar that we are going to celebrate together, come together, enjoy together, just like every other year. Bahut special hone wala hai ye. Comerica Center in Frisco, ladies and gentlemen. Aur sabse अच्छी और बड़ी बात यह है कि ये सबके लिए फ्री जो होने वाला है. यू कैन एंजॉय द ऑथेंटिक इंडियन फूड, ग्रैंड परेड होने वाला.

फ्रांको अमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को, लेडीज एंड जेंटलमैन। और सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि ये सबके लिए फ्री जो होने वाला है। यू कैन एंजॉय द ऑथेंटिक इंडियन फूड, ग्रैंड परेड होने वाला है, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, लाइव म्यूजिक, शॉपिंग, सारा कुछ। और वो जो नॉस्टैल्जिया दैट यू कैरी फ्रॉम योर यंगर डेज, प्रॉबेबली बैक इन इंडिया, द वे यू यूज्ड टू सेलिब्रेट, वो सारा कुछ यहाँ पे वैसा ही कुछ मंजर होने वाला है, वैसी ही कुछ वाइब, वही एनर्जी लेकर ये फिर एक बार जो सेलिब्रेशन होने वाला है इसका हिस्सा जरूर बने। नॉर्थ टेक्सास बिगेस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन at IANT Anand Bazaar 2026. You are listening to Gupshup Gali with me too.

दो बहुत ही मशहूर गानों का अमालगमेशन इस एक गाने में, मिक्स टेप पंजाबी, गुरु रंधावा और नेहा कक्कर की आवाजें इस गाने में सुन रहे थे आप। दिस इज गपशप गली विद मी टू एंड दिस लास्ट सेगमेंट इज द ताजा एंड न्यू सेगमेंट, द फ्रेश ड्रॉप सेगमेंट, जहां पे जो नया ताजा चल रहा है वो हम बताते हैं, चाहे वो टेक की दुनिया से हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट की दुनिया से हो, चाहे वो कहीं से भी हो, अगर वो हमारी नजर पड़ी है तो वो हम आपकी नजर करते हैं। एंड दिस इज दैट वेरी स्पेशल सेगमेंट। तो नया ताजा जो एक गुरु रंधावा का गाना आया है उसके बारे में जानते हैं कि नहीं आप? और अगर जानते हैं तो कॉल जरूर कीजिए, क्योंकि इफ यू गिव मी द राइट आंसर टू दैट, पता तो चले कितने अप टू डेट हैं आप म्यूजिक की दुनिया के साथ। तो अगर आप जानते हैं तो जरूर कॉल करके मुझे बताइए द नेम, द टाइटल ऑफ गुरु रंधावाज न्यू ट्रैक, जो बहुत बहुत ट्रोल जा रहा है यार, बहुत ही ज्यादा। हम जानते हैं कि गुरु रंधावा इज सच अ लव्ड सिंगर एंड कंपोजर, राइट? तो

0: यहाँ पे ये कुछ अलग देखने को मिल रहा है, और ये गाना, वो क्या गाना है वो आप मुझे आप बताने वाले हो, ठीक है? 9722355555, दैट्स द नंबर इन द स्टूडियो। और उसके बदले में मेरे पास है सैन इडली की तरफ से आपके लिए एक बढ़िया सा टेस्टी सा गिव अवे। इट्स डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी। सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जो कि है हाईवे 121 और कस्टर की जंक्शन पर, और यहाँ पे कैटरिंग सर्विसेज, येस ऑफ कोर्स दे डू दैट एज वेल, विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस एज वेल, दैट इज अवेलेबल एट सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। अगर आपको पता है कि गुरु रंधावा का वो कौन सा गाना है विच इज बींग रोस्टेड अ होल लॉट, आप मुझे ज़रूर बताइए। सी, रोस्टिंग कल्चर में मैं बिल्कुल नहीं बिलीव करती हूँ, ये बिल्कुल ही नाइंसाफी होती है कि ये पल में आपने सिर पे चढ़ा दिया और पल में बिल्कुल ज़मीन पर उतार दिया, ये चीज़ें ना पसंद नहीं आती हैं। लेकिन चलिए, जो पसंद है वही प्ले करते हैं हम यहाँ पर। तो वो गाना तो मैं नहीं प्ले करूँगी, लेकिन एक और गुरु रंधावा का गाना ज़रूर प्ले करूँगी। यू आर लाइव ऑन एयर, टेल मी, डू यू नो द आंसर टू दिस वन?
1: फाइन शिट।
0: एब्सोल्यूटली करेक्ट, गुरु रंधावा का ये गाना फाइन शिट। यू आर, व्हाट्स योर नेम?
1: अंशु।
0: अंशु, यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट ऑन दैट। और इसी पे चीयर्स हो जाए फिल्टर कॉफी का एंड आपकी चॉइस ऑफ डोसा का, ठीक है? प्लीज होल्ड द लाइन एंड आई विल टेक ऑल योर डिटेल्स ऑफ एयर। अंशु, थैंक यू फॉर योर कॉल।
1: थैंक यू।
0: मुझे पूरा यकीन था कि हमारे लिसनर्स ना बिल्कुल अप टू डेट हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, ये फाइन शिट, ये जो गाना है बहुत ट्रोल किया जा रहा है, सीरियसली बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। एंड आई विल टेल यू दिस ऑल्सो कि ये जो है जेंजी को अपील करते हुए गाना एज इफ बनाया है, ये भी ट्रोल में आया है। एंड सम ऑल्सो क्रिटिसाइज द सॉन्ग्स पोर्ट्रेयल ऑफ फीमेल डांसर्स, अक्यूजिंग द वीडियो ऑफ सेक्शुअलाइजिंग वुमेन इन वर्क प्लेस सेटिंग्स, और बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे पोस्ट बन रहे हैं। तो वो गाना तो मैं कतई नहीं प्ले करूंगी, नॉट बिकॉज आई डेंट लाइक द सॉन्ग टू बी ऑनेस्ट, बट ऑल्सो बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द ट्रोलिंग हियर। तो चले, जो अच्छा है वो सुनते ना।

गुरु रंधावा की स्माइल उनपे वाकई में बहुत सूट करती है. गुरु रंधावा एंड कनिका कपूर इन दिस सॉन्ग दैट यू हर्ड फ्रॉम मिक्स टेप. वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. आपके लिए एक और इनाम जीतने का एक और मौका. सी अंशु हैज वन फ्रॉम सैन इडली रेस्टोरेंट. आई वॉन्ट टू गिव अवे वन मोर सैन इडली रेस्टोरेंट टू वन ऑफ यू कि भाई एक और अपने पसंद का डोसा और फिल्टर कॉफी इंजॉय करे तो मुझे बड़ा मजा आएगा. एंड ऑल्सो सैन इडली रेस्टोरेंट दैट वी want to give a big shout out to यार जितने भी ये जगह होते हैं ना जो आप लोगों को गिव अवेज देते हैं यार, बनता है कि उनके लिए एक दिल से shout out हम यहाँ पे करें on Furniture Radio 104.9 FM. So here is the thing, ये जो मैं अगला गाना बजा रही हूँ आप पंजाबी फ्लेवर का गाना सुन लिया, थोड़ा हरियाणवी सुना जाए. और ये जो है ये ब्रदर्स का एक ग्रुप बोल सकते हैं या ये जोड़ी जो है इनका ये किस नाम से जाने जाते हैं ये बता दीजिए बस. एंड यू कैन विन from San Idli restaurant right away 972-235-5555 number in the studio. क्योंकि इनका ये जो गाना है ये सुपर डुपर हिट हुआ है, वायरल हुआ है और अभी दो हफ्ते के अंदर अंदर एक और गाना इनका सुपर डुपर हिट हुआ है, तो बनता है ना कि ताज़ा एंड न्यू सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए.

क्या गाना है बॉस, और हरियाणवी ये गाना जो कि एक इंडी पॉप डुओ ने पॉपुलराइज किया है, पैन इंडिया गाना, दैट इट हैज बिकम सो वायरल कि ग्लोबली भी लोग इंजॉय कर रहे हैं और हम भी यहाँ बैठे बैठे ये गाना कितनी बार मैंने आपके लिए चलाया है, आई हैव नो क्लू, बट आई डिंट हैव एनी क्लू कि आपको कोई क्लू नहीं है कि ये कौन है, हु इज दिस इंडी पॉप डुओ, क्या है इन भाइयों का नाम, तो जान लीजिए अनुज कुमार और सुमित कुमार, ये हैं जो कि जिन्होंने ये बंजारे के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने ये गाना जो आपने सुना अभी बैरन, ये उन्होंने ही कंपोज किया है और उन्होंने ही गाया है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट हाउ दे केम इनटू द बिजनेस. तो क्या है ना कि कोविड के लॉकडाउन के दौरान यूट्यूब ट्यूटोरियल से म्यूज़िक प्रोड्यूस करना सीखा है इन्होंने, एंड देन उन्होंने बैरन बनाया एंड इट वेंट एब्सोल्यूटली वायरल टू द एक्सटेंट कि अब इनका कनेक्शन हॉलीवुड फिल्म के साथ भी है. दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू प्ले फॉर ऑल ऑफ यू राइट नाउ. तो जी हाँ, बंजारे जो कि बरसात गाना लेकर आए हैं, एंड सोनी पिक्चर्स दे पिक्ड अप देयर सेल्फ प्रोड्यूस्ड हरियाणवी ट्रैक बरसात, जो कि प्रोमोशनल कैंपेन के तौर पर यूज किया गया इन इंडिया फॉर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. सो दिस इज अ बिट ऑफ अ स्टेल न्यूज देयर, लेकिन फॉर पीपल हु डिडंट इवन नो दैट दिस इज बंजारे यू नो डूइंग इट, आई थिंक दिस इज फेयरली फ्रेश. क्या कहते हैं, ताज़ा न्यूज सेगमेंट में फिट किया ही जा सकता है, बहुत पुरानी बात भी नहीं, क्योंकि कंसिडरिंग स्पाइडरमैन रिलीज हुआ है July 31st को, राइट, और ये प्रमोशन उसके कुछ ही पहले चला होगा, तो इट इज़ नॉट दैट स्टेल, बट येस आई डू वॉन्ट टू टेल यू ये इमोशनल ट्रैक परफेक्टली कैप्चर करता है पीटर पार्कर की लोनलीनेस और उनके हार्ट ब्रेक को. यू हैव टू गो एंड चेक आउट द वीडियो लेडीज एंड जेंटलमैन. फिलहाल चेक आउट द सॉन्ग बाय बंजारे द ब्रदर्स डुओ अनुज कुमार एंड सुमित कुमार. तो ये नाम जो सैन इडली का था वो किसी को नहीं जाता है.

0: And ladies and gentlemen, that was Barsaat by Banjare, and it was part of the promotional campaign for Spider-Man Brand New Day. तो ये जरूर याद रहेगा. Sanidly रेस्टोरेंट की तरफ से गिवअवे जीतने का एक और मौका आप लोगों के लिए यहाँ पर. अगर आप मुझे इमीजिएटली बताएं ए नेम ऑफ अ फिल्म, एनी फिल्म एंड अ सॉन्ग दैट यू वुड लाइक टू लिसन टू ऑफ सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार टुगेदर. जी हाँ, कोई भी ऐसा गाना जो आपको याद आता हो जरूर मेरे साथ कनेक्ट करें और मुझे अभी अभी बताएं. द रीजन बीइंग कि आज ही एक ट्रेलर रिलीज हुआ है एंड दैट ट्रेलर इज ए साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म हैवान, एंड दैट्स द फिल्म दैट दीज टू आर गोइंग टू स्टार इन. इज़न दैट क्रेजी यार कि हमने उनको 90s में देखा और उसके बाद अर्ली 2000s में भी देखा, लेकिन अब कितने सालों के बाद प्रियदर्शन की एक फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान एक साथ नजर आएंगे और कम्प्लीटली डिफरेंट अवतार्स दैट वी हैव सीन इन द पास्ट देम टुगेदर इन वन फिल्म. यू आर लाइव ऑन एयर, बताइए कोई भी फिल्म और उसका एक अच्छा सा गाना बता दीजिए, हम प्ले कर देंगे और आपको सैनिडली का गिव अवे भी दे देंगे.
1: ये कुर्बान मूवी का कुर्बान टाइटल सॉन्ग.
0: कुर्बान फिल्म का, लेकिन उसमें अक्षय कुमार कहाँ था?
1: सैफ अली खान की बात हो रही है, अक्षय कुमार, सॉरी.
0: सो सैफ अली खान एंड अक्षय खन्ना, सॉरी अक्षय कुमार टुगेदर इन फिल्म.
1: मैं खिलाड़ी तू अनारी.
0: अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल फटाफट बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टु आंसर आया. मैं खिलाड़ी तू अनारी का कोई गाना बताइए. आपको मिलता है सैन इन इडली रेस्टोरेंट की तरफ से एक डोसा, आपकी चॉइस का डोसा और फिल्टर कॉफी एकदम फ्री. आप होल्ड करें लाइन, आई विल टेक ऑल योर डिटेल्स ऑफ है. So yes, do remember आज जो हैवान का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है, that's for all of you in the Taza News segment, and it is after 18 years that they are coming together.

0: It is almost time for me to wind up my show, but not before I talk about AG Syntax. Ladies and gentlemen, agfintax.com inki website hai. Very proud to tell you all that they are one of the fastest growing tax and accounting firms in the US. So, agar aapke individual ya startup hai ya aap ek established business own karte hain, in any which case, you can get their help and find financial solutions which is absolutely tailor made for you. So, zarur jaye from bookkeeping to payroll accounting and bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting and business advisory all under one roof that you get. Zarur jaye, agfintax.com is the website that you must log on to and find out more. And as for me, mera show hota hai 10 se 12:30 ke beech. If you are listening to my show for the first time, hopefully I'll talk to you and you'll listen to me tomorrow as well. 10 बजे वापस आने वाली हूँ. दिस इज गपशप गली विथ मीठू एंड स्निग्धा इज ऑलमोस्ट हियर एंड शी इज गोइंग टू एंटरटेन यू ऑल विथ आफ्टरनून अड्डा. दिस इज फन एशिया रेडियो. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग.
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
4: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं.
5: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
4: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
5: इंडिया तक.
4: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
6: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
12: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
13: उमर ख्वाजा.
14: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
15: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
16: Calculating route, rerouting.
15: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
16: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
15: क्यों?
16: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
15: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
12: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
16: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
17: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
6: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।
18: हाय, दिस इज माधवन एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन माय ऑफिशियल रेडियो स्टेशन फाइनेंशियल रेडियो।

afternoon, Dallas. आप सुन रहे हैं Afternoon Adda with me, Snigdha, only on Funny Show 104.9 FM. It's Wednesday afternoon. Monday का hangover गया, Tuesday somehow निकल गया और अभी Friday थोड़ी दूर है, but honestly Friday का wait क्यों करे? आज का show एक simple idea के around ही हम चलाने वाले हैं. That is nothing but explore something new. कुछ नया taste करो, कुछ नई जगह discover करो या बस अपनी यूजुअल रूटीन को थोड़ा सा ट्विस्ट दे दो, बिकॉज एडवेंचर के लिए हमेशा एयरपोर्ट जाना जरूरी नहीं होती है. कभी कभी बस इतना बोलना होता है, चलो आज कुछ डिफरेंट करते हैं. तो आज की आफ्टरनून अड्डा में वी गोना टॉक अबाउट फूड, ट्रैवल, वीकेंड प्लान्स एंड DFW में क्या क्या नया है एंड सब कुछ ही. सो स्टे विद मी एंड लेट्स एक्सप्लोर समथिंग न्यू ऑन दिस वेंसडे आफ्टरनून.

आप थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें बात करते हैं. कॉन्ट्रोवर्शियल एज इन नॉट अ बिग चीज. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इंडियन फूड वर्सेस इंटरनेशनल. और प्लीज इमीडिएटली मत बोलना इंडियन फूड इज द बेस्ट. थोड़ा तो फेयर रहना चाहिए. लाइक जापानीज फूड की सिंप्लिसिटी अमेजिंग है. इटालियन फूड सिंपल इंग्रीडियंट्स बट क्या फ्लेवर है. एंड कमिंग टू मैक्सिकन फूड इट्स बोल्ड एंड स्पाइसी. एंड थाई फूड स्वीट सॉर स्पाइसी परफेक्ट बैलेंस. और अगर बात करें हमारी इंडियन फूड की, इंडियन फूड बेसिकली बोलता है व्हाई चूज वन फ्लेवर व्हेन यू कैन हैव ऑल ऑफ देम. बट ऑनेस्टली फूड इज सो मच मोर देन टेस्ट. आप किसी कंट्री का फूड ट्राई करते हो तो थोड़ा उसकी कल्चर हिस्ट्री और लाइफस्टाइल भी समझते हो. तो मुझे बताओ व्हाट इज दैट वन इंटरनेशनल डिश यू ट्राइड एंड एक्चुअली फेल इन लव विथ. वो डिश जो पहले बार ट्राई की और लगा ओके ये तो रिपीट होना ही चाहिए. फॉर मी इट इज पास्ता ऑफ कोर्स.

सो इट इज लंच टाइम और हम तो खाने के बारे में बात करें तो सो व्हाई नॉट देयर इज अ वन गुड प्लेस दैट आई कैन टेल यू दैट इज होको, इंडिया का आइकॉनिक टेस्ट अब नॉर्थ टेक्सस में. क्रेविंग है लेजेंडरी की लाइक छना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, फ्लेवरफुल करीज या फिर फेमस होको कोल्ड कोको. अब इंडिया जाने की जरूरत नहीं है. यू कैन विजिट होको एट 2693 प्रेस्टन रोड, SU 1000, फ्रिस्को, टेक्सस. आइए टेस्ट कीजिए इंडिया का ऑथेंटिक फ्लेवर राइट हियर इन फ्रिस्को. फुल मेन्यू यू कैन इवन गूगल इट लाइक होको.us. होको, कम हंग्री एंड लिव विद द टेस्ट ऑफ इंडिया.

You are listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Phoenicia 104.9 FM. But that was a beautiful song, Tum Ho To, from the movie Sayyara. So now I have a quick update for you and a very important update. Doctor ke saath sirf 5 ya 10 minute hi chahiye aapko, ya you want a doctor to scan you completely and know about your body in a better way. Passion Health Primary Care mein har appointment ke liye milte hai pure 30 minutes because your health deserves time and attention. They even have annual physical, anxiety care, fibro scan, vitamin B12 deficiency testing aur bhi sab बहुत सारे हेल्थ के मामले की चीज़ें अवेलेबल है इनके पास. सो अपनी या अपनी फैमिली की हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए. एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कम्प्लीटली बॉडी स्कैन एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर योर हेल्थ, यू कैन कॉल देम एट 214-666-6259 एंड बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज देयर पैशन. अभी हेल्थ का ख्याल रखते हुए लेट्स कम बैक टू अ ब्यूटिफुल सॉन्ग नेक्स्ट प्लेइंग फॉर यू गाइज, दैट इज दिल दियां गला from the movie Ekta Tiger 2.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Dude, life mein kuch aisa karna hai, jisme main front page pe rahun.
2: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
1: Kaise?
2: Page 3 eatery?
1: No, not another restaurant again.
2: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
1: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
0: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
0: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhi Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
6: सच में सब संभाल लेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.

93.9 FM पर। ओके ऑफिस क्राउड, दिस वन इज फॉर यू। ऑफिस लंच को लेकर एक सिंपल क्वेश्चन, आपका लंच आपके बारे में क्या बताता है? घर का रोटी सब्जी, यू आर द प्रोबेबली द रिस्पॉन्सिबल वन इफ यू आर ईटिंग घर की खाना। इफ इट्स अ ह्यूज सैलेड, आपने डिसाइड किया है दिस वीक आई एम गेटिंग हेल्दी। सेम सैंडविच एवरी सिंगल डे, आइदर यू आर सुपर डिसिप्लिन्ड या फिर आप इमोशनली ऑफिस से चेकआउट कर चुके हो। और वो पर्सन जो बोलता है आई डिड नॉट ब्रिंग माई लंच टूडे, बस वो एक पूरा ऑफिस लंच एक्सप्लोर करेंगे कि तुम क्या लाए हो, थोड़ा टेस्ट कर सकता हूँ क्या। थोड़ा टेस्ट सम हाउ हाफ ऑफ द लंच बन जाती है, बट सीरियसली एक स्मॉल चेंज ट्राई करो। कल लंच डेस्क पे मत खाओ, किसी न्यू कैफे में जाओ, किसी डिफरेंट कोलीग के साथ बैठो या बस 20 मिनट स्क्रीन से दूर रहो। समटाइम्स अ स्मॉल चेंज कैन मेक अ वेरी बोरिंग वेंसडे फील कम्प्लीटली डिफरेंट। सो व्हेनेवर वी ईटिंग, हम अक्सर अपने फ़ोन पे लगे हुए रहते, नहीं तो हम ऑफिस के गॉसिप करते हुए रहते, बिकॉज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फूड्स एंड आज हमारा थीम है लाइक अबाउट फूड लाइक इंडियन इंटरनेशनल। सो व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग डिफरेंट दिस टुडे वेंसडे या दिस वीकेंड। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट लंच करो, बट ट्राई इट इन अ डिफरेंट वे, आइदर डिफरेंट क्यूजिन और आइदर डिफरेंट प्लेस और आइदर डिफरेंट मूड एंड अ वाइब।

0: You're listening to me on Afternoon Adda with me, RJ Snigdha. So, I was telling you to try something new this lunch time. So, I got a suggestion for you. Pizza lovers, get ready for a flavor fiesta. Fun Pizza Kitchen has launched its brand new Mexican-inspired pizza. Try fresh, like fiesta. Veggie hai unke paas. Polo loco, seafood-loaded senor Cameron or full-loaded mucho macho pork. Her bite mein bold, exciting flavors. So, next pizza craving को बनाओ लिटिल मोर एक्साइटिंग इट बिकॉज इट्स अ डिफरेंट इट्स अ मेक्सिकन पिज्जा यू गाइज विजिट फन पिज्जा किचन एंड डिस्कवर देयर न्यू ऑब्सेशन मोर डिटेल्स के लिए आप इवन विजिट कर सकते हैं funpizzakitchen.com एंड आई हैव अ गिव अवे फॉर दिस अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन गिव अवे हो तो क्वेश्चन भी होती है द क्वेश्चन इज गोना बी सिंपल मैं अभी एक डायलॉग चलाने वाली हूँ आई जस्ट वॉन्ट टू नो Who are the actors saying that dialogue? ये काफ़ी you know, it is so, how do you tell it, famous, तो आप बता सकते हैं So listeners, ध्यान से सुनिए
1: Nah, she's not my type.
2: Nah, she's not my type. ऐसे तो तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला, समझे?
1: क्यों? तुम तो हो.
2: मैं?
0: That's it, the two actors and ये काफी famous movie से भी है तो call कीजिए 972-235-5555 पर and all you have to tell me is who are the two actors talking in this. Until then, अगला गाना.

ओके लेट्स डू अ छोटा सा चैलेंज, नथिंग बिग, इट्स द मिड ऑफ द वीक, समथिंग शुड बी इंटरेस्टिंग. सो वी वर टॉकिंग अबाउट फूड, व्हाई नॉट यू ट्राई एक नया डिश, एक नई जगह या एक नई रेसिपी अपने किचन में, या गो टू अ डिफरेंट प्लेस वेयर फूड इज सेलिब्रेटेड. बिकॉज जब लाइफ बिजी होती है ना, हम ऑटोमेटिकली सेम चीज़ें रिपीट करते हुए रहते हैं, सेम कॉफ़ी, सेम लंच का स्पॉट, सेम रूट, सेम वीकेंड प्लान, और संडे को सडनली यार वीकेंड खत्म हो गया, दैट इज वॉट रन्स इन आवर माइंड. तो दिस वीक एक चीज चेंज करो, मे बी अ क्यूजिन यू हैव नेवर ट्राइड, मे बी अ न्यू कैफे, मे बी अ कंप्लीट डिफरेंट रूट टू होम वेयर यू कैन लाइक हैव अ स्टॉप, यू कैन चिल बाय योर सेल्फ, ट्राई एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू. मुझे पता है आपको लगता है कि DFW में ऐसा है क्या, हम सोचते हैं कि DFW बहुत छोटी है. नहीं जी, DFW बहुत बड़ी है, क्योंकि हम सिर्फ डैलस में नहीं रहते, हम डिफरेंट सिटीज में रहते हैं, लाइक फ्रिस्को, लिटिल एलम, DFW इज डिफरेंट, डैलस डाउनटाउन इज डिफरेंट, जैक्सबोरो इज डिफरेंट, देर आर सो मेनी न्यू प्लेसेस यू शुड येट ट्राई. सो डोंट थिंक डैलस इज छोटा, क्या मैं ट्राई कर लूँ, देर आर लॉट मोर. सो आई वुड सजेस्ट यू टू ट्राई समथिंग न्यू दिस वीक, एंड इफ यू हैव ट्राइड समथिंग न्यू देन कॉल मी मंडे टू थर्सडे सेम टाइम, एंड मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्या ट्राई किया वेर यू फेल्ट लाइक ओ दिस इज समथिंग डिफरेंट, आई डिड इट एंड आई एम शेयरिंग इट विथ यू स्निग्धा. सो I will be waiting to listen it from you guys. Here you go, a next song, and then we go into a break.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
4: लिया।
3: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
4: नहीं आया।
3: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
6: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai.
7: Lekin aapke doctor ka appointment milna usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
8: Tarikh par tarikh.
2: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
7: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
9: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
10: उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
12: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
13: लैपटॉप में।
12: इन्वेस्टमेंट?
13: गूगल ड्राइव।
12: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
13: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
12: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
2: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
14: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
2: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
19: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
19: Kya matlab?
2: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
19: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
2: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज। दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी। कॉल तो करो 888-888-9914।
19: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
1: डोंट लेट डेट रूइन योर लाइफ। विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर।
6: हाय यूएसए, this is Imran Hashmi.
7: Hi, this is Disha Patni.
6: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio.
7: One of Bollywood's most loved cult classics returns.
6: I'm back as Shivam Pandit, and this time the emotions are deeper. The music is set to touch every heart once again. And the legacy continues. Witness Awar Appan 2 in cinemas from 14th August.

You are listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Funny Show 104.9. But so it's hour two, it's almost 1:37 PM. I hope aapki lunch ho gayi hui hongi. Now let's talk about traveling. कभी कभी ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है. कभी कभी सिर्फ एक फुल टैंक, गुड प्लेलिस्ट और एक सिंपल प्लान भी इनफ होती है. चलो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं हम. सो लेट्स टॉक मोर अबाउट ड्रीम डेस्टिनेशंस, वीकेंड रोड ट्रिप्स एंड लिटिल एडवेंचर्स राइट हियर अराउंड DFW एंड अराउंड द वर्ल्ड. सो दिस सेगमेंट इज़ गोना बी अबाउट ट्रैवल. तो बताइए आपको कौन सी जगह नेक्स्ट बकेट लिस्ट में है.

वी हैव अ कॉलर सेइंग उनकी बकेट लिस्ट में तो पहली इंडिया ही है. आई अंडरस्टैंड गाइज, पहले अपने कंट्री देखो एंड देन वी विल प्लान अबाउट अदर्स. बट टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज टू, एंड आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू अनाउंस. इट इस रक्षाबंधन अपने भाई या बहन के साथ सबसे अनफॉरगेटेबल मेमोरी शेयर कीजिए फनीशिया रेडियो और चौकटो कैसीनो एंड रिसोर्ट दुरंत के साथ. कॉल कीजिए ऑन एयर, शेयर कीजिए और जीतिए एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग, एंटरटेन रिसोर्ट स्टेज और ग्रैंड प्राइज सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौकटो कैसीनो एंड रिसोर्ट दुरान. सो कॉल अस नाउ इन द स्टूडियो 972-235-5555 पर एंड जस्ट शेयर योर ब्यूटिफुल स्टोरी विथ योर ब्रदर और योर सिस्टर. यू मस्ट बी 21 ईयर्स ओल्ड, सो प्ले रिस्पॉन्सिबली. कॉल मी गाइज, आई एम वेटिंग टू लिसन टू योर ब्यूटिफुल भाई बहन का स्टोरीज.

आई थिंक जब हम ट्रैवलिंग डिसाइड करते हैं, वी शुड नॉट डिसाइड जस्ट द प्लेस, वी शुड डिसाइड द एक्सपीरियंस विद द प्लेस. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट माउंटेन्स के बीच तुम रहो एंड यू वॉन्ट टू डू ट्रैकिंग एंड ऑल, आई नो कोलोराडो तो है ही है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट कंट्री लाइक स्विट्जरलैंड. एंड इफ़ इट इज़ जापान, टोक्यो में स्ट्रीट स्टाइल फूड एक्सप्लोर करने के लिए, एंड इफ़ इट इज़ इटली, एक लोकल इटालियन फैमिली के साथ ऑथेंटिक पास्ता बनाने सीखना, दैट इज़ द एक्सपीरियंस वी ऑल नीड दीज डेज. बस प्लेस में गए, फोटोज खिंचाए और फिर वापस ना आ गए. आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग इवन ट्रेंडी दीज डेज. द ट्रेंडी थिंग दीज डेज गोइंग ऑन इज द एक्सपीरियंस यू डू एंड द प्लेस यू आर इन. बस फोटो लो और इंस्टाग्राम पे डालो, ऐसे मत करो यार. हैव द एक्सपीरियंस एंड फील द प्लेस वेयर एवर यू गो टू. अगर नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए कुछ ट्रेंडी और टोटली इंस्टाग्राम वर्थी चाहिए तो देन इट इज सियोल, इट इज इन साउथ कोरिया. एंड अपने लिस्ट में ऐड कर लो, दिस इज वायरल कंट्री. एंड लेडीज, आई नो यू लाइक सियोल बिकॉज इट इज द अड्डा फॉर द स्किन केयर. सियोल में आप एक्सप्लोर कर सकते हो एक, देर इज अ डिफरेंट नेम, ओके, दिस इज कॉल्ड गियोमबोंगोंग पैलेस, ट्रेडिशनल कोरियन वाइब्स के लिए बकचोन हनोक विलेज, ब्यूटिफुल ओल्ड स्टाइल हाउसेज, और रील्स के लिए मियोंगडोंग. दीज नेम्स आर सो फनी. एटलीस्ट टू लर्न दीज नेम्स यू नीड टू गो टू कोरिया एंड टू मेक योर स्किन मोर ब्राइट, मोर कोरियन वाली स्किन. आई नो आजकल सब कोरियन प्रोडक्ट्स ही चल रहे हैं, डॉक्टर अल्तिया 345, आर यू, वॉट आर यू यूजिंग, ओ आई एम यूजिंग दिस कोरियन प्रोडक्ट, ओ आई एम यूजिंग ब्यूटी ऑफ जसॉन. सो फॉर ऑल दिस एंड फॉर इंस्टाग्रामेबल, लाइक जिनको रील्स करना पसंद है, जिनको फोटोज खिंचाना पसंद है, यू कैन इवन डू दिस एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री. और के पॉप एंड के ड्रामा फैंस के लिए तो सियोल लिटरली ड्रीम डेस्टिनेशन है. सो टेल मी, सियोल जाओ तो सबसे पहले आप पैलेस जाएंगे, स्ट्रीट फूड लाइक यू विल ट्राई योर सी फूड, और यू विल बी लाइक के पॉप मैं पहली कर लूँ. क्या चूज करोगे आप? इट इफ इट इज मी, आई एम अ बिग स्किन केयर गर्ली, सो आई वुड फर्स्ट गो टू ऑल द स्किन केयर शॉप्स एंड टेक एवरी बेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ इट और मेरे मुंह पे लगा दूंगी. व्हाट वुड यू डू इफ यू गो टू सी ऑल? कॉल मी एंड टेल मी.

यही सब प्रॉब्लम है. आई जस्ट हैड अ कॉलर जिन्होंने मुझे बताया कि थोड़े लोगों को वीसा के इश्यूज भी होते हैं. सो शी इवन मेंशनड इन हवाई देयर इज अ प्लेस कॉल्ड शंबाला. सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन दिस, गूगल करो और नेक्स्ट फ्लाइट बुक करिए और हवाई जाइए. एंड दिस पार्ट ऑफ आर शो इज प्राउडली ब्रॉट यू बाय एजे फिनटेक्स. इंडिविजुअल हो, स्टार्टअप हो या एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस, एजे फिनटेक्स के साथ मिलेगा कंप्लीट टैक्स एंड अकाउंटिंग सपोर्ट, फ्रॉम बुक कीपिंग, पे रोल और टैक्स प्लानिंग टू कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी. ट्रस्टेड है, एफिशिएंट है एंड फ्यूचर रेडी हो. फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट एजे फिनटेक्स. यू कैन कॉल देम एट 4699429888 या विजिट करें एजे फिनटेक्स.com टुडे.

फनेशिया फैमिली, आज है इंटरनेशनल यूथ डे. और यूथ का मतलब सिर्फ एज नहीं है, इट्स एन एटीट्यूड. यूथ के नए ड्रीम्स, नए आइडियाज़, कुछ क्रेजी ट्राई करने की हिम्मत. और हाँ, रात को 2 बजे लाइफ के प्लान्स तो हम करते हैं, पर उसके बाद हम बोलते हैं मंडे से ये कर लूँगी. एंड लेकिन सीरियसली, यूथ इज़ द ब्यूटिफुल फेज वेयर यू कैन से Why not? Instead of telling लोग क्या कहेंगे, कुछ नया try करनी है तो करो, crazy रहनी है तो रहो, fail हो गए तो it's fine, you still have a funny story to tell it to your friends and your parents. और मेरी favorite definition of youth है, जब life बोलती है be practical, आप बोलते हो थोड़ा time बाद. So happy International Youth Day, Phanisha family. Young हो, young feel कर रहे हो या बस दिल से young हो, आज का दिन फुल आपके लिए है. मैं हूँ स्निग्धा और आप सुन रहे हैं आफ्टरनून अड्डा ऑन फनेशिया 104.9 FM पर.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts. Facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry, men's and kids wear.
9: Wait, itna sab aur price?
8: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
10: Main hi do in hu.
11: Ye tara wo tara har tara.
12: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
13: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर, पंडित ईश्वर जी, 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
14: अजी सुनते हो?
15: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
3: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM only on Fun Asia Radio.
16: Hi USA, this is Imran Hashmi.
17: Hi, this is Isha Patni.
16: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio.
17: One of Bollywood's most loved cult classics returns.
16: I'm back as Shivam Pandit, and this time the emotions are deeper, the music is set to touch every heart once again. And the legacy continues. Witness Awar Appan 2 in cinemas from 14th August.

You are listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Funisha 104.9 FM पर. So DFW, say एक refreshing weekend road trip का plan बना रहे हो, then I have got you covered. It's Fredericksburg, Texas. Definitely worth exploring. ये charming hill town अपनी German heritage, cute downtown, local cafes और beautiful countryside के लिए जाना जाता है. और wine lovers के लिए तो bonus है. आस पास का Texas wine country like vineyards और वाइनरी से पैक्ड है. आप वाइन यार्ड हॉप कर सकते हो, वाइन टेस्टिंग एंजॉय कर सकते हो, लोकल फूड ट्राई कर सकते हो और इवनिंग में सिंपल हिल कंट्री व्यूज के साथ अनविंड कर सकते हो. बेसिकली DFW से निकलो, प्लेलिस्ट ऑन करो और फ्रेडरिक्सबर्ग में वीकेंड स्लो डाउन करो. सो आई हैव गिवन यू अ वंडरफुल प्लेस टू विजिट दिस वीकेंड. अगर आपके प्लान्स कुछ नहीं बने तो दिस इज वर्थ. दे हैव वेरी क्यूट कैफेज और उनकी ब्रेकफास्ट आर लव. एंड कमिंग टू वाइन यार्ड्स, दिस इज समथिंग यू मस्ट एक्सप्लोर. अच्छे से एक हैट पहनो, अच्छे से एक वाइन यार्ड की ड्रेस पहन लो, आउटफिट शाउटफिट सब करके प्लान योर वीकेंड इन फ्रेडरिक्सबर्ग, बिकॉज एवरी वेडनेसडे आई एम गोना गिव यू अ नाइस प्लेस टू गो एक्सप्लोर एंड हैव योर वीकेंड प्लान्स.

DFW ट्रैफिक अपडेट और एक्सीडेंट रिपोर्ट के साथ ये सेगमेंट ब्रॉट टू यू बाय ओमार ख्वाजा। एक्सीडेंट सेकंड्स में हो सकती है लेकिन रिकवरी में काफी टाइम लग सकता है। अगर आप कार क्रैश, ट्रक एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल के शिकार हुए हैं तो लीगल बैटल अटॉर्नी उमर ख्वाजा पर छोड़ दीजिए और अपनी रिकवरी पर फोकस कीजिए। वो आपके लिए राइटफुल कॉम्पेंसेशन के लिए लड़ते हैं एंड केस जीतने पर ही फीस लेते हैं। फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल करिए 4693005046 या विजिट करें attorneyumar.com। उमर ख्वाजा आप हीलिंग कीजिए, लीगल फाइट उमर ख्वाजा आपके लिए लड़ेंगे।

You are listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigda, only on Phanesia 104.9 FM पर. Attention, Texas business owners, आपके business के लिए energy plan अभी भी smart होनी चाहिए, right? Meet Thara Commercial Energy, जो 2002 से Texas businesses को दे रहा है competitive rates, reliable services और customized energy plans. तो energy cost को smartly manage कीजिए और अपने business के लिए right plan explore कीजिए. Call them at 844-428-2808 या विजिट करें taraenergy.com टुडे. तारा एनर्जी कमर्शियल, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस सिंस 2002.

This is Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Funisha 104.9 FM. पर स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए माई टाइम इक्विटी CPA सुधीर पाई की लीडरशिप में माई टाइम इक्विटी हेल्प्स यू टू प्लान फॉर अ लॉन्गर टर्म वेल्थ रिटायरमेंट और इन्वेस्टमेंट्स थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रियल इस्टेट अपॉर्चुनिटीज और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स आपके गोल्स आपकी स्ट्रैटेजी इसके लिए विजिट mytimeequity.com या कॉल करिए 4697021272 today.

दैट वाज आफ्टरनून अड्डा विद मी आरजे स्निग्धा. आज का अड्डा यहीं खत्म होती है. हमने बात की है अबाउट फूड, ट्रैवल, फन कॉन्वर्जेशंस. आई होप मेरी कंपनी आपको पसंद आई होगी जितनी आपको उतनी मुझे. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड स्पेंडिंग योर आफ्टरनून विद मी. मैं हूँ स्निग्धा. आपसे फिर मिलूंगी एक नए अड्डे, नए टॉपिक्स और लॉट्स ऑफ फन के साथ. तब तक स्टे कनेक्टेड, खुश रहिए और एंजॉय कीजिए एंड कीप लिसनिंग टू फनेशिया. एंड बिफोर आई लीव आई हैव अ स्पेशल सॉन्ग रिक्वेस्ट फ्रॉम मिस्टर सफ़ी, जिनको झूमे जो पठान सुनना है, तो उनके लिए द लास्ट सॉन्ग फॉर टुडे माई शो.

0: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
4: How may I help you?
5: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
4: Fear not, we have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
6: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
2: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust, aur ab wahi trusted care urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनोक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 एएम टू 8 पीएम. वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
8: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय सीपीए सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
8: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
2: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750, call 214-529-3257.
8: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. 2:30 PM टिल 5 PM एवरी डे मंडे थ्रू फ्राइडे मैं रहती हूं आपके साथ. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो जिसके थ्रू आप भी रहते हैं मेरे साथ. अगर आपने अब तक हमारा नंबर अपने स्पीड डायल में नहीं डाला तो फौरन से डाल लीजिए ताकि बहुत आसान हो जाए आपके लिए स्टूडियोज में कॉल करना फॉर ऑल योर रिकमेंडेशंस एज वेल एज योर गिव अवे आंसर्स या जो भी आपने बात करनी है हमें कॉल करके. तो जी आज है वेंसडे एंड आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में हर रोज आपके लिए आता है एक डिफरेंट फ्लेवर. वेंसडेज का फ्लेवर स्टार्ट्स विद रोमांटिक मेलोडीज. वी देन गो ऑन टू पॉप फ्रीक्वेंसी सम पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक एंड द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट्स जिसमें आप लोगों की बहुत ज्यादा इनपुट आती है, कॉल्स आती हैं, आप कौन सा ड्रामा देख रहे हैं, कौन सा एंजॉय कर रहे हैं. लव एब्सोल्युटली लव डिस्कसिंग ऑल दैट विद यू एंड वी विल एंड अप विद ट्रॉफी ट्रैक्स. आई एम हियर विद यू टिल 5 PM. लेट्स बिगिन आवर रोमांटिक मेलोडीज राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम.

रोमांटिक मेलोडीज आप सुन रहे हैं राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून राइट टाइम, और कुछ ऐसे ही खूबसूरत गाने आपके लिए लाइन अप किए हुए हैं. आगे बढ़ रहे हैं जी. दिस सॉन्ग वॉज आतिफ असलम्स, बदलापुर से लिया गया था ये गाना, एंड एब्सोल्युटली लव इट. एंड नाउ दिस नेक्स्ट नंबर इज टेकन फ्रॉम द मूवी सिंघम, अनदर ब्यूटिफुली रोमांटिक म्यूजिक.

फिल्म सिंघम से लिया गया ये गाना. और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं जी, सेलिब्रेट कीजिए इंडियाज इंडिपेंडेंस डे एट IANT आनंद बाजार 2026, हैपनिंग ऑन सैटरडे ऑगस्ट 15 फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स एट द अमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 बजे दोपहर को इतनी गर्मी, तो बिल्कुल टेंशन नहीं है. दिस इज अ कम्प्लीटली इंडोर्स इवेंट और सोने पे सुहागा ये कि इट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन. तो आइए ऑथेंटिक इंडियन फूड एंजॉय कीजिए. ग्रैंड परेड होगी, कल्चरल परफॉर्मेंसेज होंगे, लाइव म्यूजिक एज वेल एज लॉट्स ऑफ शॉपिंग विल बी अवेलेबल फॉर ऑल द शॉपिंग लवर्स. ब्रिंग योर फ्रेंड, ब्रिंग योर फैमिली, ब्रिंग योर लव्ड वंस एंड बी अ पार्ट ऑफ नॉर्थ टेक्सास बिगेस्ट इंडियाज इंडिपेंडेंस Day celebration. This is IANT Anand Bazaar 2026.

और अगर आपको कोई ज्वेलरी खरीदनी है, कोई इवेंट आ रहा है और एनीथिंग दैट इज स्पेशल गोइंग ऑन, देन योर वेट इज ओवर. पीएमजे ज्वेल्स इज नाउ इन फ्रिस्को एंड दे आर ब्रिंगिंग ओवर 60 इयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप. आप एक्सप्लोर कीजिए जरूर उन्हें. यू विल फाइंड स्टनिंग गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी एज वेल एज ब्राइडल कलेक्शन. कोई भी इवेंट हो, यू विल फाइंड अ पीस फॉर यू ओवर देयर. प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा, पीएमजे इज अ नेम trusted by generations. Do visit them. They are located in Frisco on Main Street.

मिस्टर एंड मिसेस मही से सुन रहे थे आप ये गाना. 2024 में रिलीज हुई ये फिल्म, दिस वाज हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी, जिसमें हमें नजर आए एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय करण जौहर एंड मेनी अदर्स, राजकुमार राव और जानवी कपूर नजर आए थे इस फिल्म में. रोमांटिक मेलोडीज में एक दो गाने मेरे पास और हैं बिफोर वी हेड ऑन टू अ ब्रेक एंड देन वी विल स्टार्ट पॉप फ्रीक्वेंसी, जहां मैं आपके लिए प्ले करूंगी कुछ पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक एंड देन वी विल गो इन टू द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामा ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द टीआरपी चार्ट्स. लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूं, अगर आप अपने ख्वाबों के घर की तलाश में हैं तो ड्रीम होम मॉर्गेज इज द प्लेस दैट विल हेल्प यू मेक योर ड्रीम होम ड्रीम कम टू रियलिटी. तो क्या करना है जी आपको, 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज फैमिलीज को हेल्प कर रहे हैं एंड पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस आपके लिए क्रिएट करते हैं, जो कि स्मूथ होता है, स्ट्रेस फ्री होता है और दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स. तो आपके लिए बेहतरीन लोन ऑप्शन फाइंड करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के गिर टेलर किया जाता है, चाहे आप पहली बार घर खरीद रहे हो या आप अपग्रेड करना चाहते हो, रीफाइनेंसिंग या इवन कोई कमर्शियल नीड्स भी हैं आपकी, तो ड्रीम होम मॉर्गेज इज देयर टू हेल्प यू. गिव देम अ कॉल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. 972-245-5626 972-245-5626 उनका नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं विच इज dreamhomemortgage.com.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग। Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
1: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
2: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
3: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
3: कहाँ?
5: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
6: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन FunAsia एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
7: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
5: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331 99.
7: Mention FunAsia and get 50% off on tryout session.
8: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
9: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं।
8: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
9: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
8: इंडिया तक।
9: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
10: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
11: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
11: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
11: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
11: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
13: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स ओल्ड टू गेम।
14: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल FunAsia 104.9 FM।

You tuned into 104.9 FM Funnyjay Radio सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. और वक्त आ चला है जी जब मैं आपके साथ अब जिस सेगमेंट में एंटर हुई हूं वो सेगमेंट हम सबको बहुत पसंद है. दिस इज पॉप फ्रीक्वेंसी. अगले एक घंटे आपके लिए कुछ पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक प्ले होगा. 3:30 से 4 बजे तक मैं आपके लिए लेके आऊंगी द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स. इस हफ्ते की TRP चार्ट्स जो हैं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि कुछ नए ड्रामे हमें टॉप पे आते हुए नजर आए. 2 ड्रामे जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं. पिछले हफ्ते नीचे थे लेकिन इस हफ्ते वो हमें नजर आ रहे हैं. वो कहते हैं ना सीढ़ी का एक एक कदम बढ़ते बढ़ते ऊपर तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं. सो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लिस्ट फॉर यू. स्टे ट्यून्ड, बनी रहिए 3:30 से 4 बजे तक. आई विल bring you that list. So this is Pop Frequency. I am Kiran with you. This is your afternoon drive time.

जी हाँ, शहजाद रॉय की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना। और आगे बढ़ते हुए जी, आपको बताएं, अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, या फिर देर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो दिस सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल एंड इट कैन गेट इवन मोर स्ट्रेसफुल व्हेन यू डील विद द पेपर वर्क, द लीगैलिटीज, द इंश्योरेंस कंपनीज, एज वेल एज देर आर सो मेनी निटिग्रिटीज इन दिस सिचुएशन कि हमें बाज़ोकात मालूम ही नहीं होता कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। सो और साथ ही साथ आपको अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है, तो आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखिए एंड लेट अटर्नी ओमार ख्वाजा in his team handle the rest. They will not only fight your case, get you the best compensation that you deserve, balki aapko kuch pay nahi karna jab tak ki aap case apna jeet nahi jate. So this is a win-win situation for you. Give attorney Omar Khwaja a call for a free consultation. That number is 469-300-5046. 469-300-5046 wo number hai, ya phir aap unki website visit kar sakte hain, which is attorney Omar, OMAR, attorneyomar.com. अच्छा जी, ये तो हुई आपके लिए ये बात। और कल अगस्त 11th को एक बहुत ही कमाल की सिंगर ने किया अपना बर्थडे सेलिब्रेट। शी इज पॉप सिंगिंग में शी इज वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव एंड दैट इज हदीका कियानी। बहुत सारे गाने आपने हदीका कियानी के सुने होंगे, लेकिन जिस गाने से हम उनको ट्रिब्यूट देने का आगाज करेंगे, दैट इज हर एवरग्रीन एवर क्लासिक बूहे बारियां। 11th August 1972 इज हर डेट ऑफ बर्थ। पाकिस्तानी सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, गिटारिस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, सोशल वर्कर हैं, अलॉन्ग विद उर्दू एंड पंजाबी। शी हैज ऑल्सो संग सॉन्ग्स इन वेरियस लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। शी हैज वन सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। शी इज इंडीड एन इंटरनेशनल स्टार। लेट्स विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

हदीका कियानी को कर रहे हैं हम सेलिब्रेट, और उनके एक दो गाने मेरे पास आपके लिए लाइंड अप है। ना सिर्फ ये कि उन्होंने अपनी एल्बम्स के लिए गाने गाए, जैसे कि आप बूहे बारियां सुन रहे थे, शी बिकेम अ वेरी प्रोमिनेंट वॉइस इन द ड्रामास। बहुत सारे ड्रामास के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ दी। उनमें से एक ड्रामा जिसे मैंने, आपने, हम सब ने ना सिर्फ आप कह लीजिए लोकली, बल्कि जहां भी डायस्पोरा है वहां वहां इस ड्रामे को ना सिर्फ पसंद किया गया बल्कि सारे वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, और वो ड्रामा था जिंदगी गुलजार है। जिंदगी गुलजार है का जो टाइटल ट्रैक आया था वो दो सिंगर्स ने गाया, मतलब एक मेल वॉइस में आया था और एक फीमेल वॉइस में आया था। मेल वॉइस जो आई वो थी अली जफर की, और फीमेल वॉइस जो आई थी इस टाइटल ट्रैक की वो थी नन अदर देन हदीका कियानी। सो वो गाना आपके लिए प्ले कर रहे हैं जी। हदीका कियानी एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो बहुत ज्यादा सोशल वर्क करती हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा आगे आपको और बताऊंगी उनके बारे में, बट बिफोर दैट अ सॉन्ग हियर फॉर यू।

2007 से सरगरम हैं जी अपने फिलान्थ्रोपिस्ट काम में. बहुत सारे उन्होंने सोशल वर्कों में, सोशल वर्क आप कह लीजिए, उन कामों में हिस्सा लिया. और स्पेशली जो काबिले जिक्र हैं उनमें से एक है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि गुडविल एम्बेसडर बनी 8 नवंबर 2010 को आफ्टर बीइंग रिकग्नाइज फॉर हर इंडिविजुअल एफर्ट्स. उसी के साथ साथ जब बहुत ज़्यादा परेशानी का सिचुएशन हमें देखने को मिली तो उन्होंने 100 घरों से ज्यादा बनाए. फ्लड्स जो आपको याद हो जब आए थे तो 100 घरों से ज्यादा उन्होंने बनाए 11 मार्च 2023 को. साथ ही साथ एक मटर्निटी सेंटर बनाया, प्राइमरी स्कूल बनाया, ग्रोसरी स्टोर बनाया. ये था जी नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट में, बलोचिस्तान में. उसके साथ और भी बहुत सारे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर 370 होम्स, 2 मॉस्क, 1, मतलब बहुत सारा काम करती हैं जहां पे लोगों के लिए आसानियां पैदा करें. अलॉन्ग विद हर म्यूजिक करियर, अलॉन्ग विद हर एक्टिंग करियर, शी इज ऑल्सो एन एक्ट्रेस. हमें दिखती हैं कुछ ड्रामों में एक्टिंग करती हुई नजर आई, जिनमें से कुछ तो काफी ज्यादा पॉपुलर हुए, जैसे कि 2021 में वो आई जी पिंजरा ड्रामा में, उसी के साथ अभी 2023 में नजर आई थी हादसा ड्रामा में. उसके अलावा 2021 में उनका एक ड्रामा बिलाल अब्बास के साथ आया था जो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था, जिसमें वो लीडिंग लेडी के तौर पर आई थी अपोजिट बिलाल अब्बास. तो कुछ ऐसे ही जो भी काम करती हैं हदीका ज्ञानी उसमें लगा देती हैं चार चांद. वी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे टुडे. हैज अनदर सॉन्ग फॉर यू, दिस इज टेकन फ्रॉम द मूवी बोल, जिसमें हदीका ज्ञानी ने अपनी आवाज मिलाई आतिफ असलम के साथ. दिस इज होना था प्यार हुआ मेरे यार. इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आकर वी विल स्टार्ट आवर टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट. स्टे ट्यून्ड.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
1: Kya matlab?
2: Oora can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
2: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
3: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya champ. अब हर बाइट के साथ मिलेगी extra savings. Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
5: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
6: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
7: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
8: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
9: Calculating route. Rerouting.
8: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
9: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
8: Kyu?
9: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials. Authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
8: Achha, to seedha wahi le chalo.
5: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
9: Your new destination has arrived.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
15: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
14: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
15: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
14: ये क्या होता?
15: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
16: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन, जस्ट 3 डोर्स डाउन, विद लिमिटेड रिजर्वेशन।

You're tuned into 104.9 FM Funny Share Radio. Afternoon drive time with Suneri Kiran. Mein waqt aa gaya hai ji aapko dene ka, batane ka, the top 10 trending dramas according to the TRP charts for last week, which was August 3rd till August 9th. To Monday to Sunday ki ye list aati hai har hafte, jo main aapke saath Wednesdays ko 3:30 se 4 pm share karti hoon. Aur shuru karte hain 10th number ke drama se. 10th number pe jis drama ne TRP charts pe apni jagah banayi, that is Toota Hua Dil. Ye drama is airing on ARY Digital. Ye ek soap drama hai, kind of har roz aata hai ye sham 7 baje ARY Digital pe. Aur iske andar hame nazar aaye Aga Ali, Nazish Jahangir, Ariz Ahmed. Aur storyline hai ji bilkul jaise aap keh lijiye Toota Hua Dil, matlab broken heart ki hi jaisi storyline hai. The drama follows a deeply emotional and heartbreaking narrative, painful trials within the family as well as romantic bonds, focusing on how characters navigate through grief, deception and personal disillusionment. So ye hai ji drama ki ek basic kahani. Agar aapne thoda sa dukhi zyada hona hai to phir aap ye Toota Hua Dil dekhiye. Lekin list mein bahut sare maze ke aur bhi drama hain. 9th number pe jis drama ne TRP charts pe apni jagah banayi, that is drama serial Tapish, jo ki abhi June 1st se isne air hona shuru kiya hai. Mondays aur Tuesdays ko aata hai 8 baje sham Jio Entertainment pe. हमें इसमें नजर आए जी मुनीब बट, साथ ही साथ लाइबा खान, साद कुरैशी, सबा फैसल, फरहान ताहिर. और स्टोरी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. एक जैसे जो हमारी मुनीब बट हैं, जो हीरो हैं, वो एक शॉर्ट टेम्पर्ड वेल्दी किस्म के इंसान हैं. डोमिनेट करते हैं हर किसी को जो भी उनके इर्द गिर्द रहता है, ओवर कॉन्फिडेंट से हैं और कोई उनको बदल नहीं सकता. जबकि जो हमारी मेन कैरेक्टर हैं, लीडिंग लेडी शिफा, वो एक रिस्पॉन्सिबल ग्राउंडेड यंग वुमन कैरिंग हर फैमिलीज बर्डन. वो जो मतलब टिपिकल एक रोमांटिक ड्रामे की कहानी होती है. और फिर क्या होता है आगे, वो कैसे मिलते हैं और कॉन्फ्लिक्ट उनके दरमियान क्या होता है और उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ट्विस्ट कैसे आता है ऑफ फॉलिंग इन लव, दैट इज द स्टोरी ऑफ द ड्रामा सीरियल तपिश. उसी के ऑन हर पल जियो आपको ये सारे ड्रामे ही यूट्यूब पे मिल जाएंगे. सारी एपिसोड्स इनकी अवेलेबल होती हैं. आपको बताएं जी कि 30th जून से ये ड्रामा एयर होना शुरू हुआ था और तभी से मतलब मेरे ख्याल है कि 2-3 हफ्तों बाद ही इसने चार्ट्स पे अपनी जगह बना ली थी. जुनैद खान हमें नजर आ रहे हैं एज सब इंस्पेक्टर, जबकि मोमिना इकबाल हैं, जुनैद खान बन गए हैं उनके बॉडीगार्ड. मोमिना इकबाल एक बहुत ही वो अमीर बिगड़ी हुई लड़की हैं और अब क्या होगा और किस तरह से जो है वो उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो चेंज होगी एंड द डायनामिक्स विल चेंज, दैट इज द स्टोरी ऑफ द ड्रामा सीरियल मुहाफिज. ये हुए आपके लिए 8, 9 and 10 ke top dramas. After this song, I will come back and tell you 5, 6 and 7 jo number TRP charts pe jin dramas ne kiya rule.

टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास अकॉर्डिंग टू द टीआरपी चार्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी. 7, 8, 7, 6 और 5 की बारी आ चुकी है. सातवें नंबर पे जो ड्रामा रहा टीआरपी चार्ट्स पे अकॉर्डिंग टू यू नो 7.2 एवरेज टीआरपीज के साथ, दैट इज ड्रामा सीरियल हमराही, जो कि फ्राइडेज और सैटरडेज को शाम 8 बजे आता है जियो एंटरटेनमेंट पे. इस ड्रामे में हमें दानिश तैमूर एज वेल एज हिबा बुखारी नजर आए, असफर रहमान, शहजाद नवाज, हाजरा यामीन. हाजरा यामीन ने डॉक्टर बहू में अपना ऐसा स्टैंडिंग बनाई है कि नाउ शी इज डेफिनेटली समवन एवरीबडी इज लुकिंग अप टू, और उनकी जो भी ड्रामे हैं उनको अब मजीद ज्यादा देखा जाता है उनकी एक्टिंग को. शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. बहरहाल दानिश तैमूर एंड हिबा बुखारी आर द लीड एक्टर्स ऑफ दिस ड्रामा जिसका नाम है हमराही. उसी के साथ जी पांचवें छठे नंबर पे जो ड्रामा रहा उसकी एवरेज टीआरपीज रही 7.3 और ये ड्रामा था नन अदर देन एक नया ड्रामा है जिसका नाम है मैं तेरा. अच्छा जी, ये जो मैं तेरा ड्रामा है ये एक मुझे इसके क्लिपिंग्स वगैरह, मैंने इस ड्रामे को अब तक देखना शुरू नहीं किया, मुझे इसके क्लिपिंग्स वगैरह नज़र आ रहे हैं जो मैं देखती हूँ एंड बहुत ज़्यादा वायलेंस है, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी, मुझे तो देख के उसको घबराहट सी होने लगती है. लेकिन रियलिटी है जी, आई एम श्योर पीपल आर कनेक्टिंग विद इट, पीपल आर यू नो फीलिंग दैट कनेक्शन. ये मैं तेरा ड्रामा मंडे थ्रू फ्राइडे 5 दिन आता है 9 बजे शाम ERY डिजिटल पे. आरिज अहमद, गाना अली और युसरा इरफान हमें इसमें नज़र आ रहे हैं. अगर आप ज़रूर चेकआउट कीजिए एंड यू माइट बी एबल टू रिलेट विद द स्टोरी. मुझे तो देख के बहुत एक अजीब सी परेशानी शुरू हो जाती है, बट इफ द एक्टर्स आर एक्टिंग सो वेल दैट देखने वाले को ऐसा लगे कि उफ यार ये क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली इट इज समथिंग वर्थ वॉचिंग. इसी के साथ जो पांचवें नंबर पे ड्रामा रहा इस हफ्ते टीआरपीज पे विद 8.4 टीआरपी इज द ड्रामा सीरियल लीडर. हर संडे को आता है ये शाम 8 बजे हम टीवी पे. मुमिना दुरैद प्रोडक्शन का ये ड्रामा जिसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में दिखाया गया है और किस तरह स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉलिटिक्स में आते हैं, कैसे फ्यूडल सिस्टम उनको इनकरेज या डिस्करेज करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन रीजंस एंड व्हाट दे नीड आउट ऑफ दोज स्टूडेंट्स इज व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट. किंजा हाशमी और अली रजा हमें इस ड्रामे में मेन लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं. अब जब हम इस गाने से वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी टॉप 4 ट्रेंडिंग ड्रामास जो टीआरपीज पे रहे टॉप. तो तैयार हो जाइए, दिस टॉप 4 लिस्ट इज समथिंग दैट आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू शेयर विद यू. ऑल दीज 4 ड्रामास इज एब्सोल्युटली आई थिंक मेरे टॉप फेवरेट में आ चुके हैं. आप भी स्टे ट्यून्ड.

All right, and top four trending dramas according to the TRP charts पे चौथे नंबर पे जो ड्रामा है वो है जी आपकी इज्जत. हम टीवी पे शुरू हुआ है ये ड्रामा, फ्राइडे और सैटरडे को शाम 8 बजे आता है. उर्वा हुकेन और एहसन खान हमें इस ड्रामे में नजर आ रहे हैं. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मैरिज, 14 ईयर्स ऑफ मैरिज, जो अब कहाँ से, जो कितनी एक्साइटमेंट और मोहब्बत से शुरू हुई और अब जो है वो ऑलमोस्ट डिके हो रही है और क्या सिचुएशन दोनों मियां बीवी के दरमियान बनी हुई है, दैट इज़ द स्टोरी. और अभी लेटेस्ट में फिलहाल उर्वा हुकेन जो है वो डिसअपियर हो चुकी हैं उनकी लाइफ से. ही वांट्स टू रीमैरी एंड शी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट. सो दैट इज़ द लुबी लुबाब आप कह लीजिए ड्रामे का. लेकिन अगर आप देखिएगा तो आप अंदाज़ा करेंगे कि कितना खूबसूरती से इस ड्रामे में रिलेशनशिप्स का ताना बाना बुना है उमेरा अहमद ने. उमेरा अहमद का कमाल है, खासा है कि वो खूबसूरत रिश्तों की ऐसी जाल बुनती हैं रिश्तों का, और उन रिश्तों में मोहब्बत और प्यार और कॉम्प्लेक्सिटीज और लव एंड हेट्रेड, एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुली वोवन. सो आप जरूर चेकआउट कीजिए आपकी इज्जत ऑन हम टीवी एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे 8 PM. उसके साथ जो तीसरे नंबर पे ड्रामा है वो भी मेरा अहमद का ही लिखा हुआ ड्रामा है और ये शुरू हुआ है जी ARY डिजिटल पे. 8 बजे शाम को आता है फ्राइडेज एंड सैटरडेज. 4 एपिसोड्स अब तक अलवन आ चुकी हैं. दुर्रे फिशा इसमें नजर आ रही हैं, शहरियार मुनव्वर और साथ ही साथ नमीर खान. ARY डिजिटल पे आता है ये ड्रामा और ये स्टोरी है, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टेक है स्टोरी की. जैसे कि कैरेक्टर्स आपके तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, हाउ देयर लाइव्स आर इंटरवाइंड थ्रू लव एंड मिस्टेक्स एंड हार्ट ब्रेक, और साथ ही साथ किस तरह ह्यूमन फ्लॉज दिखाए हैं और दर निजात यानी के निजात का दरवाजा हमेशा खुला है. ये है इस आई गेस इसकी मेन थीम. तो चलिए, एक आपकी इज्जत की बात हुई तो आपकी इज्जत का टाइटल ट्रैक आपके लिए प्ले करते हैं और फिर टॉप 2 ट्रेंडिंग ड्रामाज आपको बताते हुए इस सेगमेंट को करेंगे खत्म.

0: आपकी इज्जत से सुन रहे थे आप उसका टाइटल ट्रैक और टॉप टू ड्रामास आपको बताते हुए सेगमेंट को कर रहे हैं रैप अप. नंबर दो पे जिस ड्रामे ने टीआरपीज पे अपनी जगह को मेंटेन रखा विद 11.7 एवरेज टीआरपी इज ड्रामा सीरियल जंजीरें. सजल अली और दानियाल जफर इस ड्रामे में हमें मेन लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं. ड्रामा इज ऑन हम टीवी एवरी वेंसडे एंड थर्सडे 8 PM. वैसे जो मैं आपको ये टाइमिंग बताती हूँ ये इसलिए बताती हूँ ताकि आपको पता हो कि यूट्यूब पे कब आपको एपिसोड एक्सपेक्ट करें आप और कब वो एपिसोड आपके लिए रिलीज होगी. तो वेंसडे और थर्सडे को 8 बजे तो मोस्ट प्रोबेबली उसी के अराउंड 2-3 घंटे में आपके लिए ये एपिसोड्स अवेलेबल होती हैं यूट्यूब पे फॉर योर व्यूइंग एंड प्लेजर. अच्छा जी, इसी के साथ नंबर वन पे जिस ड्रामे ने अपनी जगह को बहुत मजबूती से थाम रखा है और किसी ड्रामे को ऊपर नहीं आने दे रहा है ये ड्रामा, दैट इज बस तेरा साथ हो. ARY डिजिटल पे आता है मंडेज एंड ट्यूजडेज 8 बजे शाम. फरहान सईद और सना जावेद हमें इस ड्रामे में मेन लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जोया नासिर, हारिस वहीद, सलमान शाहिद, सबा हमीद, एवरीवन हैज परफॉर्म्ड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली इन द ड्रामा. हर बंदा अपने रोल में ऐसे बिल्कुल फिट बैठा है, जैसे आप कहते हैं ना कि एक पजल में किसी एक पीस की वजह से वो पजल खराब हो रहा होता है या बन जाता है, तो वो हर बंदा अपने अपने उस पजल में रोल प्ले कर रहा है. एंड एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी कर लीजिए, गुस्से का सीन है, अच्छा सीन है, रोमांटिक सीन है, एवरीथिंग इज डन ब्यूटिफुली. सो एड दीज ड्रामाज इन टू योर लिस्ट. ये थी आपके लिए टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज फॉर लास्ट वीक. नेक्स्ट वीक वी विल कवर मोर. स्टे ट्यून्ड, आई विल कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. Raksha Bandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte ek door se shuru hote hain aur ek anmol nishani ke saath hamesha ke liye amar ho jate hain. हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे.
9: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को.
10: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
11: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit nextgenspeakersacademy.com. That's nextgenspeakersacademy.com.
12: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214 214- 4322499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
13: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
14: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभाल लेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
17: जिंदगी एक रंगमंच है
18: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
12: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com।
19: भूख लगी, जोरों की भूख लगी।
20: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
21: स्ट्रीट स्टाइल शॉट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
12: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
22: बेटा 95% आए?
23: हाँ मम्मी।
22: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
16: मेरा?
22: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
16: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintechs helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintechs.com. Call 972-618-8555. AG Fintechs, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
24: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण सुन रहे हैं आप 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो पे. और टाइम आ चला है जब मैं आपको कनेक्ट करने वाली हूँ हमारे वन वर्ल्ड बिजनेस कैपिटल के सेगमेंट के साथ. एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस इज व्हाट वन वर्ल्ड बिजनेस कैपिटल एंड मिस्टर शाहिद पंजवानी इज ऑल अबाउट. वन वर्ल्ड बिजनेस कैपिटल हेल्प्स बिजनेस ओनर्स एंड इंडिविजुअल्स फाइंड द बेस्ट फाइनेंसिंग ऑप्शंस सूटेड for your business. Let's welcome Mr. Shahid Panjwani on the airwaves of One Asia. Good afternoon, Shahid ji. How are you doing?
1: I'm doing great. Good afternoon to you and all listeners.
0: Thank you so much for connecting with us. Please begin by telling us, Mr. Panjwani, something about One World Business Capital, as well as if someone wants to buy a business, what are the loan options and how can One World help?
1: One World Business Capital, as for those who have not heard, as the name says it, we do business capital. आप existing business owner हो और आपको capital चाहिए, we can help you with an SBA loan, a non-SBA loan.

0: बिजनेस क्या पे रहो एज फॉर दोज हु हैव नॉट हमें जो पहली बार सुन रहे एज द नेम सेज इट वी डू बिजनेस कैपिटल. आप एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर हो और आपको कैपिटल चाहिए, वी कैन हेल्प यू विद एन SBA लोन, अ नॉन SBA लोन, अ ब्रिज लोन, इक्विटी कैश आउट. आप फर्स्ट टाइमर हो जो आप नया बिजनेस खरीदना चाह रहे हो, आप फ्रेंचाइज खरीदना चाह रहे हो, फ्रेंचाइज शुरू करना चाह रहे हो, या कोई एक इंडिपेंडेंट बिजनेस आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो, सेम थिंग, वी कैन हेल्प यू विद एन SBA लोन, वी कैन हेल्प यू विद नॉन SBA लोन एंड सो मेनी अदर ऑप्शन. सो व्हाट वन थिंग आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई टू लिसनर्स, वी डोंट वर्क एज वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच. व्हेन समवन कॉल्स अस, वी प्राइमरीली स्पेशलाइज इन SBA लोन. मेनी पीपल लाइक SBA जस्ट बिकॉज फॉर द रीजन की उसका डाउन पेमेंट बहुत कम होता है. अगर आपका टोटल प्रोजेक्ट जो भी है उसका मिनिमम 10% आपको डाउन करना है. ऑन टॉप ऑफ दैट SBA आपको वर्किंग कैपिटल भी देता है. तो जो आपने डाउन पेमेंट दिया वो टर्न अराउंड वर्किंग कैपिटल के रूप में आपको वापस मिल जाता है. आप SBA के लिए क्वालिफाई नहीं होते हो या आप नहीं चाहते हो SBA, देन वी कैन हेल्प यू विद कन्वेंशनल लोन. आपको कन्वेंशनल में भी अगर आप फिट नहीं हो रहे हो, वी कैन ट्राई टू हेल्प यू विद HELOC और HELOC बिजनेस पर्पज ही लोन. आप अगर उस कैटेगरी में भी आपके पास नहीं है, देन वी डू हैव सम लाइन ऑफ क्रेडिट ऑप्शन ऑल्सो. सो कंक्लूजन, वन साइज फिट्स ऑल नहीं है. आप अगर कोई भी किस्म का कमर्शियल लोन चाहते हो, कॉल अस वन ऑन वन, नो ऑब्लिगेशन कंसल्टेशन. वी विल ट्राई टू फिगर आउट, वी विल ट्राई टू फाइंड अ वे टू हेल्प यू गेट योर फंड्स.
1: परफेक्ट. तो शायद जी, व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट इन टच विद यू?
0: 817-786-3338, 817-786-3338. This line directly comes to me.
1: And would you like to recommend some websites?
0: OneWorldBusinessCapital.com and TheSBALoanExperts.com.
1: There you go, OneWorldBusinessCapital.com or TheSBALoanExperts.com, or give them a call, 817-786-3338. Mr. Panchwani, is there anything else that you'd like to cover before we let you go?
0: One thing I would like to say before going is, we have talked about 3-4 loan options. But as I said, there are so many other loan options. अगर कोई लोग सारे हम ऑन एयर एक छोटे से सेगमेंट में हम सारे ऑप्शंस के बारे में बात नहीं कर सकते, इसीलिए एनकरेज करते कि आप कॉल करो. दो नए SBA के प्रोग्राम शुरू हुए, कन्वेंशनल में भी काफी सारे नए प्रोग्राम्स आते रहते हैं जो दे कीप ऑन चेंजिंग, लेंडर्स कीप ब्रिंगिंग आउट न्यू प्रमोशंस एंड न्यू प्रोग्राम. सो इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर सिनेरियो दैट यू वांट टू डिस्कस, वी आर जस्ट वन कॉल अवे.
1: थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून. वी विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम.
0: थैंक्स,
1: हैव अ गुड बाय.

This part of our show is brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax and accounting firms in the US. Mein chahe aap individual ho ya startup ho aapka ya phir aapka koi established business ho, aap One World Business Capital se connect kar sakte hain. They help you from bookkeeping, payroll accounting, bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance as well as financial reporting. और इसके साथ बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं. दे हेल्प कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लायंट एंड फ्यूचर रेडी. सो मेक एजी फिनटैक्स योर पार्टनर इन बिल्डिंग अ स्ट्रांग फ्यूचर टुगेदर. कॉल कीजिए, कोई भी सवाल आपका ये बात सुन के जहन में आया है तो दे आर जस्ट अ फोन कॉल अवे. गिव देम अ कॉल 469-942-9888. 469-942-9888 इज द नंबर, या फिर उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए विच इज agfintax.com.

जी हाँ, और अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा डॉक्टर या पीसीपी अपने लिए, प्राइमरी केयर फिजिशियन, जो कि आपके मसाइल को पूरी तरह सुने, आपको पूरा टाइम दे, आपकी हेल्थ को अंडरस्टैंड करे, तो ऐसी अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर पे। 30 मिनट के लिए आपकी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल की जाती है। कोई जल्दी नहीं मचाई जाती कि जल्दी जल्दी करें, 5 मिनट इन एंड आउट डॉक्टर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स टू कम्प्लीट योर एनुअल फिजिकल। अगर आप एंजाइटी केयर की ट्रीटमेंट चाहते हैं, फाइब्रोस्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स हैं आपके, विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग आपने करानी है, या कोई भी आपका कंसर्न है, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज हेयर टू हेल्प यू। और आपकी पूरी हेल्थ को अंडरस्टैंड करते हैं और आपको पूरा टाइम देते हैं, VIP ट्रीटमेंट आप कह लीजिए। उनको कॉल कीजिए अगर आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है। दैट नंबर इज 214-666-6259, 214-666-6259 उनका नंबर है जी। बुक योर अपॉइंटमेंट बाय कॉलिंग देम एंड लेट देम टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।

और इसी के साथ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक गिव अवे. चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन की तरफ से यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ विनिंग $10 ऑफ योर नेक्स्ट डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. तो आप जाइए रेस्टोरेंट में, $50 का आपका बिल बनता है, तो $10 एब्सोल्युटली ऑफ. इसके अलावा मैं आपको उनकी लंच स्पेशल थालीज के बारे में बताना चाहती हूँ जो मंडे टू थर्सडे वो ऑफर करते हैं, और हर रोज उनकी डिशेज जो हैं वो रोटेट होती हैं. सो इट्स नॉट कि हर रोज आपको एक ही चीज मिलेगी. जरूर विजिट कीजिए देयर लंच स्पेशल्स ओनली. दिस इज अ स्पेशल थाली दैट दे गिव मंडे टू फ्राइडे. दे आर लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन. चंडीगढ़bites.com पे आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं ताकि आप उनका मेन्यू चेकआउट कीजिए, और साथ ही साथ उनके स्पेशल्स और भी जो कुछ है वो सारा उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है. तो अब आप जो है मुझे बताइए, अगर आप ये गिव अवे जीत गए या वैसे भी अगर आपने उनका खाना ट्राई करने जाना है तो एड्रेस तो आपको अपने GPS में डालना ही पड़ेगा कि कहाँ जाना है. तो 972-235-5555 पे कॉल कीजिए और मुझे बताइए कि चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन का स्ट्रीट एड्रेस क्या है, और जीत लीजिए ये $10 ऑफ योर नेक्स्ट बिल ऑफ $50 और मोर फॉर डाइन इन ओनली. फोन उठाइए, कॉल मिलाइए.

जी हाँ, चंडीगढ़ बाइट्स एंड एलन का एड्रेस आपसे पूछा था टू विन दिस $10 ऑफ योर $50 बिल फॉर डाइन इन. और सबसे पहले आपको करेक्ट एड्रेस बता दूं, 2023 वेस्ट मैकडरमॉट ड्राइव, स्वीट 180, एलन, टेक्सास 75013. ये है जी चंडीगढ़ बाइट्स एंड एलन का एड्रेस. जरूर जाइए, विजिट कीजिए. यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली लव देयर फूड. और आप तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑल योर कॉल्स एंड फॉर गिविंग मी द राइट आंसर. जिस सीक्वेंस में आपकी कॉल आती है वो मैं मैथ के फॉर्मूले में वो नंबर डालती हूँ. और जी एक नंबर पिक होता है और हमारे जो लकी विनर हैं इस वक्त के वो हैं प्रवीण. प्रवीण कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये $10 ऑफ योर $50 बिल फॉर डाइन इन ओनली एट चंडीगढ़ बाइट्स एंड एलन. दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए. एंड देन यू विल हैव अबाउट 7 डेज टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर गिव अवे. सो एंजॉय. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बहुत बहुत शुक्रिया.

0: And if you have a third to fifth grader at your home, जी, तो Next Gen Speakers Academy help कर सकती है उनको to build the communication and leadership skills that they are going to use for a lifetime. Created by experienced coaches, Sunhee Simon Santiago and Audra Langston, who've mentored debate champions, valedictorians, as well as Ivy League graduates. ये online program design किया गया है to help your young minds grow into confident leaders. कोई भी आपके जहन में सवाल है तो आप उन्हें call कीजिए या उनकी website visit कीजिए. Lots of information is available at their website, which is nextgenspeakersacademy.com. That is nextgen, G-E-N, speakersacademy.com. या फिर आप उन्हें call कर सकते हैं, which is 214-724-2867. नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 214-724-2867. So give your child the confidence to lead tomorrow, starting today with Next Gen Speakers Academy.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
3: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
4: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian, made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali, और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
3: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
5: ये तारा वो तारा हर तारा.
3: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
6: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
7: लिया.
6: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
7: नहीं आया.
6: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशन एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
8: Visit www.sanadainc.com today.
9: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
10: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
9: Fikar not. We have the perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
11: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
12: Ocho.
13: Hoko.
12: Ocho.
13: Hoko.
12: Ocho.
13: It's Hoko.
14: अरे बस भी करो यार.
13: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
14: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूड़ी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
3: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
15: कहाँ गया,
7: कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
8: कौन सा?
7: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
8: अरे सारे तो सेम है।
7: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
8: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
3: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।
12: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फाइनेंशिया 104.9 FM।

पान एशिया रेडियो पे आप सुन रहे हैं आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण और वक्त आ चला है आपको वेदर करेंसी अपडेट देने का। उससे पहले आपको बताऊं जी कि अगर आपका आज खाना पकाने का दिल नहीं कर रहा लेकिन आपने खाना घर जैसा ही खाना है पर बाहर से मंगवा के खाना है तो फिर ऐसी जगह मैं आपको बताती हूँ जहाँ मिलेगा आपको बिल्कुल घर जैसा खाना एंड दैट इज तंदूरी फ्लेम। दे आर लोकेटेड इन गार्लिंग। तमाम आपको आपके नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स जैसे कि तंदूरी प्लैटर्स, कबाब्स, करीज, नान्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट तंदूरी फ्लेम। और सबसे स्पेशल बात यह है कि बिल्कुल घर जैसे जायके के साथ वहां बैठ के खाइए, घर ले आइए, केटर कराइए अपने किसी इवेंट के लिए। दे विल बी हेयर टू हेल्प यू थ्रू आउट। दिस इज तंदूरी फ्लेम लोकेटेड इन गार्लैंड। एंड नाउ इट इज टाइम टू गिव यू द वेदर अपडेट। आज है जी वेंसडे ऑगस्ट 12th 4:38 PM इन द स्टूडियो और इस वक्त सिटी ऑफ मेकिनी में है 100 degrees। However, it feels like 109 right now. Din raha sunny, hot, and of course highs around 100. Jabki sham rahegi low and clear actually, and lows in the upper 70s. Heat index values up to 110. So it is going to be an extremely, extremely hot day today. UV index aaj ka 10 hai, which is of course very high. Sham mein bahar nikal rahe hain aap, you have any plans in the evening, please keep your sunscreens handy. Keep yourselves hydrated, that is very important. Pollen count aaj ka 6.2, which is of course medium as well. Kuch log pollen se dobara se pareshan hone shuru ho gaye hain. Grass and elm is what is bothering. Sunrise aaj ka hua 6:47 AM pe, jabki aaj ka sunset hoga 8:15 PM. That was your weather forecast.

And with that, it is time now to give you the currency update. US dollar kahan stand kar raha hai with respect to other currencies in the world. According to xrates.com, euro is waqt 0.86 pe trade kar raha hai. Jabki British pound is trading at 0.74. Indian rupee 95.34, jabki Canadian dollar 1.39 pe stand kar raha hai. Pakistani rupee 277.78 Pakistani rupees are trading for one US dollar. Nepali's rupee 152.63 pe trade kar raha hai, jabki Bangladeshi taka 123.13 Bangladeshi takas are trading for one US dollar. और इसी के साथ गाने की तरफ जाते हुए मैं आपको बताऊं जी कि रक्षाबंधन आ रहा है और इस रक्षाबंधन Fun Asia in Choctaw Casino and Resort Durand wants to hear your most unforgettable memory with your sibling. और आप क्या जीत सकते हैं once you share it? You can win exciting daily prizes जैसे कि dining experience, entertainment, resort stay, as well as you can be a grand prize winner, which is unforgettable sibling reunion weekend at Choctaw Casino and Resort Durand. तो complete details आपको मिलेंगी हमारे Fun Asia Radio के social media pages पे. अगर आपने अब तक हमें follow नहीं किया तो तो जरूर फॉलो कीजिए एंड चेक आउट मोर डिटेल्स. और आपको इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा कैसे लेंगे आप? यू विल हैव टू मेक अ वन मिनट वीडियो वॉइस नोट, वन मिनट वॉइस नोट, और आपको व्हाट्सएप करना है वो वॉइस नोट इस नंबर पे. नंबर नोट कीजिए 214-837-7147 214-837-7147 पे आपने ये वॉइस मेमो अपना एक मिनट का बना के फॉरवर्ड करना है about your unforgettable memory with your sibling to win these exciting prizes. So, G Choctaw Casino and Resort located here Durand mein. This is where unforgettable memories are made together. You have to be 21 years or older to participate. Terms and conditions apply. And please play responsibly.

0: And with that, it is time now to connect you with our mortgage loan segment. जो हमारे साथ मौजूद है मिस्टर हुसैन पंजवानी from Dream Home Mortgage, a division of Brazos National Bank. चाहे आप नया घर खरीदना चाहते हो या कंसोलिडेट करना चाहते हो, अपनी डेट रीफाइनेंसिंग करना चाहते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ड्रीम होम मॉर्गेज आपको हेल्प करेगा. लेट्स वेलकम हुसैन जी ऑन द एवेन्यूज ऑफ फाइनेंशिया. गुड आफ्टरनून हुसैन जी, हाउ आर यू डूइंग?
1: गुड आफ्टरनून किरण जी, आप कैसे हो? And good afternoon to all your listeners. I hope they are enjoying this hot weather.
0: Absolutely. You know. Thank you so much, Sanji, for connecting with us. Always a pleasure. Please bataiye, Sanji, Dream Home Mortgage hume kaise help kar sakta hai if we are a first time home buyer or we want to upgrade or any other requirement we have.
1: So basically, Dream Home, anything to do with real estate, whether aap commercial bike घर बाय करने की ट्राई कर रहे हो, रेसिडेंशियल कैश आउट करने की ट्राई कर रहे हो, एनीथिंग एवरीथिंग टू डू विद रियल एस्टेट. वी इवन हैव सम ग्रेट ऑप्शंस फॉर ग्रांट्स, एंड इफ यू क्वालिफाई फॉर द ग्रांट यू क्वालिफाई, इफ यू डोंट क्वालिफाई यू डोंट क्वालिफाई. इट्स यू हैव टू बी अ फर्स्ट टाइम होम बायर, इट हैज टू बी अ प्राइमरी रेसिडेंस, एंड देन इट इज इनकम बेस्ड प्रोग्राम जहां आप ये $25,000 ग्रांट के लिए यू कैन क्वालिफाई. सो बेसिकली वी हैव एट ड्रीम होम वी हैव वर्क्ड वेरी वेरी हार्ड कि हम हर काइंड ऑफ प्रोग्राम कोशिश करते हैं पूरी कि हम हर क्लाइंट को हेल्प कर सके. सो एनीथिंग टू डू विद रियल एस्टेट, अगर आप घर बाय करने की ट्राई कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू बाय अ हाउस, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर ड्रीम होम, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बाय अ लैंड, कमर्शियल लैंड, रेसिडेंशियल लैंड, 10 acre land, 100 acre land, Dream Home can definitely help you.
0: Perfect. So, Hussain ji, aaj hum kin cheezon ke bare mein baat karenge? What are we covering?
1: So, hum basically, jaisa hum hamesha baat karte hain, aajkal jo programs hum dekh rahe hain, jiski hume demand hai, like we are seeing a lot of first time home buyers jo 4 lakh, 4.5 lakh ke niche ghar buy karne ki try kar rahe hain with 3% down, 5% down. So, we are seeing first time home buyers at least last 2-3 hafte se. In fact, summer almost khatam ho gaya. I think today was first day of school. Someone told me schools shuru hona shuru ho gaye. So, hum dekh rahe ke ye surprisingly pleasant surprise for us. We are seeing activities in home buying where a lot of people are again asking for pre-approval. We started seeing some contracts coming in, so that's a good sign. Secondly, hum bahut se log ko dekh rahe ke cash out karwa rahe hain. अपने घर पे कैश आउट करवा रहे. एंड यू नो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डेट कंसोलिडेशन एंड कैश आउट. ये मुझे क्लाइंट्स को समझाना बहुत जरूरी है कि प्लीज प्लीज मेक अ वेरी वेरी थॉट आउट डिसीजन. सोच समझ के डिसीजन लीजिए जब आप डेट कंसोलिडेशन कर रहे हैं, या आप इफ यू आर इवन ट्राइंग टू गेट सम वेवर ऑन योर पेमेंट्स. When some companies tell you that, oh, don't stop making your payments for 2-3 months. Kiran ji, every borrower has to understand ki jab aap koi bhi payments karna band kar dete ho, gaadi ki payment, credit card ki payment, mortgage ki payment, your credit will be hurt badly. और यू मुझे, मैं इसके लिए ये बार बार कहता हूँ, मुझे खुद को सरप्राइज लगता है कि हम 20 साल से ये शो कर रहे हैं, हम 20 साल से बोल रहे हैं कि यू नो बी प्रोएक्टिव, डोंट फॉल बिहाइंड ऑन योर पेमेंट. इवन इफ यू आर ट्राइंग टू गेट अ फॉरबेरेंस ऑन योर मॉर्गेज, इवन इफ अ मॉर्गेज कंपनी टेल्स यू दैट प्लीज स्टॉप मेकिंग पेमेंट्स, कीप इन माइंड दैट इट्स नॉट अ डन डील. योर फॉरबेरेंस कैन बी टर्न डाउन एंड देन योर क्रेडिट विल बी मिस्ड अप. लॉट ऑफ गेट क्लाइंट्स हमें कॉल करते हैं कि ओ हम डेट कंसोलिडेशन कर रहे थे, हमें ये कंपनी ने कहा कि स्टॉप मेकिंग योर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, एंड देन व्हाट हैपेंस, योर स्कोर्स ड्रॉप ड्रास्टिकली. सो बिफोर यू मेक एनी सच डिसीजंस, इफ यू आर अ होम ओनर, यू हैव गुड इक्विटी इन योर हाउस, कॉल अस फॉर कैश आउट लोन्स. देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर कैश आउट. सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोवर्स के लिए हमारे पास प्रोग्राम है जहां हम आपके टैक्स रिटर्न, वी डोंट इवन लुक एट योर टैक्स रिटर्न इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोवर्स. If you have an investment property, you can get cash out without using your tax returns on investment property. So, hum puri koshish karte hain ki Dream Home pe hum different borrowers, har borrower ki requirement different hoti hai. And we try to help them and, you know, make sure ki har borrower ko hum honestly help kar sake.
0: Perfect. So, Sanji, what is the best way to get in touch with you?
1: for any kind of consultation, if you're a first time home buyer, you're a 10th time home buyer buying investment property, just like I mean, if you a commercial loan karna chahte ho, you have group of investors trying to buy a land, trying to build a shopping complex, you can call us. The best way to contact us is info@dreamhomemortgage.com. That's info@dreamhomemortgage.com. Or if you want to call me right now after this radio show, 972-245-5626. 972-245-LOAN is the number to call us. And the consultation is absolutely free.
0: Absolutely. There you go. 972-245-5626 or info@dreamhomemortgage.com is where you need to send the email. Hussainji, is there anything else before we let you go?
1: Just basically like the same old thing. If you even are trying to buy a house, if you have an estimate from any other mortgage companies, email us. If we can beat, most of the time we are able to beat it unless it's a deal from a builder. We cannot, but in most of the cases, if you have from another mortgage company, send us your loan estimate and more than likely we will be able to beat it for you. So, वहाँ भी आपकी बचत हो सकती है.
0: Sure.
1: अगर आपको कोई भी mortgage real estate related question है, do call us.
0: Perfect. Thank you, Sanji, for connecting. We will talk to you next time.
1: Always a pleasure. Thank you so much, ma'am.
0: You have a good one. जी कामी जी.

का दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADशा नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

और अगर आप आवारापन टू का इंतजार कर रहे हैं, यू लव्ड आवारापन वन, तो फिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं जी, बिकॉज आवारापन टू इज ऑल सेट टू ब्रिंग बैक द इंटेंसिटी, इमोशन एंड एक्शन दैट मेड द ओरिजिनल वन अ कल्ट क्लासिक. इमरान हाशमी रिटर्न्स एज शिवम इन दिस स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन, लव एंड सैक्रीफाइस. दिशा पचानी और शबाना आजमी जी हमें उनके साथ नजर आएंगे, पैक्ड विद ब्रेथ टेकिंग लोकेशंस, पावरफुल परफॉर्मेंसेज और साउंड ट्रैक. तो आप जानते ही हैं आवारापन मूवी की खासियत है साउंड ट्रैक उसका. सो जरूर आप जाइए देखिए. रिलीज हो रही है आपके लिए थिएटर्स में अगस्त 14th को, यानी कि कल नहीं परसों से आपके लिए थिएटर्स नियर यू में लग जाएगी. दिस इज आवारापन टू, डू नॉट मिस एंड चेक इट आउट. और इसी के साथ मैं देने लगी हूँ आपको गोल्ड प्राइस अपडेट. राइट नाउ अकॉर्डिंग टू goldprice.org, गोल्ड प्राइस पर आउंस है $4,408.73, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत इस वक्त है $141.74. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में 88 सेंट्स का इजाफा हुआ, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $27.42 का इजाफा देखने को मिला. But that's pretty much all that I have for you where your finance matters. और एक ट्रैफिक का इंसिडेंट भी नजर आ रहा है जी, वो भी आपको बताते हुए वी आर गोइंग टू टेक अ रैप एट दिस सेगमेंट. कोलिजन एक नजर आ रहा है US 75 पे टूवर्ड्स बेथनी ड्राइव साउथ बाउंड, जिसकी वजह से 3 out of 8 लेन्स आर ब्लॉक्ड, इंक्लूडिंग एग्जिट लेन्स. तो अगर आप यहाँ पहुँचने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा बैकअप है. अभी रिपोर्ट हुआ है ये इंसिडेंट, सो यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ बैकअप हियर. प्लीज बी केयरफुल एंड विजिलेंट व्हाइल यू आर रीचिंग देयर, बट अदर देन दैट प्रीटी मच एवरीथिंग इज क्लियर ऑन द रोड्स ऑफ डैलस. विश यू अ सेफ ड्राइव. कल मिलूंगी आपसे एक बार फिर, कल है थर्सडे. आई विल ब्रिंग यू वो 90s का बॉलीवुड. वी आर गोइंग टू लिसन टू सम अमेजिंग म्यूजिक अलॉन्ग विद लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. मैं हूँ किरण, दिस इज आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण ऑन 104.9 FM Fun Asia Radio. Enjoy the rest of your evening.

You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Namaskaram, Assalamu alaikum, Sat Sri Akaal, Kem Cho, DFW, Yali Madad. Welcome to the listeners of Fun Asia once again on 104.9 FM with your evening drive time show, jiska naam hai the one and the only The Bindaas Show. With your Banda Bindaas, Marvin Das, Monday to Thursday, 5 to 7pm, I give you company. And what a wonderful start to our show today. Ke aap wapas jaake jo ho gaya usko to nahi badal sakte bhai. But haan, jahan ho, wahan se agar badlaav karoge, तो जो आगे आने वाला कल है उसको जरूर बदल पाओगे. एंड दैट्स ऑल वी हैव टू रिमेंबर. स्टूडियो लाइंस आर ऑलवेज ओपन फॉर माय एक्सटेंडेड फैमिली व्हिच इज यू ऑल द फन एशिया लिसनर्स. आपके लिए कॉल्स हमेशा खुली हैं जी. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. आज आप कुछ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या मेरी तरह सिर्फ जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, देन दिस नंबर इज डेफिनेटली फॉर यू. बर्थडेज, एनिवर्सरीज, एनी अचीवमेंट्स फ्रॉम यू, योर किड्स, एनीथिंग दैट मेड यू हैप्पी, आई एम विलिंग टू शेयर दैट. Listen to that and spread that joy around as well. And of course, I want to thank the Almighty for yet another day. Ek aur mauka is zindagi pe jo usne mujhe diya. And another mauka jahan main aapke paas aage kuch karunga. Apni baatein khaas kuch sununga aapki. Let's start this day with A.R. Rahman. With this new stuff that he came out with. It's called the Moonlight Symphony Band. The track is called Chanda Re.

0: इट्स योर बॉय बादशाह, बट इट्स योर बॉय बंदा बंदा मारंदास। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं जनाब, बट याद रखना कि इंडिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इज सेट फॉर द 15th ऑफ अगस्त, यानी कि दिस सैटरडे एट द कमेरिका सेंटर। एंट्री आपके लिए बिल्कुल फ्री है और साथ साथ ये इवेंट इंडोर्स है, सो डोंट वरी। आपकी ब्यूटी को हम कुछ नहीं होने देंगे, सब मिलके एंजॉय करेंगे। ग्रैंड परेड, यू हैव अ टन ऑफ इंडियन फूड स्टॉल्स एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ शॉपिंग एंड लॉट ऑफ फन, एंड एक लाइव कॉन्सर्ट विद वेरी टैलेंटेड सिंगर्स इज ऑल्सो प्लान फॉर यू। तो भैया जी आ जाइए पूरे परिवार और दोस्तों को लेके। आई विल सी यू ऑन सैटरडे, फॉर नाउ इट्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
1: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक, they're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI powered platform real time rates compare karta hai, taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
3: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कॉम्पिटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
4: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1000.
5: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
7: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं।
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं।
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं।
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
8: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। For your tax planning, bookkeeping and CFO services, visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
9: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
10: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions.

हमारी देसी कम्युनिटी में ना बड़े लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कोई डॉक्टर, कोई डबल डॉक्टर, कोई डबल PhD, कोई साइंटिस्ट, उसके बाद पता नहीं कैसे न्यूरो साइंटिस्ट, उसके बाद सर्जन, हार्ट सर्जन, ये वो, इतनी पढ़ाई, सीनियर इंजीनियर फलाना है जी, AI मास्टर्स। पता क्या है, जिंदगी में ना आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, जितने मर्जी अपने अहदे के आप अफसर हो, अगर बीवी ने कह दिया ना आप नहीं समझोगे तो आप नहीं समझोगे।

आप नहीं समझोगे। खैर मैं कभी कभी समझ जाता हूँ आपको, कोशिश ये होती है कि अच्छे अच्छे गाने आपके लिए लगाऊं यार समझ बूझ के। दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो, 5:25 स्टूडियो घड़ी में। आई एम गोना बी विद यू टिल 7 o'clock दिस इवनिंग। ग्रैंड प्री वालों के लिए जबरदस्त खबर भैया जी, अब दूर दराज के मुल्कों तक आपको नहीं जाना पड़ेगा टू गेट योर ग्रोसरी। बिल्कुल पास आ चुका है जी आपके लिए ग्रोसरी स्टोर जिसका नाम है हिमालयन बाजार, एंड दिस स्टोर सर्व्स इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, अरबिक, सारे ग्रोसरी स्टोर्स को ध्यान में रख के, हमारी कम्युनिटी को ध्यान में रख के ये स्टोर बनाया गया है। फ्रेश प्रोड्यूस से लेके आपकी मूली, गाजर, कांदा वांदा सब कुछ ताज़ा आपको वहाँ मिलेगा। उसके साथ साथ एवरीथिंग इन द फ्रोजन आइल दैट यू एक्सपेक्ट एंड एवरी ग्रोसरी आइटम दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ साउथ एशियन परस्पेक्टिव, सब कुछ रखते हैं जी अपने पास। और शाम को अगर आप चले जाएंगे 5 बजे के बाद तो ताज़ा ताज़ा पकौड़े, समोसे, कॉफ़ी और चाय ये भी आपको मिलेगा जी, पेशकश है उनकी अपनी। एंड इफ़ यू लिव इन अ 5 माइल रेडियस $50 के ऑर्डर पे फ्री ग्रोसरी मिलेगी भाभी, नो नीड टू गो आउट। धूप में कौन जाएगा, हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, सीधा जाओ इनकी वेबसाइट पे या इनको कॉल कर लो और अपना चेक कर लेना कि घर 5 माइल के रेडियस में है। अगर है तो आपको $50 की ग्रोसरी पे फ्री डिलीवरी मिलेगी, एंड एवरी डॉलर इज अ पॉइंट। तो अगर आपने $100 की ग्रोसरी कर ली आपको मिलेगा 5% ऑफ, दैट इज हिमालयन बाजार। गूगल इट, इट्स राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे 20 एंड 360 इन ग्रैंड प्रेरी, हिमालयन बाजार, हलाल मीट एंड वाटर बफ फॉर माई नेपलीज कम्युनिटी लवर्स।

0: The आवारापन टू विच इज डेफिनेटली क्रिएटिंग अ बज सारे जहान में इसकी बात हो रही है भाई, क्योंकि इमरान हाशमी इज बैक. कहते हैं जी इमरान हाशमी एक तरफ, पूरा बॉलीवुड एक तरफ. वेल दैट्स फॉर यू गाइज टू डिसाइड, बिकॉज आई पर्सनली लाइक इमरान एंड आई थिंक हिज मूवीज आर वेरी पैशनेट एंड दिस वन वॉज द 2.0 वर्जन ऑफ द तेरा मेरा रिश्ता ट्रैक. वेल रिश्ते जो होते हैं ना जनाब, वो निभाने से बनते हैं, और निभाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं. उस पापड़ों में एक पापड़ ये है कि आपकी जो एसेट्स बनाते हो आप इतना पैसा जोड़ते हो, सारी उम्र लगाते हो टू पैस इट ऑन टू योर किड्स एंड टू योर नेक्स्ट ऑफ किन. अब अगर इसमें आपकी प्लानिंग में गड़बड़ हो जाए कि किस तरह से उसको स्ट्रक्चर करना है, ट्रस्ट मी इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड. इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड वंस यू नो अबाउट इट एंड इट्स ईजी टू इम्प्लीमेंट दोस्त. एंड आई एम गोना बी कनेक्टिंग यू टू दीप्ति वर्मा, हु इज द स्पेशलिस्ट इन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट एंड एसेट पैस ऑन करते हैं जब हम, वो किस तरह से करना चाहिए. एंड टू गेट दैट आई एम गोना आस्क हर अ क्वेश्चन. कि ये क्वेश्चन पूछने की वजह ये है, दीप्ति फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आर फन एशिया रेडियो. नाउ आई नो दैट यू नो इफ आई हैव ऑलरेडी नेम्ड माय वाइफ एंड चिल्ड्रन एज बेनिफिशरीज ऑन माय बैंक अकाउंट्स, जो कि काफ़ी लोग करते हैं रिटायरमेंट अकाउंट्स में, लाइफ इंश्योरेंसेस में, मेरा घर जो है इवेंचुअली मेरे बच्चों को चला जाएगा, व्हाई शुड आई स्पेंड मोर मनी ऑन क्रिएटिंग एन एस्टेट प्लान? इज देयर एक्चुअली अ गैप इन दीज टू थिंग्स?
1: Well, good evening, Marvin, and good evening to all my listeners. Yes, that's a very important misconception that people have in estate planning. Having beneficiaries is awesome. It's a good practice. But having beneficiaries on your, multiple assets is not the same thing as having a structured estate plan. Let me give you a very small, simple example. Suppose you have 3 children and your intention is that eventually, everything should be divided equally amongst them. So your trust should say one-third, one-third, one-third amongst the 3 children. It sounds very simple. But then your IRA names only one child as a beneficiary. There is a lot of ambiguity because life insurance will have different beneficiary setup, percentage distribution. Bank account will be jointly owned with another family member. So there is a lot of, confusion and ambiguity. And after your death, those assets may not follow those instructions. So that, everything should be equally amongst the 3 children. So because retirement account, life insurance policies, they all follow different or, multiple beneficiary designations. Jointly owned assets will follow their own ownership structure. Similarly, real estate will have its own title. So the real question is, estate planning is not simply, do I have a trust? The real question is, does everything that I own actually works together in conjunction with each other? So, guys, if you do not have a trust, then each asset shall be very loosely connected with the distribution that you want to have, creating a lot of confusion, ambiguity in your distribution. So, whereas if you have a living trust, it is very clearly defined, it is structured in a proper way, which is going to make sure that all your assets, be it anything, they are seamlessly passed into the family in a way, or I would say in a percentage that you wish for. So, and moreover, Marvin, I would like to also add here that a living trust works even when you're alive, but you might be in a compromised medical condition, so which is why it is important. So give me a call if you have any questions, if you have any confusions, just pick up your phone and give me a call at 669-243-5799. I'll give you the number 669-243-5799. You can also visit our website, which is nriwealth.com. Because a beneficiary might have, different situations, a special circumstance, and it is going to be a lot of stress for the beneficiaries if you do not have a structured trust. So a living trust is the only answer if you have any asset for it to be passed on to your beneficiaries in a seamless way and 100% and immediately after you pass away.
0: The number once again for Deepthi Verma is 669-243-5799. I thank you, Deepthi, for being with us. Always a pleasure.

0: सियासी मुजरिम हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स। हमें किताबें मिलनी चाहिए लिखने के लिए, पेन, पेपर और कम से कम रोज का एक अखबार।
1: और तब तक हम नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल जारी रहेगी।

0: We're taking a short commercial break. Don't go anywhere. Masti ka bhara next segment coming up.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Heere moti main na chahu.
4: अच्छा मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग डायमंड रिंग्स पेंडेंट्स इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर चाहे प्रपोजल हो वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो अब शाइन डबल विद इन बजट लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग
5: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना
2: लाइफ हो या हेल्थ कब क्या हो जाए पता नहीं 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM to 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइज़रवे सुईट 205 फ्रिस्को
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
8: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
10: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी वरना
11: दूल्हे
10: को टाटा बाय बाय कर
11: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या
2: अब करेगा बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी मेंस एंड किड्स वेयर
8: इतना सब और प्राइस
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन अब हर आउटफिट बोलेगा
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, phir puja ka saman, gifts bhi khareedne aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali. Kahin अच्छा सा डिनर करके आएंगे
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
15: कहाँ फूडिस्तान इन ऑबरी फ्रेश ग्रोसरी हलाल मीट पूजा एसेंशियल्स लाइव पानी पूरी केटरिंग सर्विसेज प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर
2: फूडिस्तान इन ऑबरी मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट
16: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांट के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांट अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214 837 7777 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
2: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
17: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना.

ला बता गाना ही तो बजा रहा हूँ और मैं यहाँ पे छोले कुलचे बेचने आया हूँ, गाना सुनते रहो जी फन एशिया रेडियो पे। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, दिस वाज बैड बॉय बादशाह। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय अटॉर्नी सीमा मेहता हु इज द एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू इमिग्रेशन। इफ यू आर टॉकिंग इमिग्रेशन, एनीथिंग इमिग्रेशन, बी दैट F1 आपका स्टूडेंट वीजे को आपको कन्वर्ट कराना है जी टुवर्ड्स H1, और इफ यू वांट टू गेट योर H1 एंड ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग डन थ्रू द EB5 प्रोग्राम, या फिर आपको पर्म करवाना है जी, सिटीजनशिप फाइलिंग करवानी है, यू वांट टू डू K1 वीजाज, फियांसे वीजाज, दे डू इट ऑल। ऑल यू हैव टू डू, मुझे पता है क्वेश्चंस होते हैं आपके, सवाल होते हैं, अगर कभी आपने ये काम नहीं किया तो आपको पता भी नहीं कैसे होना है, तो इसके जवाब मिलेंगे आपको, हर सवाल का जवाब होता है ना, इसी तरह इस इमिग्रेशन के रिलेटेड सवालों का जवाब देंगी आपको सीमा मेहता जी। आप ईमेल करेंगे info@seemamehtalawfirm.com, दैट्स info@seemamehtalawfirm.com एंड दे विल रिप्लाई बैक विद व्हाटएवर यू आर लुकिंग टू गेट आंसर्ड। सो When you think about immigration, one name to remember, Seema Mehta Law Firm. रोजाना एक नींबू और एक चम्मच शहद गर्म पानी में डालकर पीने से 2 महीने में 3 किलो नींबू और 1.5 किलो शहद खत्म हो जाएगा, और तो क्या ही होना होता है। अब मेरे को ना लेडीज से एक सवाल है, आज मेरा एक क्वेश्चन है लेडीज से कि लेडीज बहुत कुछ याद रखती हैं, बट मैंने ये नोट किया है, दिस इज नॉट अ जजमेंट क्वेश्चन, दिस इज अ येस और नो क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने ये देखा है कि 5 मिनट पहले आप कभी अगर सेफ्टी पिन या कभी अपना वो क्या कहते हैं हेयर बैंड या हेयर टिप उतार के कहीं रखते हो तो यूजुअली आप भूल जाते हो, बड़ी चीज़ें आपको याद रहती हैं। जैसे मेन जो है ना, हमें छोटी छोटी बातें भूलने की आदत है, बड़ी बातें भी भूलने की आदत है, हम दोनों में थोड़े निठल्ले हैं, पर आपका मैंने देखा है लेडीज़ का कि ये बाकी सब चीज़ें एंड टिप टॉप रखती हैं, यूजुअली ज़्यादातर जो है ये 5 मिनट पहले जो इन्होंने क्लिप निकाला होगा बालों का, या सेफ्टी पिन कहीं रखी होगी, या एक अपना हेयर बैंड निकाला होगा, तो वो भूल जाती है, छोटी छोटी चीज़ें जो है 5-5 मिनट वाली पहले करी वाली भूल जाती हैं, बाकी याद रखती हैं। क्या ये सच है लेडीज़, यस और नो में आपने मुझे जवाब देना। थोड़ा फंसा हुआ हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल ये भी पता लगेगा आपको, बट पहले प्लीज़ हेल्प मी आउट एंड टेल मी कि ये सच होता है ना कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हो बट यू रिमेंबर एवरीथिंग एल्स, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, सारी फैमिली की चीज़ें, बच्चों की रिक्वायरमेंट्स, यू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट, बट अपनी कुछ कुछ चीज़ें आप कभी कभी छोटी जो हैं वो भूल जाती हैं। प्लीज़ हेल्प मी आउट एंड लेट मी नो क्या सच है कि नहीं।

0: दिल चोरी साडा हो गया, की करिए, पर यहाँ पे हमारे साथ कौन जुड़ा है पहले इनसे बात। अरे यार, नन्ना मुन्ना राही हूँ, फॉरेनर सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, हेल अमेरिका। अच्छा, गुड इवनिंग, कौन बोल रहे
1: हाय,
0: हाय मैम, हाउ आर यू?
1: आई एम डूइंग गुड। सो आपका जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत वैलिड है।
0: अच्छा,
1: सो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, दो किस्म की मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ना, वो औरतों की बहुत अच्छी होती है। आपने कुछ भी किया हो वो हमें याद रहेगा कोई, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी लाइक चाबी कहीं रख के भूल गए और हेयर पिन भूल गए।
0: आपका नाम,
1: तो
0: आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम है मिसेस सुलेमान।
0: सुलेमान, मिसेस सुलेमान, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दैट, कीप लिसनिंग। मैंने क्यों पूछा ये सवाल वो भी बताना है ना। गुड इवनिंग फन एजिया, हु इज दिस? हेलो,
2: दिस इज अनुज।
0: अनुज, आप लड़की नहीं हो, मैंने तो लड़की से सवाल पूछा था, ये क्या बात हुई?
2: नहीं नहीं, मैं यही कह रहा था कि आप लड़की से क्यों पूछ रहे हैं सवाल,
0: क्योंकि मेरा कोई वजह है। हर चीज अगर अगर
2: सकते हैं।
0: भाई मेरी बात सुनो, अगर मैं सस्पेंस किया है मूवी का, मूवी के पहले ही बता दूंगा सस्पेंस रहेगा।
2: अच्छा,
0: कोई वजह है मेरी, कोई वजह है मेरी डार्लिंग, ये सवाल पूछने की कोई वजह है? बैठो बैठो, आराम करो, बड़ा सीन आएगा आएगा। मैं पूछ रहा हूँ लेडीज से कि आप लोग बड़ी बड़ी चीज़ें बिल्कुल याद रखती हैं, जैसे बर्थडेज, एनिवर्सरीज, इंपॉर्टेंट ओकेजन इन योर फैमिली। इवन ये पता होता है आपको कि पेरेंट टीचर मीटिंग बच्चों की कब है, यू नो, कब उसकी क्लास की डेट कौन सी शुरू होनी है, यू रिमेंबर एवरीथिंग। बट छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि आपका हेयर बैंड, आपका हेयर क्लिप आपने कहाँ उतार के रखा, 5 मिनट पहले रखा होगा, पर भूल जाती हैं। क्या ये ट्रू है? आर देर एनी अदर लेडीज हु वांट टू टेल मी यस और नो?
3: Let's celebrate pre-wedding sagan. ढूंढता हूँ मैं भी दिल वकवारा जिसके लिए लगे।
0: स्टूडियो का नंबर फॉर योर ओपिनियन इज 972-235-5555.

0: मैं नशे में टली नहीं हुआ हूँ, मैं तो काम पे हूँ यार। तू एमएम बंदे को खराब कर रहा है गाना सुना के। गुड इवनिंग फन एशिया, हु इज दिस?
1: हाय मार्विन जी, दिस इज अनु।
0: मार्विन जी क्या के मतलब क्या चाहते हो आप? मैं भूल जाऊं मैं कौन हूँ?
1: नहीं, we're talking about memory, so yes.
0: All right, what's your name, miss?
1: My name is Anu.
0: Anu, what do you think? Am I right in saying this, that...
1: You're absolutely right, but it is very intentional. Especially for married women, jo hote hai na, we remember the long-term memory is much more stronger because we have a big dictionary there to line up all the things the husband forgot or the boyfriend forgot to do, all the negative things.
0: Super. I love
1: so
0: it.
1: So our self-cut will bhool jaate hai.
0: I love it, Anu. Thank you very much for that. I'm going to go on to the next caller here. Good evening. Please lower your radio volume. अरे यार इतना गुस्सा मैंने इतनी तो तुम्हारे से कभी बात ही नहीं करी यार ऐसे कुछ। गुड इवनिंग फनेशिया, हू इज दिस? हेलो,
2: हाय,
0: आई एम सॉरी मैम, एम आई ऑन अ ब्लूटूथ स्पीकर? कैन यू टेक मी ऑफ दैट?
2: आई एम ड्राइविंग, कैन यू हियर मी?
0: आई कैन हियर यू। खिड़की विड़की अच्छे से बंद कर लें, थोड़ा सीलिंग बढ़िया हो जाए तो आई विल बी बेटर। व्हाट्स योर नेम?
2: हरप्रीत।
0: हरप्रीत जी, किदा सब ठीक ठाक? जो सवाल पूछा उसमें कुछ सच्चाई है जो मैंने बात की है?
2: जी बिल्कुल, सच बोल रहा है इसमें, बिल्कुल 100% फैक्ट। आई बिलीव के वी गर्ल्स ब्रेन इज रेसिंग ऑलवेज, यू नो, और जैसे कि हमारा जो लंबी बातें पुरानी बातें वो तो याद रहेंगी, बट इन द मोमेंट व्हेन वी हैव सम कीज वी लेफ्ट एंड वी फॉरगेट अबाउट इट, वी आर ऑलरेडी ऑन द अनदर स्टेप। सो हमारा जो ब्रेन है ना, इट वर्क्स वेरी ऑन अ फास्ट पेस। हमारे ब्रेन में देयर आर मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन, दैट्स हाउ विमेन ब्रेन वर्क।
0: एंड हरप्रीत
2: जी, वी आर ऑलवेज मल्टीटास्किंग।
0: एंड हरप्रीत जी, इतना कुछ होते हुए भी आप गाड़ी भी चला रही थी, आपके ब्रेन में इतना कुछ भी चल रहा था, आप मेमोरीज भी याद कर रही हैं, उसमें से आपने टाइम निकाल के मुझे कॉल किया। हाय ओए, मतलब मेरा मतलब बस कर पगली रुलाएगी क्या? चलो आगे चलता हूँ जी, लास्ट कॉल लेना था, बट नो वरीज, बिकॉज मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था यार कि ये लेडीज ना, देखो आपके सामने मैंने प्रूव किया कि इन्होंने खुद बोला कि भाई यस, हम ये छोटी छोटी बातें 5 मिनट पहले करी हुई बातें भूल जाती हैं, जैसे कि हेयर क्लिप कहाँ उतार के रखा था, 5 मिनट हुए भूल गई, आपका रबर बैंड हेयर बैंड कहाँ गया वो भूल गई, पति ने पैसे कहाँ दिए जो दिए थे वो कहाँ रखे वो भूल गई, ये सारी बातें आप भूल जाती हो, पर 5 साल पहले पति ने गुस्से में क्या कहा था ये कैसे याद रखती हो यार? ये वजह थी कि भाई इतनी चीज़ें भूल सकती हो, पर 5 साल 6 साल पहले, परसों की बात है मैंने कुछ कहा था 3 साल पहले वो करी थी, उस दिन तुमने, मैं कहा हट यार,

0: कुड़ी नू नचने दे बिल्कुल नचने दे यार, पर ये क्या बात हुई कि मतलब 20 साल हो गए शादी को, उसके बाद भी कहती है तुम्हारी माँ ने ना जब हमारी शादी हुई थी उस रात को पता है क्या कहा था? अरे मेरी माँ भूल जा, गुड इवनिंग फन एशिया, हुज दिस?
1: दिस इज पूजा ऑन अदर साइड. नमस्ते मार्विन जी.
0: पूजा पूजा पूजा इन अदर साइड, मैं समझा नहीं.
1: नहीं वो फोन फोन पे जब आता था ऐसा था ना, पूजा ऑन अदर साइड.
0: ओके ओके, आई एम मार्विन ऑन इवन अदर साइड.
1: थैंक यू मार्विन. तो अभी आर वी ऑन एयर और आर वी?
0: या वी आर, यू आर अ वेरी बिग सेलिब्रिटी राइट नाउ पूजा. पीपल विल रिमेम्बर पूजा, क्योंकि पूजा तो करनी ही पड़ती है ना पूजा.
1: हाँ हाँ, वो बात अलग है. बट आपने पूछा कि हमें कैसे याद रहती हैं 5 साल पहले जो कहा.
0: नहीं पूछा नहीं, मतलब पूछा वो गलती होगी मेरी. बट मैं तो यही कह रहा था कि यार जब छोटी छोटी चीजें भूल जाती हूँ तो जो पति कहता है या उसकी माँ कह गई 10 साल पहले, उसके पापा ने टोंट मारा, भूल जाओ ना बहन.
1: तो वो दिल पे छूती है ना.
0: आए ओए.
1: और भी अब हर किसी की बात तो याद वैसे भी नहीं रहती, पति की तो याद रहेगी ना.
0: पति की तो याद रहेगी जनाब, पति की रहेगी. और पति की रहेगी नहीं तो फिर पति को याद नहीं रहेगा पत्नी का, तो पति शायद ही रहेगा, ये बात भी उसके साथ जुड़ती है. बहुत बहुत शुक्रिया पूजा फॉर योर कॉल. आई होप यू हैव अ लवली लवली इवनिंग. लिसनर्स ऑफ फनेजिया रेडियो, आई एम गोना टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. ब्रेक के उस पार में जरूर आ रहा हूँ एंड आई एम गोना बी ब्रिंगिंग बैक वन मोर आवर ऑफ पावर, यानी कि मजेदार बातें यार. दैट्स ऑल वी डू. समय राणा इज बैक इन एक्शन. यार वैसे देख के अच्छा लगा, इंडिया इज गॉट लैटेंट गॉट पुल डाउन. अब मैं ना इसके बारे में दो मेरे विजन है इसको, मतलब मेरे ओपिनियंस, माय टू टिप्पणीज वो ये हैं कि टू मी लैटेंट इज अ वेरी बोल्ड शो, बट आई समहाउ हैव अ डिफरेंस बिटवीन बोल्ड एंड वल्गैरिटी एंड द रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, राइट. मुझे वो बात नहीं पसंद. आई डोंट थिंक आई कैन एवर कर्स इन फ्रंट ऑफ अ वुमन. आई डोंट कर्स मच एनी वे, बट इन फ्रंट ऑफ वुमन इट जस्ट डजंट जेल विद मी. यस आई लाइक हिज कॉमिक टाइमिंग, यस आई लाइक एवरीथिंग एल्स, बट आई थिंक ये जो प्रोफेनिटी यूज की जाती है दैट शुड नॉट बी देयर इन अ शो विच इज बींग वॉच्ड बाय द यूथ एंड किड्स एंड एडल्ट्स अलाइक. अभी वापस आया.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
9: Calculating route, rerouting.
8: Are ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
9: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
8: Kyun?
9: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
8: Achha, to seedha wahi le chalo.
10: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
9: Your new destination has arrived.
11: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
14: होको।
15: अरे बस भी करो यार।
16: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
15: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है।
17: एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी आइकॉनिक सैंडविचेस डिलीशियस करीज चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
18: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया रीलिव मेमोरीज।
19: रेस्टोरेंट चूज करना हो गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है माँ का रिव्यू।
20: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑबरी स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
21: How may I help you?
22: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं। Everyone's asking lunch में क्या है?
21: Fear not, we have the perfect solution.
23: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special. 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
24: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
25: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
24: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
25: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
24: इंडिया तक।
25: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
23: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
26: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

Absolutely, Bindaas Bolo Ji. Namar Bindaas Bolo. Welcome back to the 6 o'clock hour of your evening drive time show only on Fun Asia Radio 104.9 FM. Bringing the community together. That's what we stand for and that's what we're doing. And this Saturday, the community will come together for the IANT 80th Anand Bazaar celebration, which is the India's Independence Day celebration, which is all for you guys and for the community. Yaad rakhiyega कि ये जो गर्मी का बहाना है आपका वो चलने वाला नहीं है. नो, क्योंकि ये इवेंट इंडोर है तो आपको गर्मी की कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है. बहुत सारे फूड वेंडर्स, वी ब्रिंग प्रीटी मच द इंटायर इंडियाज डायस्पोरा टू यू व्हेन इट कम्स टू फूड. बहुत सारे डिफरेंट वेंडर्स होते हैं जनाब. शॉपिंग की पूरी फैसिलिटी होती है फॉर द लेडीज़ टू बी बिजी एंड गेट सम न्यू स्टफ एडेड टू देयर कलेक्शन. ऑफ कोर्स वी नीड न्यू स्टफ यार. सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, हर जगह वी कैन नॉट वेयर द सेम नेकलेस डूड. सो लेट हर बाय, लेट हर डू द शॉपिंग. एंड इफ यू आर अ म्यूजिक लवर, यू हैव अ कॉन्सर्ट देयर व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्री. दिस इवेंट हैज नो entry fee for anybody. So aap apna date mark kar lijiye, this Saturday 15th of August 2 PM onwards, and this is at the Comerica Center in Frisco. Ab ye afwah kisne nikali yaar, hai ye afwah keh rahe hain ji ki MBBS ka latest full form aaya hai, mand buddhi balak of Sonia hai. Aise kyun karte hain yaar ye log?

It is giveaway time that is coming from D-Vibe Restaurant, which is part of the Foodistan team right there in Aubrey. If you're living in Aubrey and you know about the Highway 380, the very famous Highway 380, ये तो आपको कैसे भूल सकते हो आप लोग, है ना? क्योंकि ये हाईवे तो ऐसा है कि इसको तो शायद ही कोई भुला पाएगा बड़े भैया. बट हाईवे 380 इज़ नाउ बेटर. इसकी जो पुरानी जो पेन पॉइंट्स थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, बिकॉज दीज गाइज आर नाउ हैविंग अ लॉट ऑफ फ्री वेज एंड ऑल दैट देयर फॉर यू. तो जो फ्लाई ओवर बन गए हैं जी, उसकी वजह से ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी है. एंड इफ़ यू हैवंट बीन ऑन दैट हाईवे येट, आप जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा यार वाकई चेंजेस आ चुके हैं. सो वन यूर ऑन 380 राइट देयर इन ऑबरी, एक बड़ा ग्रोसरी स्टोर खुला है जी जिसका नाम है फूडिस्तान. मीट से लेके फ्रेश प्रोड्यूस से लेके एवरी थिंग दैट यू लुकिंग फॉर यूल फाइंड इट एट फूडिस्तान इन ऑबरी. नाउ विद दैट ग्रोसरी स्टोर दे हैव सम डील्स दैट आर गोइंग ऑन. पहली बात तो ये कि इफ़ यू लिव इन अ 5 mile रेडियस एंड इफ़ यू डू ग्रोसरी शॉपिंग ऑफ $30 और मोर, यू गेट फ्री डिलीवरी. जी हाँ, बिल्कुल आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी ऑन ऑर्डर्स दैट आर $30 और मोर इन अ 5 mile रेडियस. सेकेंड थिंग, इफ़ यू मैंशन फन एशिया यू गेट 10% ऑफ. नाउ आपको अगर वहाँ से कुछ खाना पीना ट्राई करना है तो डी वाइब उनका अप स्केल रेस्टोरेंट है विच इज़ ऑफरिंग यू एनी वन आइटम फ्रॉम देयर मेन्यू. कोई भी आइटम आप पिक कर सकते हैं फ्रॉम देयर मेन्यू एंड आई एम श्योर कि आपको उनका खाना बहुत पसंद आएगा. देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन व्हाट यू कैन पिक अप, बट यू कैन डेफिनेटली गेट एनीथिंग ऑफ द मेन्यू. अब मैं लगाने लगा हूँ जी एक गाना एंड वी आर सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे ऑफ दिस एक्ट्रेस हु इज बॉर्न ऑन टुडेज डे 12th of August 1995 में इनका जन्म हुआ. एंड शी इज बॉर्न ऑफ अनदर एक्ट्रेस हु वॉज डेफिनेटली यू नो समबडी वेरी फेमस. आई लव्ड हर एंड मैं उनकी मदर की फिल्म का गाना लगा रहा हूँ. एंड आपने मुझे बताना है कि ये डॉटर जो है जिनका आज बर्थडे है वो कौन है. द पर्सन हु गिव्स मी द राइट आंसर फर्स्ट गेट्स द डी वाइब गिव अवे विच इज़ फ्रॉम द ऑबरी लोकेशन. अब अगर आप जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो एक बात का ध्यान रहे कि दिस लोकेशन इज़ इन ऑबरी एंड आई वॉन्ट यू टू गो टू ऑबरी एंड एन्जॉय एनी वन आइटम फ्रॉम द मेन्यू ऑफ D Vibe Restaurant. The spelling of the restaurant is D-E, एक word है. The second word is Vibe, V-I-B-E, जो कि मेरी आपको अच्छी लगती है. But nonetheless, this is for Restaurant D Vibe, part of the Foodistan Group in Aubrey. One item of your choice. I'm gonna play a song, which is her mother's song. You have to tell me the name of the daughter. Daughter. You have to tell me the name of the daughter. I don't know why I went Russian for a bit.

0: ऑलराइट, गाना लगाया है जी मैंने. एंड लेट्स सी हु इज गोना बी द लकी विनर हियर फ्रॉम ऑबरी एरिया. गुड इवनिंग टू यू फनेजिया. कौन बोल रहे हैं
1: जी? सुना बात कर रही हूँ.
0: कौन बात कर रही है? खुश तो आखिर कौन बात कर रही है
1: जी? सबा बात कर रही हूँ. सबा.
0: सबा जी, सबा जी कैसी हैं?
1: जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
0: मैं सदा सुहागन रहूं, बस यही दुआ है मेरी. अच्छा
1: आमीन.
0: सबा जी, ये बताइए कि आप ओबरी जा सकती हैं?
1: जी
0: तो जाइए, मैंने थोड़ी रोका. नहीं, पर मैं आपको वहां से कुछ देना चाहता हूँ. अच्छा सबा जी, अब ये बताइए कि ये लेडी जिसका मैंने गाना लगाया है उनका नाम मालूम है?
1: जी सर, जो अमृता सिंह है उनकी बेटी है सारा अली खान.
0: उनकी बेटी हैं सारा अली खान, और आज सारा अली खान का जन्मदिन है जी. सबा जी, आपको हो जी मुबारक फ्रॉम आर टीम फॉर विनिंग एनी वन आइटम फ्रॉम डी वाइब रेस्टोरेंट विच इज इन ओबरी, राइट ऑन हाईवे 380. आई टेक योर डिटेल्स ऑफ द एयर, प्लीज डू नॉट हैंग अप दैट फोन. यस, इट इज सारा अली खान सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, बट बिफोर आई गो टू हर ट्रैक्स आई वॉन्ट टू प्ले अ लिटिल बिट ऑफ दिस.

0: That was the mother who gave birth to a daughter named Sara Ali Khan, and her name is a powerful name, yaar. Matlab Sara Ali Khan Patodi. हाँ जी, नवाबों का नाम है जुड़ता साथ. 12th of August, आज ही के दिन, born in the year 1995. इंडियन एक्ट्रेस जिन्होंने हिंदी फिल्मों से अपना करियर शुरू किया था, एंड दैट वॉज फ्रॉम द मूवी केदारनाथ, जिसका गाना एक बहुत ही प्यारा सा लाइंड अप है, विच विल हेयर राइट आफ्टर द नेक्स्ट कमर्शियल ब्रेक. और ये 2018 में फिल्म आई थी, एंड देन केम द एक्शन कॉमेडी सिम्बा. उसके लिए मिला था जी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू, अलॉन्ग साइड सेवरल पुअरली रिसीव्ड फिल्म. शी स्टार्ड इन अ ड्रामा जिसका नाम था अतरंगी रे, और वो ऐसी फिल्म थी किसी को समझ ही नहीं आई, इतनी अतरंगी थी. देन एक सक्सेस मिला विद द मूवी जरा हटके जरा बचके, एंड देन ऑफ कोर्स मेट्रो इन दिनों, वेयर आई थिंक शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब. आई थिंक एज एन एक्ट्रेस शी इज ग्रूमिंग वेरी वेल. आई लव हर एक्टिंग स्किल्स, एंड आई थिंक समबडी हु इज हियर टू स्टे इन बॉलीवुड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड ऑफ कोर्स आई यूज टू लव हर मदर, व्हिच वाज नन अदर देन अमृता सिंह. टेकिंग अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, बी राइट बैक ऑन द अदर साइड.
1: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ.
2: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस.
1: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
2: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स. यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग.
3: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस. कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क.
4: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
6: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
7: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
8: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से स्ट्रेस.
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
8: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
8: ये क्या होता?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
6: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन. Available.
10: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
11: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
6: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
13: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल.
13: मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

वैसे अगर एक तरफा प्यार करने वालों की लिस्ट बनाई जाए ना, तो या गिनती करी जाए, तो एक अलग राज्य बन सकता है, टोटली न्यू कंट्री, जिसका नाम होगा सिंगलस्तान, सिंगलिस्तान, ठीक है, सिंगल हो ना, सिंगलिस्तान। और वहाँ का राष्ट्रीय गाना पता है कौन सा होगा? तू प्यार है किसी और का।

0: भाई गॉड क्या क्या बातें लोग दिमाग से निकालते हैं ना, सिंगलिस्तान। मैंने कहीं पढ़ा यार सिंगलिस्तान, मैंने कहा ये किसका स्थान है, कहते नहीं वो एक कंट्री बनाने के चक्कर में है जो लोग सिंगल रह गए उनके लिए। मेरा एक दोस्त है बेचारा, बड़ी देर सिंगल है, मेरे से पूछ रहा था मारिन यार कुछ होगा मेरा भाई। मैंने कहा भाई जिस तरह पुरानी फिल्मों में कभी भी जो पुरानी फिल्मों में जो भी गवाह होता था ना, गवाह जब वो टाइम पे नहीं पहुंच सकता पुरानी फिल्मों से लेके आज तक, तो भाई तेरी शादी कैसे टाइमली हो जाएगी ब्रो।
1: ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है,
0: बंदा ये बिंदास है जी। नाम मारविन दास है। 6:25 स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं, मैं रहूंगा आपके साथ 7 बजे तक। एंड वी वर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ आर वेरी ओन सारा अली खान, यानी कि सारा अली खान पटौदी। एंड जन्म आज ही के दिन 12th of August 1955, 31 ईयर्स ऑफ एज, डेब्यूट फ्रॉम द मूवी केदारनाथ एंड उसके बाद बहुत सारी और फिल्में। पर्सनली आई थिंक शी इज अ ग्रेट एक्टर एक्ट्रेस एंड शी विल बी हियर इन द इंडस्ट्री for a very very long time to stay with her acting skills. Wishing her a very happy birthday from the team here at Funasia and from Banda Bindaas. And this part of the show is brought to you by Tanishq Jewelers. They are bringing you this birthday wish. And agar aap badi der se wish kar rahe hain ek acha diamond piece lene ka, then your wish can come true because they have a great deal going on at the moment, and that deal is the diamond festival jis pe aapko milenge no making charges and 25% off diamond value, and making charges pe bhi aapko discount milega. Aur agar aap 18 carat se upar ka gold leke jayenge to koi bhi deduction gold value mein nahi hogi. That means whatever is the weight of the gold that you're exchanging, you'll get the market price of that gold. I think ye to win win win hai bade bhaiya, and you should definitely make the most of that. Ladies, sun liya na, 25% off diamond value, 25% off making charges. Purane gold ko leke jao, uski 100% value lo, shayad naye paise dene hi na pade.

शर्माई सी बगल में बैठी है दुल्हन सी, यही तो मेरी स्वीट हार्ट है। बिल्कुल भैया, स्वीट हार्ट ही होनी चाहिए। पर ये पता है आपको कि आप लोग इतनी खूबसूरत लेडीज हो आप लोग, और जितने भी खूबसूरत लेडीज है ना, वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप। बट आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। नॉन द लेस दिस पार्ट ऑफ द शो, जैसे कि मैंने कहा था, IANT का इवेंट है जी, विच इज दिस सैटरडे 15th of August एट द कोमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को। यू गाइस हैव टू बी देयर टू एंजॉय दिस लवली फेस्टिवल, विच इज नॉट अ फेस्टिवल, मैं कहूँगा इवेंट है, बट फेस्टिवल बन ही जाता है जहाँ पे हम देसी इकट्ठे हो जाए, म्यूजिक अच्छा चल रहा हो, अच्छे लोगों की कंपनी हो, अच्छा खाना पीना हो, तो भाई हमारे लिए तो वो फेस्टिवल ही है। एंड दिस इज इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। दिस इवेंट इज एक्चुअली ब्रॉट टू यू बाय IANT, विच इज इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सस, एंड उनका ये 80th इवेंट है। कैन यू इमेजिन दैट IANT एंड आर ओन इंडियन कम्युनिटी हैज बीन वर्किंग इन डैलस फॉर 80 ईयर्स, 80 साल से लगे हुए भाई टू ब्रिंग दिस टू दिस लेवल। जब हम ग्रोथ हुई हमारी कम्युनिटी की, देयर इज अ लॉट ऑफ रोल दैट IANT प्लेड in making sure that we come together as a community. So big kudos to IANT and the Anand Bazaar, which is the name of their India's Independence Day celebration. If you're looking to get some good food this weekend, मैं बताता हूँ कहाँ जाना है। पहले एक गाना है, उसके बाद आके आपको बताना है। Here we go.

The name of the track is Obsessed. This is by Rar Saab, जो कि लेके आए जी आपके लिए ये वाला गाना. And I want to correct myself and thank you Hema ji for correcting me really quickly. It's not IANT's 80th Independence Day celebration. It is India's 80th Independence Day celebration and IANT का 49th year. Still man, 50 years people have been working selflessly to grow our community here, and I give a big shout out to IANT, yani ke India Association of North Texas. You know, it takes a lot, man. Jaake free mein, there's no paid out. They don't get a salary. You know, these guys are just working to build the community and to show the strength of our community here. Koi salary nahi milti, koi paise compensation nahi hai. They just go selflessly and come together and do this for the community, which takes a lot, man. Matlab hum to kisi ke ghar bina chai ka cup dekhe jaye na. और यहाँ तो ये लोग मिल मिल के इतने बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं. सो थैंक यू टू IANT, थैंक यू टू फनेशिया एंड एवरीबॉडी हुज इन्वॉल्व्ड इन दिस कमिंग अप इवेंट, इंडियाज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन दिस वेरी सैटरडे एट द कमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को. और मैंने बात की थी कि भैया इस वीकेंड पे खाना खाने का क्या प्रोग्राम है, तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है. फ्रिस्को में एक नाम है जिसका नाम है फ्लेवर लाउंज. नाम में ही फ्लेवर है, लाउंज में रिलैक्सिंग है. तो फ्लेवर लाउंज जाइए, रिलैक्स कीजिए, अच्छे फ्लेवर्स को एंजॉय करें. 25 प्लस आइटम्स दे आर इंट्रोड्यूसिंग इन देयर बफे व्हिच स्टार्ट्स फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. फ्राइडे और सैटरडे का जो बफे है वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक है, 11:30 टू 3 o'clock. एंड द संडे बफे इज टिल 3:30 फॉर द पीपल लाइक मी, जो थोड़ा लेट संडे को लेट आउट, लेट बैक और थोड़ा लेट उठते हैं, आप जाके वहाँ लेट भी एंजॉय कर सकते हैं. लाइव काउंटर्स, मेनी मेनी मोर आइटम्स इन द वेन्यू, $24.99 per person, which I think is a steal. Make sure to check them out. एक गाने का और वक्त है, इसकी तरफ जा रहा हूँ. और जैसे मुझसे गलती हुई बोलने में कि 80th year of independence, ऐसे ही हम सब में गलतियाँ होती हैं. We all tend to make mistakes. But जब कोई और गलती करता है तो हमें लगता है कि ल ये कैसा सा बंदा है या ये कैसी बंदी है भाई, इसने गलती कैसे कर दी. भाई हमसे भी होती है, उनसे भी होती है. That is just the way it goes. कहते हैं जी मुझ में हज़ार खामियाँ हैं, माफ़ कीजिए. मुझ में हज़ार खामियां हैं, माफ़ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो कभी साफ़ कीजिए.

0: डेली बेली वॉज द फिल्म. रक्षाबंधन आने वाला है जी, एंड चौक टॉक कैसीनो इज ब्रिंगिंग अ डील फॉर यू, अ स्पेशल ऑफर फॉर यू. बताता हूँ आपको ब्रेक के उस पार. मैं ना मकान मालिक के पास गया, किराए पे रहता था जब स्कूल में, तो एक दिन मुझे बोलता है कि पूरा साल तेरी बहुत बहनें आई हैं, अगर राखी भी नहीं आई ना फिर देख लियो.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
4: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
5: लिया.
4: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
5: नहीं आया.
4: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशन एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
6: Visit www.sanadainc.com today.
7: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा.
8: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
9: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian, made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali, aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
8: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
10: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
11: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
12: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
11: कैसे?
12: पेज 3 ईटरी?
11: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
12: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
11: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
13: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
14: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
15: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
16: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
17: Hi USA.
5: This is Imran Hashmi.
6: Hi, this is Isha Patni.
5: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio.
6: One of Bollywood's most loved cult classics returns.
5: I'm back as Shivam Pandit, and this time the emotions are deeper, the music is set to touch every heart once again. And the legacy continues. Witness Aavara Pan 2 in cinemas from 14th August.

Thank you.

0: All right, let's see who do we have here with us on Fun Asia this evening. Good evening to you, Fun Asia Radio. Who's this?
1: Hi, good evening, Marvin ji. How are you?
0: Oh, Marvin ji, मतलब आप भी दूसरी हो आज के चाहती हो कि मैं अपना संतुलन खो दूं? अच्छा भला वापस आता हूँ फिर आप मेरे को कोई कहता मार्विन जी आप, मैंने कहा तेरी ऐसा मत कर यार, एक तो जी भी और आप भी, मतलब कुर्सियां तोड़वाओगी आप। खैर आपका नाम बताइए।
1: शाहीना।
0: शाहीना जी, ऑलराइट शाहीना, क्विकली फटाफट कोई एक ऐसी याद जो आपके भाई या बहन के साथ आपको याद हो।
1: ओके, माय सिस्टर वांटेड टू डू द मेकअप कोर्स एंड शी डिडंट हैव एनीवन टू ड्रेस हर अप एज अ मॉडल. So she made me a model and she dressed me as a bride and she got her certificate.
0: Wow, वो कितने साल की थी?
1: वो कुछ 20 साल की होंगी, मैं कुछ 17 साल की होंगी.
0: All right, 17 and 20 mm-hmm. and you both, मतलब एक दूसरे के support किया आपने. अच्छा
1: जी,
0: सब प्यार,
1: उनको मॉडल नहीं मिली जी.
0: अच्छा सब प्यार दिखाया आपने दोनों में और आपने कहा चल यार ठीक है मैं बन जाती हूँ
1: तेरे लिए। डिप्लोमा, you know, she got a certificate. I was very happy for that.
0: And that's, देखो जब अच्छाई आपने डाली तो अच्छाई कहते हैं ना, रेसिप्रोकेट होके वापस आती है। You hold the line for me. I'm going to take a few more calls and see who else wants to share something. Just sweet memories, यार मुझे तो बहुत सारी यादें हैं मेरी तो, बहुत सारे पंगे भी हुए हमारे। एक बार क्या हुआ था कि हमारे चंडीगढ़ में ना किरण बेदी, याद है आपको, जो किरण बेदी डीएसपी थी, पुलिस में काम करती थी, एंड दैट किरण बेदी वॉज मूव टू चंडीगढ़, तो उनकी पोस्टिंग चंडीगढ़ हो गई थी, उस टाइम पे वो डीएसपी थी। तो किरण बेदी जब मूव हुई तो हम तीन चार लड़के, उसमें मेरा एक भाई, हम लोग ना एक स्कूटर पे चार लोग बैठ के जा रहे थे। एक आगे स्कूटर के जो टायर का ऊपर बोनट होता है उस पर बैठा था, लाते हैं उसकी अंदर की तरफ थी हमारी स्टीयरिंग के नीचे, हैंडल के नीचे। एक वहाँ बैठा था जहाँ जगह होती है पैर रखने की, और दो और बैठे थे। तो रात को जी हमें पुलिस वालों ने रोक लिया, और रोक के तो हमने खैर थोड़ा बहुत सेट सूट कर लिया, क्योंकि पंजाब था और पंजाब में रात को पुलिस वाले आपको मिले तो आपको ये नहीं घबराना होता कि आपने पी रखी है, ये घबराना होता है उन्होंने पी रखी है। और अक्सर ये होता है कि पुलिस वाले होते हैं सेट हमारे, तो वो सेट थे भाई, और उन्होंने हमें बोला ओ तुसी मुंडे यहाँ क्या कर रहे हो, तो मैं नहीं पता क्रेन बेदी आई हुई है। ओ मैं कहा मामा क्रेन बेदी नहीं है किरण बेदी है, ऐसे ना कर।

0: देखो हाँ मैं गलत मानता हूँ, वो तो कहती रहती है गलत है तू। अब इनसे पूछते हैं इनकी क्या कहानी है अबाउट देयर बचपन। गुड इवनिंग टू यू फनेजा, हु इज दिस?
1: हेलो।
0: हेलो सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
1: ठीक ठाक मार्विन, आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक ठाक, तो वो कर ही देगी। अच्छा आप बताओ कि डू यू रिमेम्बर एनी चाइल्डहुड मेमोरी विद योर सिबलिंग सिस्टर और ब्रदर दैट यू लाइक टू शेयर?
1: जी मेरी बड़ी बहन मुझसे 4 साल बड़ी,
0: आपका क्या नाम था
1: तो
0: सर?
1: प्रवीण।
0: प्रवीण भाई। ओके प्रवीण भाई की बड़ी बहन जो 4-5 साल बड़ी हैं उनसे। ओके
1: जी तो बचपन में ऐसे होता था कि घर में अंडा करी बनती थी और मेरी बहन थोड़ी सी कॉन्शियस थी फॉर द वेट एंड ऑल दैट, तो वो मुझे बोलती थी कि अंडे का जो अंदर का पार्ट है ये मैं तुमको देती हूँ, एक्सचेंज में आई नीड द एग वाइट। तो ये हमारा एक फिक्स था कि मम्मी डैडी तो दे देंगे कि खाओ खाओ ये, लेकिन हम लोग एक्सचेंज करेंगे खुद से। लेकिन उसमें भी मैं शैतानी कर रहा था क्योंकि मैं छोटा था, तो मैं उसको अंदर के पूरे पार्ट के लिए मैं बाहर का वाइट सिर्फ हाफ ही देता था, और वो मान जाती थी बिकॉज शी वाज अ बड़ी बहन, राइट? सो शी वाज ओके विद इट
0: एंड
1: आई वाज हैप्पी, शी वाज हैप्पी।
0: एंड डिड यू लाइक द येलो पार्ट मोर देन द व्हाइट पार्ट?
1: आई लाइक बोथ, इसलिए तो मैं दूसरे का आधा भी रखता था।
0: वेरी गुड, यू आर स्मार्ट गाय प्रवीण। आईटी में हो आप?
1: यस।
0: बचपन से ही स्मार्टनेस खेल रहे हो तो उसी में डिजर्विंग थी आपकी। ऑलराइट, ऑल द लाइन फॉर मी, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर एंड दैट इज ऑल द टाइम दैट आई हैव फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन टुडे। भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी तरफ से आप सबको टाटा गुड नाइट, बाय बाय। आई एम एंडिंग दिस शो फॉर टुडे बट आई विल बी बैक टुमारो। ऊपर वाले ने दिया जी एक और मौका इस जिंदगी को एंजॉय करने का, हर पल को फुली जीने का। देन आई विल सी यू टुमारो फ्रॉम 5 to 7 PM ऑन योर फेवरेट स्टेशन जिसका नाम है फनेजिया रेडियो विद द मोस्ट हर्ड इवनिंग ड्राइव टाइम शो जिसका नाम है द वन एंड ओनली द बिंदास शो ब्रॉट टू यू बाय योर वेरी ओन बंदा बिंदास मार बिंदास। आई वांट टू थैंक हिमालयन बाजार डाउन देयर इन ग्रैंड प्रेरी व्हिच इज अ ब्रांड न्यू स्टोर दैट हैज ओपनड अप फॉर यू। गो चेक इट आउट, हाईवे 20 एंड 360 की इंटरसेक्शन पे है। From halal meat to water buffalo for the Nepalese market to all the grocery essentials, fresh produce is available. $50 ke order pay within a 5-mile radius. You get no delivery charges. And also remember Texas Star Rehab. If you have parents that are getting older, you are seeming to feel that your joints are getting some issues, please go to Texas Star Rehab. They are located in 2 locations, Irving and Frisco. And you can find them on the web at TexasStarRehab.com. After me is Ippy the Hippie bringing you some entertainment from 7 to 10. Stay tuned for that. Agar suna hai aapne, then you know that she brings something different. And if you haven't heard her, meri recommendation pe ruk jao. Matlab aisa nahi ruk jao, sirf station ko wahi rakho yaar. Entertainment aati rahegi automatically. With that, dua mein mujhe yaad rakhiyega.